0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम

करम। सावन प्रभात की इस पुण्य वेला में मॉरिशस सनातन धर्म टेंपल फेडरेशन के तत्वावधान में प्रस्तुत इस विशेष कार्यक्रम में आचार्य सकलानी का सादर अभिवादन। श्रोताओं, श्रावण मास अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा हुआ है। संपूर्ण गणों के साथ आप भगवान शिव की उपासना कर रहे हैं। चंडः सर्वगणेशानः शंभूर वदन संभव सत्कृत्य शिवयोराज्ञां समे दिशतु कांक्षितं। समस्त शिवगणों के स्वामी चंड जो भगवान शंकर के मुख से प्रकट हुए हैं, शिवा और शिव की आज्ञा का आदर करके मुझे अभीष्ट वस्तु प्रदान करें। प्रार्थना करें श्रोताओं। पिंगलो गणपः श्रीमान् शिवाशक्त शिव प्रिय आज्ञया शिवयोरेव समे कामं प्रयच्छतु। भगवान शिव में आशक्त और शिव के प्रिय गणपाल श्रीमान पिंगल, शिव और शिवा की आज्ञा से मेरी और मनोकामना पूर्ण करें। भृंगेशो नाम गणपः शिवाराधन तत्पर प्रयच्छन्तु समे कामं पत्युराज्ञा पुरस्सरम्। शिव की आराधना में तत्पर रहने वाले भृंगीश्वर नामक गणपाल अपने स्वामी की आज्ञा ले मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। वीरभद्रो महातेजा हिमकुंदेन्दु सन्निभः भद्रकाली प्रियो नित्यं मातृणां चाभिरक्षिता यज्ञस्य

0: तक्षक हिमकुंद और चंद्रमा के समान उज्ज्वल भद्रकाली के प्रिय सदा ही मातृगणों की रक्षा करने वाले दुरात्मा दक्ष और उनके यज्ञ का सिर काटने वाले उपेंद्र इंद्र और यम आदि देवताओं के अंगों में घाव कर देने वाले शिव के अनुचर तथा शिव की आज्ञा के पालक महातेजस्वी श्रीमान वीरभद्र शिव और शिवा के आदेश से मुझे मेरी मनोभिलाषित कामना प्रदान करें। शिवस्यानुचर श्रीमान शिवशासन पालक शिवयो शासना देव समे दिशतु कांक्षितम् सरस्वती महेशस्य वाक्सरोज समुद्भवा शिवयोः पूजने शक्ता सामे दिशतु कांक्षितम्। महेश्वर के मुख कमंडल से प्रकट हुई तथा शिव पार्वती के पूजन में आशक्त रहने वाली सरस्वती देवी, आप भी मेरी मनोकामना परिपूर्ण करें। ओम शांति शांति शांति।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम। श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।

0: नमस्कार, श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से इस श्रावण प्रभात कार्यक्रम में आचार्य सुरेश सुपाल मिश्र का अभिवादन। संत सुभाषित सुधा, चार वेद षष्ठ शास्त्र में बात मिली है दोई, सुख दिने सुख होत है दुख दिने दुख होए। जिस प्रकार से वेद में, चारों वेद में, शास्त्र में जो मिलता है उसी से सुख को प्राप्त होता है, और जो सुख देता है उसको सुख प्राप्त होता है, और जो दुख देता है उसे दुख ही प्राप्त होता है। नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग निंद्रा हासे जगत प्रीति बहु बात। भगवान नारायण के भजन में जो आनंद प्राप्त होता है, जो सुख को प्राप्त होता है, और जो आनंदित जीवन को भोग प्राप्त करते हैं, वह अति उत्तम होता है। और उसी विषय में कहा गया, जितने लोग भागवत भागवत श्रवण नहीं करते, भागवत ज्ञान को नहीं पाते, विषय भोग में लगा रहते हैं, जो नींद में सोया रहते हैं, प्रभु का नाम नहीं लेते, उसका हंस ही होता है। सभी लोग जीवन में उसका हास्य उड़ाते हैं। जगत प्रीति बहु बात, सब प्रकार के दुख संकट मर्यादा मोह माया के संसार में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। और जितने लोग हरि के भजन करते हैं उत्तम लोक को प्राप्त करते हैं, और सब प्रकार के दुख नष्ट हो जाता है। कबीरा मन निर्मल भया जिसे गंगा नारी, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। जिस प्रकार से कबीर जी बहुत निर्मल स्वभाव से कहते हैं कि जितने लोग कबीर जी के बात को श्रवण करते हैं वो गंगा नहाते हैं, गंगा में स्नान करने का जो फल प्राप्त होता है वो कबीर जी के दोहा में प्राप्त होता है। जितने लोग कबीर का पाठन करते हैं मन पवित्र होता है, इंद्रियां पवित्र होता है। जिस प्रकार से मनुष्य स्नान करके अपने को आनंदित प्राप्त करता है, उसी प्रकार से मन भी पवित्र हो जाता है। ओम शांति शांति इति शुभम।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम। श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।
2: हरि ओम तत्सत्। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानांश्च कर्तारो वंदे वाणी विनायक भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनो याभ्यां वीणाण पश्यन्ति सिद्ध स्वान्तः स्थमीश्वरं श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः, श्री रामदूताय नमः, श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः, भगवते श्री सांब सदा शिवाय नमः। ओम नमो भगवते सियाराम कृष्ण हरि नारायण। हिंदू महासभा की ओर से मैं बाबा जी गिरीश शर्मा आप सभी श्रोताओं का आज थर्सडे 27 अगस्त के श्रावण प्रभात वाणी कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। चलिए शिव सती को आगे बढ़ाते हैं। तब चित चरे ऊ जो शंख

परितापा जसयह भयहु महापरितापा। तब शिव जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आई। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जगदारुण दुख नाना सब ते कठिन जाति अवमाना समुझी जो सती ही भय हुअति क्रोधा बहुविधि जननी कीन प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख है तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया परंतु शिव अपमान न जाई सही हृदय न होई प्रबोध सकल सब ही हति हटकी तब बोली वचन स क्रोध। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हतपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली।

हूँ हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिवजी की निंदा की या सुनी, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष की भली भांति पछतावा होगा।

0: भाई, जहाँ संत शिवजी और लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की निंदा सुनी जाए ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश लेने तो उस निंदा करने वाले का जीभ काट ले, नहीं तो उनका कान मूंद कर वहां से भाग जाए। आपकी ध्यान के लिए बहुत धन्यवाद। सत्यम शिवम सुंदरम, ओम शांति ही शांति ही शांति, ओम सीताराम चंद्रार्पणमस्तु। साधुवाद, जय श्री हरि।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्य।

सुखी भक्त आश्रय तुम्हारे, नमो हे मह ब्रह्म आदित्य रूपम, नमो हे जन सृष्टि कर्ता अनुपम, नमो हे तप सुख नाशक पिता हो, नमो सत्य सर्वज्ञ सबके सखा हो, सभी हम प्रभो अब

इह प्रियं प्रजयाते समृद्ध्यतामस्मि गृहे गार्हपत्याय जागृहि एनापत्या तन्वंशं श्रीजस्वाधा जीविविदशमा प्रेम की वृद्धि हो यहाँ तो संतान गृहस्थ आश्रम में जागरूक सदा कल्याण पति संग प्रीत सदा करो वृद्ध अवस्था तलक और उत्तम उप

सौधायता पुरवल्म कल्पयत दीवंच पृथिवीं चांतरिक्ष मधु स्वा तपसे सत प्रकट हो रात्रि भी तपमोल रात दिवस को भी किया प्रभु तप अनुकूल जल तरंग में उद्धि परम रचा सकल संसार सूर्य चंद्र पृथ्वी अंतरिक्ष आकाश प्रकाश विस्तार रीत सत्य से ही तूने संसार को बनाया तेरा ही दिव्य कौशल है सिंधु को लखाया पहले के कल्प जैसे रविचंद्र को सजाया द्यौ अंतरिक्ष धरनी सब नेम पर टिकाया तू रम रहा सभी में तुझ में सभी समाए ओम शांति शांति।

0: हमारा।
1: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।
2: श्रद्धेय श्रोताओं को पंडिता सरस्वती त्वड़ियाराम भोजन का सादर नमस्ते। वेदों का स्वाध्याय सच्चे

अर्थों में जीवन का निर्माण करना है। यजुर्वेद का मंत्र प्रस्तुत है। ओम मनोज्योतिर्जुषता मा यज्ञस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञं।

शांति। शब्दार्थ, हे मनुष्य, जूतः मनः, अत्यंत वेगवान मन, अज्ञस्य दिव्य ज्ञान का, जुषताम सेवन करें, बृहस्पतिः विद्वान, इमं यज्ञं तेरे इस जीवन यज्ञ को तनोति संपन्न करें, ज्ञानी लोग इमं इस अरिष्ठम कल्याणकारक यज्ञम जीवन यज्ञ की सम दधातु अच्छी प्रकार देखभाल करें, इह इस शरीर में विश्व देवासह सारी दिव्य शक्तियों इंद्रियों मादयंताम आनंद में रहे, हर्ष और उल्लास युक्त रहे। ओम, हे सर्वरक्षक ईश्वर, आप प्रतिष्ठ उपासक के हृदय में निवास करो। भवार्थ, प्रत्येक मनुष्य ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, उसकी प्राप्ति के लिए हमारा मन सदा दिव्य ज्ञान का सेवन करता रहे। ज्ञान अधिपति बनकर हम अपने जीवन यज्ञ को संपन्न करें, ज्ञानी लोग हमारी दिनचर्या की देखभाल करते रहें और हमें सुपथ पर चलाते रहें। हमारी इंद्रियों प्रसन्न हो, आनंद और हर्ष में मग्न रहे। इसी स्थिति होने पर जीवात्मा ओम में सर्वरक्षक परमात्मा में प्रतिष्ठित हो जाता है, अथवा परमात्मा उपासक के हृदय में निवास करने लगता है। हमें अपने जीवों को दिव्य बनाते हुए ओम में प्रतिष्ठित होने का प्रयत्न करना चाहिए।

जुस्सस्त मादजायत। जब सृष्टि रूपी यज्ञ प्रारंभ हुआ तब परमेश्वर ने मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए चारों वेदों का ज्ञान दिया। उस यज्ञ पुरुष से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चार वेद प्रकट हुए।

मनुष्यों को चाहिए कि वे प्रातःकाल जाग जावे। उषाकालीन समय शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। ऐसी पवित्र बेला में योग, प्राणायाम आदि के द्वारा शरीर की क्षमता को बढ़ाई जाती है। प्रातःकाल में उठने वाले व्यक्ति महान सुख को प्राप्त होता है और

0: धन धान्य से जुड़ जाता है। ऐसा ही मनुष्य ऐश्वर्य और राज्य आदि धारण करने में समर्थ होता है।
1: ओम यो अग्निशो महाविशास पर्याद देवद्रेचा मनसा योग्रितेना तस्य व्रतम रक्षतम पातम अहम सो विशे जनायम मही शर्म यच्छतम।
0: अग्नि और सोम तत्व से जगत की रचना हुई है। ये दोनों तत्व सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। इन्हीं दोनों तत्वों से अन्य तत्वों का विस्तार हुआ है। परमात्मा के इस सृष्टि यज्ञ में सभी तत्वों की उपस्थिति रक्षा एवं संतुलन से सब जीवों को सुख प्राप्त होते हैं। मनुष्य को भी चाहिए कि वे सृष्टि क्रम के अनुकूल अपना कर्तव्य पूरा करें। सन्यासी महात्मा तथा धार्मिक विद्वानों का सत्कार करते हुए मन से शुभ कर्म करते रहें। अग्नि जल का सत्कार करते हुए घी आदि पवित्र हवि से यज्ञ द्वारा वायु को शुद्ध करें ताकि भयानक रोग हमें ग्रसित न करें। मर्यादा पूर्वक हम अपने शुभ कर्मों द्वारा अपने व्रतों की रक्षा करें और अहिंसा पूर्वक सुख का विस्तार करते रहें।

0: रया सहस्त्रवर्चसे मौस्ताम अनुपक्षौ।
1: हे भक्तजनों, तुम ज्ञान के सोपान पर चढ़ते हुए प्रगति करो, सत्य विद्या से अपने आप को विकसित करो। यह ज्ञान रूपी अमृत तुम्हारी और राष्ट्र की रक्षा करें, राष्ट्र के साथ तुम्हारी वृद्धि हो, तुम्हारी विद्या राष्ट्र हित के लिए हो। विद्या और तप से तुम तेजस्वी बनो, अपने जीवन को वर्चस्वी और स्वस्थ बनाओ। भगवान तुम्हें सफलता प्रदान करें, तुम्हारे तेज में सूर्य की हजारों किरणें सहायक बने। हे मानव, तुम्हारी बुद्धि संकट के समय भी विचलित न हो, तुम्हारे अंदर सात्विकता और पुण्य की भावना जागृत रहें।

0: सभी को नमस्कार। अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार करुणा जी से। करुणा जी, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार पूनम, सभी को नमस्कार। मंगलवार 1 सितंबर 2026 से मेट्रो एक्सप्रेस लाइन 2 पर एक नई सीधी कनेक्टिविटी शुरू होगी जो क्यूपिप टाउन सेंटर से रेजवी महात्मा गांधी को जोड़ेगी। अब रोज हिल सेंट्रल पर ट्रेन बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मॉरिशस में मूंगों के अगले प्रजनन मौसम के करीब आने के साथ ही उनके संरक्षण और पुनर्स्थापना में जुटी टीमें इस प्राकृतिक घटना की निगरानी की तैयारी कर रही हैं। इस दौरान ब्लू बे, मेबर्ग और पॉइंट डिस्नी के आसपास समुद्र का पानी गुलाबी रंग का दिखाई दे सकता है। सरकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण से जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य योग्यताएं हासिल करने का रास्ता खुल सकता है। उद्देश्य ये है कि प्रशिक्षण केवल भागीदारी प्रमाण पत्र तक सीमित न रहे। और विदेश में उत्तरी नेपाल में आई भयावह बाढ़ ने तबाही मचा दी। कम से कम 157 लोगों के मारे जाने की खबर, करीब 750 लोग लापता बताए जाते हैं। और अब स्थानीय मौसम की रिपोर्ट। हमारे इलाके पर हल्की हवा की लहर पाई जा रही है। अनुमान है कि आज सुबह के वक्त पूर्व, उत्तर एवं ऊंचाइयों पर थोड़ी बहुत बारिश के अलावा मौसम सुहाना रहेगा। दोपहर में पश्चिम, उत्तर पश्चिम और सेंट्रल प्लाटो के कई हिस्से पर बादल घेर आएंगे और जहां तहां बारिश हो सकती है। तापमान सेंट्रल प्लाटो पर न्यूनतम 14 से 17, अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच। साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 19 से 22, अधिकतम तापमान 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। हल्की और अस्थिर हवा चलेगी। प्रवाह रेखा से परे समंदर चंचल रहेगा। दक्षिण पश्चिम में लहरें 2 मीटर तक हो सकती हैं। दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है। अतिरिक्त जानकारी में बताया जाता है कि मस्करिंस की दक्षिण पश्चिम की ओर से एक जोरदार एंटी साइक्लोन हमारे मौसम के करीब आने से मौसम ठंड रहेगा। और आज के लिए सूर्योदय 6:23 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6 बजे। तो पूरा बुलेटिन 6:30 बजे, तब तक के लिए अनुमति दें। नमस्कार।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
3: 819 kHz, ये है रेडियो मॉरिशस।

0: ভোর কি বেলা তাজগি ভরি শুরুয়াত ভোর কি বেলা তাজগি ভরি শুরুয়াত
1: चलिए श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये रेडियो मॉरिशस है, मीडियम वेव 819 किलोहर्ट्ज़ पे हमारा प्रसारण शुरू हो रहा है। तो चलिए, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारा प्यार भरा नमस्कार और आदाब। गुरुवार का दिन है आज, और आज है 27 अगस्त 2026। आपका हार्दिक अभिवादन करते हैं इस हिंदुस्तानी सभा में। वैसे कहते हैं, ईश्वर का नाम लेकर दिन की शुरुआत जब हम करते हैं तो मन को शांति प्राप्त होती है और हम अपने कर्म जो है अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो रास्ता इतना भी आसान नहीं।

0: होता, लेकिन हमें आसान बनाना पड़ता है। तो चलिए श्रोताओं, इसी शुभ विचार के साथ हम इस हिंदुस्तानी सभा की शुरुआत हम करने वाले हैं। वैसे एक बहुत ही सुहाना सफ़र है, इस समय से लेकर दिन के 11 बजे तक हम आपका साथ देने वाले हैं, एक से बढ़कर एक प्रोग्राम आपके लिए। तो आइए इस हिंदुस्तानी सभा की शुरुआत हम करने जा रहे हैं दिव्य दृष्टि कार्यक्रम के साथ, और ये कार्यक्रम जो है आप आचार्य सकलानी जी की प्रस्तुति में सुन पाएंगे।
1: मॉरिशस सनातन धर्म टेंपल्स फेडरेशन की प्रस्तुति में सुनिए कार्यक्रम दिव्य दृष्टि, ज्ञान भक्ति एवं श्रद्धा का प्रतीक दिव्य दृष्टि।
2: ओम योन्तः प्रविश मम वाच इमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। दिव्य दृष्टि के समश्रोताओं को आचार्य सकलानी का सादर अभिवादन। श्रोताओं, ये कार्यक्रम मॉरिशस सनातन धर्म टेंपल्स फेडरेशन का तत्वावधान में प्रस्तुत किया जा रहा है। जो राखी का त्यौहार है, राखी श्रोताओं मनाने की जो विधि है, कहा गया है कि व्रती को चाहिए कि उस दिन प्रातःकाल स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के वेदोक्त विधि से रक्षाबंधन करके पितृतर्पण और ऋषि पूजन करें, है ना। तो स्नान इत्यादि 10 विधि स्नान करने का निर्णय और विधान माना गया है। रक्षा के लिए किसी विचित्र और वस्त्र या रेशम आदि से रक्षा बनावे, उसमें सरसों सुवर्ण केसर चंदन अक्षत दुर्वा आदि रख करके रंगीन सूते के डोर से उसको बांध करके अपने मकान के शुद्ध स्थान कलश आदि की स्थापना करके उसका यथाविधि पूजन करके फिर उसको है ना, और यदि पुरोहित हैं तो अपने शिष्य के हाथ में या यजमान के हाथ में और भाई बहन के बहन जो है भाई के हाथ में बांधे। मंत्र इस प्रकार से कहा गया है कि ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वामनुबध्नामि रक्षेमाचलमाचल। इस मंत्र से बांधा जाता है और फिर कथा इस प्रकार से आती है कि एक बार देवता और दानवों में 12 वर्ष तक युद्ध हुआ, लेकिन देवता विजयी नहीं हुए। तब देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने सम्मति दी कि युद्ध को रोक देना चाहिए। यह सुनकर के इंद्राणी ने कहा कि मैं कल इंद्र के रक्षा के लिए उसके हाथ में राखी बांधूंगी, इसके प्रभाव से उसकी रक्षा होगी और वो विजयी होंगे। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को वैसा किया गया श्रोताओं, और जब इंद्राणी ने इंद्र के हाथों में वो रक्षा सूत्र अभिमंत्रित करके बांधा तो उस युद्ध में और देवताओं की विजय हुई। इसलिए श्रोताओं, इस मंत्र के कथन पूर्वक जो है और रक्षा का विधान किया गया है, इसे राखी बांधते समय इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। फिर इसी दिन पूर्णिमासी के दिन जो है श्रोताओं, श्रावण शुक्ल पूर्णिमा जो आज है, नेत्रहीन माता पिता का एकमात्र पुत्र श्रवण जो उस दिन और अपनी रात दिन अपने माता पिता की सेवा कर रहा था, एक बार रात्रि के समय जल लेने गया वहीं कहीं हिरण की ताक में, और महाराज दशरथ बैठे हुए थे। उन्होंने जल से घड़े के शब्द को पशु का शब्द समझ करके बाण छोड़ दिया, क्योंकि श्रवण कुमार घड़े में पानी भर रहा था, और जब दशरथ जी का बाण उसको लगा तो उससे श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। ये सुनकर के उसके माता पिता बहुत दुखी हुए। तब दशरथ जी ने उनको आश्वासन दिया और अपने अज्ञान में किए गए अपराध की क्षमा याचना की, और फिर श्रावणी को श्रवण कुमार की पूजा का सर्वत्र प्रचार किया कि इस दिन श्रवण कुमार की पूजा होगी, और उसी दिन से संपूर्ण सनातनी समाज जो है श्रवण कुमार की पूजा करता है और उसकी रक्षा होती है। तो श्रवण कुमार

कुमार की पूजा करने के लिए, क्योंकि श्रवण कुमार जो है कांवर लेकर के अपने माता पिता को कंधे पर कांवर में बिठा करके यात्रा करवा रहा था। तो उसी के प्रतीक में भारत में आज भी जो है पूरे श्रावण मास में कांवरथी गण जो हैं कांवर लेकर के जल लेकर के जाते हैं, क्योंकि श्रावण मास भगवान शिव के लिए भी अत्यंत प्रिय मास है और यहाँ सभी कांवरथी गण जो हैं भगवान शिव का अभिषेक इत्यादि करते हैं भारत में। और अधिकतर लोगों के मन में होता है कि वो गंगा जल लेकर के आएँ और भगवान विश्वनाथ का अपने आराध्य का अभिषेक करें, उनका कृपा प्रसाद प्राप्त करें। तो इस तरह से साथ ही साथ श्रवण कुमार का भी पूजन का विधान है। फिर इसके पश्चात जो है ये जो सबसे बड़ा मुख्य पर्व जो है ये श्रावणी उपाकर्म ये पर्व है, ये पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला। इसमें ऋग्वेदी, यजुर्वेदी, सामवेदी, स्वाध्यायी जो विप्र लोग हैं, क्षत्रिय लोग, वैश्य लोग, जो ब्रह्मचर्य लोग हैं, गृहस्थ लोग हैं, वानप्रस्थ लोग हैं, किसी भी आश्रम में अपने अपने और वेद कार्य और क्रिया के अनुकूल काल में इस कर्म को संपन्न करते हैं। इसका अद्योपांत पूरा विधान श्रोताओं मैं यहाँ पर वर्णन तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन यही सबसे बड़ा त्यौहार और इस दिन के लिए मनाया जाता है, इसी को हम कहते हैं श्रावणी उपाकर्म महोत्सव। ये और बहुत दिव्य पर्व है श्रोताओं, ये ज्ञान विज्ञान का महान पर्व है। इस दिन किसी नदी के तट पर, तीर्थ स्थान पर या मंदिर में यथाविधि स्नान करके कुश से निर्मित ऋषियों की स्थापना करके उनका पूजन तर्पण और उनका विसर्जन करके और रक्षा पोटलिका बना करके उसका मार्जन करें। तदंतर और आगामी वर्ष का अध्ययन क्रम नियत करके सायंकाल के समय व्रत की पूर्ति करें। इसमें उपाकर्म पद्धति आदि के अनुसार अनेक कार्य होते हैं श्रोता, वे सब विद्वानों से जो हैं जान करके और ये कर्म प्रतिवर्ष है ना जो द्विज के समीप रहते हैं जो शिष्य लोग हैं सोपवीति प्रत्येक द्विज को अवश्य करना चाहिए। कम से कम जो पुरोहित कर्म करता है, जो विप्र पुरोहित कर्म करते हैं, उनको तो ये कर्म जरूर करना चाहिए। इस दिन 10 विधि स्नान करके प्रायश्चित पूर्वक जो कर्मकांड का जो सबसे बड़ा संकल्प आचार्य हिमाद्री का जो संकल्प है और जो सबसे बड़ा संकल्प है जिसमें ज्ञाता ज्ञात सब प्रकार के और पापों का प्रायश्चित करने का विधान है, वो संकल्प वहाँ पर किया जाता है। उस संकल्प करने के पश्चात 10 विधि स्नान, 10 स्नान करने के बाद तब यज्ञोपवीत को बदलना पड़ता है, क्योंकि इसमें प्रायश्चित होते हैं। जब आप पुरोहित कर्म करते हैं, जाने अनजाने आपके मंत्रोच्चारण में अगर कोई गलती हो गई तो उसका भी आपको पाप लगता है। आपने और आप दक्षिणा ग्रहण की है तो उस दक्षिणा में दक्षिणा देने वाले का भी थोड़ा पाप आपको प्राप्त होता है, वो भी सभी इकट्ठा होता है। तो आज के दिन और उससे प्रायश्चित करके उससे मुक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। श्रावणी उपाकर्म, यही तो श्रावणी उपाकर्म है, प्रत्येक और पुरोहित को ये करना ही चाहिए। फिर क्योंकि ये चातुर्मास में और ये सारा कर्म होता है, अध्ययन इत्यादि कर्म होता है, तो इन दिनों जो है श्रोता, वैसे भारत में जो कहा गया है कि नदियां जो है रजस्वला होती हैं, फिर भी कहा है, शास्त्रों ने कहा है कि उपाकर्मणि चोत्सर्गे प्रेत स्नाने तथेव च चंद्र सूर्य गृहे चैव राजो दोषो न विद्यते। महर्षि वशिष्ठ के इस वाक्य के अनुसार और उपाकर्म में और जो रजो दोष होता है वो नहीं होता है, अर्थात आप उपाकर्म नदी के किनारे कर सकते हैं, इस अवश्य आप ये उपाकर्म कर्म करें। हम लोग प्रातः काल से ही आज समुद्र तट पर और उपाकर्म विधि संपन्न कर रहे हैं। सभी पुरोहितगण फीको फ्लाक समुद्र तट पर आएंगे और सभी अपने यज्ञोपवीत को बदलेंगे, 10 विधि स्नान करेंगे। तो ये कर्म मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन के देखरेख में और आज किया जाएगा। तो इस प्रकार सभी बहनें और प्रेम से अपने भाइयों को राखी बांधें। ये नवद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबलो ये नत्वाम प्रजोधनामी रक्षे माचल माचल, इस मंत्र से राखी बांध करके अपने भाइयों की मंगल कामना के लिए
भगवान से प्रार्थना करें भाई बहन का ये महान पावन पर्व जो है और मंगलमय हो। आप सभी

के लिए रक्षाबंधन और इस चातुर्मास श्रावण मास का सारा कर्म और आपके लिए सफल हो। भगवान से हम यही प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान आपके इस व्रत को सफल करे, आपका श्रावण मास का किया हुआ सभी कर्म इसके

0: तब तक के लिए ओम शांति ही शांति ही शांति ही।
1: मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन की प्रस्तुति में अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम दिव्य दृष्टि।

चलिए श्रोताओं, अभी आप दिव्य दृष्टि कार्यक्रम सुन रहे थे। आइए सेंट्रल एक्स बोर्ड की तरफ से ये विज्ञप्ति सुनिए। वार रोड मेनिल के रहने वाले निवासियों को, जिनमें है पारिजो रोड के कुछ भागों के रहने वाले निवासियों को, साथ में आसपास की गलियों के रहने वाले लोगों को सूचित किया जाता है कि गुरुवार 27 अगस्त 2026 को दिन के 1 बजे से लेकर शाम के 5 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिस बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई सामान्य पर लाई जाएगी। तो श्रोताओं, अभी आप सेंट्रल इलेक्ट्रिस बोर्ड की तरफ से एक विज्ञप्ति सुन रहे थे। ये रेडियो मॉरिशस है। तो आइए एक भावगीत आपके लिए।

0: तो चलिए श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 6:20 हुए हैं। आइए श्रावण मास के संदर्भ में ये विशेष कार्यक्रम आचार्य सुनील जी की प्रस्तुति में।
1: कर पावन वेद प्रकाश दूर करता रहता अंधियारा, यह श्रावणी पर्व हमारा।
2: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।
3: ओम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सभी श्रोताओं को सादर नमन। श्रावणी उपाकर्म के संदर्भ में मॉरिशस आर्य रवि वेद प्रचारिणी सभा के तत्वावधान में प्रस्तुत हैं विशेष कार्यक्रम। आज का विषय है श्रावणी पर्व में सत्संग का महत्व। श्रावणी पर्व श्रद्धालु भक्तों को यज्ञ के साथ साथ सत्संग की ओर प्रेरित करता है। हमारे ऋषियों का विश्वास था कि व्यक्ति वेद शास्त्रों के अध्ययन के अतिरिक्त उन्हें सुनकर भी उनसे लाभ उठा सकता है। वेद को न जानने वाले वैदिक सत्संग द्वारा वेद की शिक्षाओं को ग्रहण कर सकता है। वेद एवं आर्ष ग्रंथों के सुनने से व्यक्ति वैदिक धर्म और वैदिक संस्कृति से परिचित होने लगता है। वैदिक सत्संग के द्वारा व्यक्ति सांस्कृतिक मूल्यों एवं धर्म के रहस्यों को समझने लगता है। वैदिक सत्संग के माध्यम से एवं धर्मात्मा विद्वानों की अच्छी बातें व अच्छे उपदेश सुनकर व्यक्ति अपने बुरे विचारों और बुरी आदतों को त्याग देता है। ऋग्वेद का वचन है जानता संगमे महि। हम विद्वान ज्ञानी लोगों का संग करें। विद्वानों का सत्संग अत्यंत सुखदायी होता है। वैदिक सत्संग से कर्तव्य अकर्तव्य सत असत धर्म अधर्म सही गलत और उचित अनुचित का बोध होता है। जो प्रवृत्तियां स्वाभाविक रूप से पशुओं में पाई जाती हैं वे प्रवृत्तियां मनुष्य में भी झलकती हैं। वैदिक सत्संग द्वारा ही इन पार्श्विक प्रवृत्तियों को समाप्त की जा सकती है। तभी विवेक अपना स्थान ले पाता है। हर मानव में विवेक का जागृत होना आवश्यक है। यह विवेक अन्य योनियों में नहीं है। विवेक आने पर मनुष्य उत्तम एवं पुण्य कर्मों में प्रवृत्त होता है और अधर्म व पाप कर्मों से दूर हो जाता है। वैदिक सत्संग का महत्व भारतीय संस्कृति के उत्थान का कारण है। इसी के माध्यम से हम अपने परम धर्म ग्रंथ वेद, आर्ष ग्रंथ, वैदिक गाथा एवं वैदिक इतिहास को जान पाते हैं। मनुष्य में यदि विवेक जागृत न हो तो वह पशु के समान माना गया है। नीतिकार का वचन है मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। बिना विवेक और संस्कार के मनुष्य मृग के समान विचरण करता है। बिन सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक शक्ति जागृत नहीं होती। श्रावणी पर्व के अंतर्गत यज्ञ के उपरांत वैदिक सत्संग करने की परंपरा है। वैदिक सत्संग से क्या लाभ प्राप्त होता है, आइए इस प्रश्न पर विचार करें। पहला लाभ है वास्तविकता का ज्ञान। सत्संग में वक्ता और श्रोता के बीच सत्य ज्ञान का प्रचार और ज्ञान का संचार होता है, जिससे व्यक्ति को वास्तविकता का बोध होता है। इसी के अंतर्गत शिष्य जिज्ञासु बनकर गुरु से प्रश्न पूछता है और गुरु उन प्रश्नों का सही उत्तर देता है। दूसरा लाभ है आत्मशुद्धि। वैदिक सत्संग के माध्यम से व्यक्ति नकारात्मक विचारों और आदतों से दूर होने लगता है। अपने अंदर सकारात्मक दिव्य गुणों को विकसित करता है, जिससे आत्मशुद्धि होती है। मन पवित्र हो जाता है और परमात्मा के गुणों के साथ जुड़ जाता है। सत्संग

का तीसरा लाभ है बौद्धिक, मानसिक और आत्मिक विकास। वैदिक सत्संग से मन, बुद्धि और आत्मा पवित्र होकर सही दिशा में चलने लगते हैं। मन की चंचलता समाप्त हो जाती है, बुद्धि में तर्कपूर्ण सोचने की क्षमता आती है, आत्मा में ईश्वर के गुणों का वास होता है। सत्संग का चौथा लाभ है आध्यात्मिक उन्नति। वैदिक सत्संग से भौतिक उन्नति के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति होती है। वैदिक सत्संग हमारे ज्ञान, भक्ति और आत्मिक विकास के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। आध्यात्मिक उन्नति से हमारे जीवन में संतुलन आता है, ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना जागृत होती है, ईश्वर की उपासना से आत्मा की शक्ति बढ़ जाती है और अहंकार का नाश होता है। वैदिक सत्संग का इतिहास हमारे धर्म, पर्व और हमारी संस्कृति से हमेशा जुड़ा रहा है। वेद और परमात्मा के प्रति समर्पण वैदिक सत्संग का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब तक श्रद्धा, विवेक और समर्पण की भावना जागृत नहीं होती, तब तक ईश्वर की प्रभुता जान पाना कठिन होता है। प्रभुता जाने बिना ईश्वर पर विश्वास नहीं जमता, विश्वास के बिना प्रीति नहीं होती। वैदिक सत्संग श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ व्यवहार, परोपकार, ईश्वर भक्ति, इन सब के बिना मानव का जीवन सफल नहीं होता। वैदिक सत्संग की महिमा मानव जीवन को सार्थक बनाती है। अपने बच्चों को पारिवारिक सत्संग से अवश्य जोड़ना चाहिए। अच्छे संस्कार घर से ही आरंभ होता है। घर पर ही अपनी संतानों को धार्मिक शिक्षा एवं शिष्टाचार की मौलिक शिक्षा से परिचित करावें, ताकि बाहर में भी उनका व्यवहार अच्छा रहे। सत्संग से उत्तम चरित्र का निर्माण होता है। महर्षि दयानंद का कथन है, सज्जनों का संग और दुष्टों का त्याग करें। यह वाक्य अच्छे संग की ओर ध्यान आकर्षित कराता है। महर्षि जी आगे कहते हैं कि माता, पिता, आचार्य अपनी संतान और शिष्यों को सदा सत्य उपदेश करें और यह भी कहें कि जो जो हमारे धर्म युक्त कर्म हैं उनका ग्रहण करो और जो जो दुष्ट कर्म हो उनका त्याग कर दिया करो। वैदिक सत्संग से अधर्मी भी उत्तम गति पा लेता है, अर्थात वे अपने अधर्म को छोड़कर धर्म को अपना लेता है, तभी उसकी अच्छी गति होती है। ऋषियों का कथन है कि सम्मान, कीर्ति, गति, ऐश्वर्य, धन धान्य और कल्याण आदि जब कभी किसी ने पाया है वह सब सत्संगति का ही प्रभाव जानो। सम्मान, कीर्ति, ऐश्वर्य, सुख इत्यादि उपलब्धियां अच्छे कर्मों से ही प्राप्त की जाती हैं। अच्छे व्यवहार, पुण्य कर्म, शुभ संस्कार और अच्छे संग से ही आरंभ होता है। अच्छे संग को ही सत्संग कहा गया है। सत्संग पाकर ही मनुष्य अपने जीवन को सुधार लेता है। महर्षि दयानंद का सत्संग पाकर नास्तिक मुंशीराम आस्तिक बन गए और आगे चलकर सन्यास के दीक्षा ली और सन्यासी बन गए। वैदिक सत्संग दिव्य ऊर्जा को प्रवाहित करता है। वैदिक सत्संग सकारात्मक दिव्य विचारों का सतत प्रवाह है। आज का वक्तव्य यहाँ विराम लेता है। ओम शांति शांति शांति।

0: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आपने सुना यह विशेष कार्यक्रम।
1: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
2: सारे 6 बज चुके हैं, पेश है समाचार बुलेटिन। नमस्कार, सबसे पहले आज की सुर्खियां। मंगलवार पहली

0: सितंबर 2026 से मेट्रो एक्सप्रेस लाइन 2 पर एक नई सीधी कनेक्टिविटी शुरू जो क्यूपिप टाउन सेंटर को रेजू महात्मा गांधी से जोड़ेगी। अब रोज हिल सेंट्रल पर ट्रेन बदलने की जरूरत नहीं। मॉरिशस में मूंगों के अगले प्रजनन मौसम के करीब आने के साथ ही उनके संरक्षण और पुनर्स्थापना में जुटी टीमें इस प्राकृतिक घटना की निगरानी की तैयारी में। सरकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण से जल ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य योग्यताएं हासिल करने का रास्ता। उद्देश्य प्रशिक्षण केवल भागीदारी प्रमाण पत्र तक सीमित न रहे। मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन के अनुसार रक्षाबंधन शुक्रवार 28 अगस्त को ही मनाया जाएगा। उनका कहना है कि राखी बांधने का कोई प्रतिबंध नहीं, बशर्ते कि इसे सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच बांधा जाए। और विदेश में उत्तरी नेपाल में आई भयावह बाढ़ ने तबाही मचा दी। कम से कम 160 लोगों की मौत, करीब 750 लोग लापता। और अब समाचार विस्तार से। मेट्रो एक्सप्रेस की नई सीधी सेवा मंगलवार 1 सितंबर 2026 से मेट्रो एक्सप्रेस लाइन 2 पर एक नई सीधी कनेक्टिविटी शुरू होगी। अब रोज हिल सेंट्रल पर ट्रेन बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो पहले यात्रियों को वहां अनिवार्य रूप से ट्रेन बदलनी पड़ती थी, अब सीधे जा सकेंगे। बीच की सभी स्टेशन पर ट्रेन रुकेगी। ये बिना रुके वाले एक्सप्रेस नहीं है। मेट्रो एक्सप्रेस के मार्केटिंग और कम्युनिकेशन मैनेजर वैसा हुकम के अनुसार, अगर इस सीधी सेवा का इस्तेमाल काफ़ी बढ़ता है तो कंपनी इस व्यवस्था को क्यूपिप और रेजवी के बीच स्थायी रूप से लागू करने पर विचार करेगी। उनको सुनते हैं।
1: Alors, ce changement dans l'opération de métro, c'est pour apporter un petit peu de confort aux usagers de métro, mais aussi ce sera en phase de test. Ce qui change pour les usagers, c'est qu'ils n'ont pas besoin de descendre à Crozier Central pour changer de métro. Donc, le métro partira de Kirkpip à Réduit et vice-versa directement. Et il y aura deux services, un le matin et un l'après-midi. Le matin, c'est à 7h25. Et à partir de Réduit, dans l'après-midi, c'est à 5h05 le départ pour Kirkpip. Alors, pour les usagers provenant de Port-Louis, ils doivent fonctionner normalement. Donc, ils descendent de Crozier Central pour prendre le métro pour aller soit à Eben, soit à Réduit.
0: मॉरिशस में मूंगों के प्रजनन मौसम के करीब आने के साथ ही उनके संरक्षण और पुनर्स्थापना में जुटी टीमें इस प्राकृतिक घटना की निगरानी की तैयारी कर रही हैं। इस दौरान ब्लू बे, मेबर्ग और पॉइंट डिस्नी के आसपास समुद्र का पानी गुलाबी रंग का दिखाई दे सकता है। इसी सिलसिले में आज मेबर्ग के सोशल सेंटर में एक जानकारी सत्र लगाया जा रहा है। इसका आयोजन एकोसिड और ओजीसीओ की पहल पर किया जा रहा है। मकसद है आम लोगों को मूंगों की भूमिका, तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका और आज प्रवाल भित्तियों यानी कि कोरल रीफ के सामने मौजूद खतरों के बारे में जानकारी देना। ये पहल ऐसे समय हो रही है जब समुद्र के बढ़ते तापमान और मूंगों के विरंजन यानी कि कोरल ब्लीचिंग की घटनाओं के कारण प्रवाल भित्तियों पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। इकोसिट के वैज्ञानिक विभाग के प्रमुख विनयागा निधि मुनुसामी ने शैली निर्बन से इस बारे में अधिक जानकारी दी। विवरण जो है याचना मिश्रा का है।
2: बहुत जल्द एल नीनो से हमें काफी गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ेगा। समुद्र का पानी काफी गर्म हो जाएगा। कोरल्स बहुत ही नाजुक होते हैं। एल नीनो से ज्यादा जोरदार तूफानों का सामना करना पड़ेगा। कोरल रीफ्स पर इसका असर पड़ेगा। पानी का तापमान बढ़ने से कोरल्स को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। कोरल ब्लीचिंग होता है और अगर स्थिति सामान्य पर नहीं लौटी, तापमान बढ़ता रहा पिछले साल की तरह, तब कुछ जगहों में कोरल्स नष्ट हो जाएंगे।
0: पॉम्पलिमोस के निवासियों को अब एक नया और आधुनिक बाजार मिल गया है। पुराने बाजार में बारिश के दिनों में पहुंचना अक्सर

0: मुश्किल होता था। 138 मिलियन रुपए की लागत से हाल ही में उद्घाटित इस नए बाजार में 400 से अधिक स्टॉल हैं, जिनमें मुख्य रूप से कृषि उत्पादों की बिक्री की जाएगी। फिलहाल एक समस्या बनी हुई है, कपड़ों के व्यापारी पहली मंजिल पर अपने स्टॉल लगाने से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि वहां पहुंचने के लिए लिफ्ट होनी चाहिए। जिला परिषद ने उन्हें किसी अन्य स्थान पर स्टॉल देने का प्रस्ताव रखने का फैसला किया है। पोपलेमु जिला परिषद के अध्यक्ष वेदानंद टुटू से बात की शबनीज उसिया वाहिदाली ने, सुनते हैं इसके बारे में।
1: एक मंडी बनाई गई है जिसकी लागत करीब 138 मिलियन रुपए की है। इसका ऊपरी हिस्सा कपड़ा बेचने वाले व्यापारियों के लिए है और नीचे सब्जी बेचने वालों के लिए। 454 व्यापारी हैं, 40 अतिरिक्त स्टॉल्स अन्य लोगों को दिए जाएंगे। कपड़ा बेचने वाले ऊपर नहीं जाना चाहते। अब करीब 2 मिलियन रुपए की लागत की ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं जिससे वे पॉम्प्लेमोसिस की मंडी के प्रांगण में अपना सामान बेच सके। ऊपर वाले हिस्से में हम देश के बड़े सुपर मार्केटों को किराया देने के बारे में सोच रहे हैं जिससे हमें आय प्राप्त हो सके।
0: तो विवरण गीता सुनारान का रहा। सरकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण से जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य योग्यताएं हासिल करने का रास्ता खुल सकता है। उद्देश्य ये है कि प्रशिक्षण केवल भागीदारी प्रमाण पत्र तक सीमित न रहे। पब्लिक ऑफिसर्स, मानव संसाधन, प्रशासन, वित्त और प्रोक्योरमेंट जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण ले सकेंगे। इसके तहत उन्हें प्रमाण पत्र, डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएट स्तर की योग्यताएं हासिल करने का अवसर मिलेगा। इस पहल का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के कौशल को मजबूत करना है और देश के विकास की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करना। सुनते हैं लोक सेवा मंत्री राज पेंटिया को, जिनसे बात की शबनीज उसिया ने, विवरण गीता सुनारान का।
2: विकास संभव करने के लिए एक आधार कायम करना चाहिए ताकि सरकार के विजन का समर्थन कर सके। अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक सर्विस एंड इनोवेशन कायम किया गया है और इसके लिए कानून तैयार किया गया है ताकि ये खुद की फाइनेंसिंग कर सके। इसे एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाया जा सकता है जिससे इलाकाई देशों के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग में ट्रेनिंग प्राप्त हो। यहाँ सिर्फ कोर्स लेने की बात नहीं है, ये एक ऐसी संस्था है जो सरकारी अफसरों को क्वालिफिकेशंस प्रदान करेगी जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त होगी। ये सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट प्रदान करेगी। वे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रोक्योरमेंट एंड फाइनेंस का कोर्स भी ले सकते हैं।
0: मॉरिशस एसोसिएशन के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए अनुभवों का आदान प्रदान जारी है। संसदीय सहयोग प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और सेशेल्स की नेशनल असेंबली की स्पीकर अजाहेल एनेस्टा के बीच हुई बैठक का मुख्य विषय रहा। दोनों पक्षों ने संसदीय संस्थाओं के कामकाज और दोनों देशों में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं पर चर्चा की। ये यात्रा सेशेल्स के एक प्रतिनिधिमंडल के मॉरिशस दौरे के तहत हो रही है। दोनों देशों के सांसदों और अधिकारियों को अपने अनुभव और कार्य प्रणालियाँ साझा करने का अवसर देने के लिए कार्य सत्र भी आयोजित किए जाएंगे।
3: सेशेल्स की राष्ट्रसभा के स्पीकर राजारेल एनेस्टा और प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम के बीच मुख्य रूप से मॉरिशस और सेशेल्स की संसदीय संस्थाओं के संचालन पर बातचीत हुई। साथ ही राष्ट्रीय सभाओं में लागू नियमों के बारे में भी चर्चा की गई। अजारेल एनेस्टा ने कहा,
4: We are visiting for benchmarking.
3: ये एक बेंचमार्किंग विजिट है। सेशेल्स की राष्ट्रीय सभा और यहाँ की राष्ट्रीय सभा के कार्यों को देख रहे हैं ताकि हम जान सके कि यहाँ किस तरह ये कार्यरत हैं। प्रधानमंत्री के साथ इसी पर चर्चा हुई। संसद प्रणाली के अंतर को भी जानने का मौका मिल रहा है, जैसे कि मॉरिशस में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सभा में मौजूद है जबकि सेशेल्स में ऐसा नहीं। वहाँ सरकारी नेता राष्ट्रपति है और वे राष्ट्रीय सभा में उपस्थित नहीं होते। एग्जीक्यूटिव संसद से राष्ट्रीय सभा से पूरी तरह अलग है। सेशेल्स के प्रतिनिधिमंडल ने कार्य सत्रों में भी भाग लिया जिसके अंतर्गत दोनों देशों की

0: राज्य सभाओं के सदस्यों और सरकारी कर्मचारियों के अनुभवों पर बातचीत चली।
1: तो विवरण रजनी बिकर का रहा। मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन की एक विज्ञप्ति में इस पर ध्यान आकर्षित किया गया है कि रक्षाबंधन शुक्रवार 28 अगस्त 2026 को मनाया जाएगा। उसके अनुसार ये ध्यान देने योग्य है कि राखी बांधने का कोई समय प्रतिबंध नहीं, बस इसे सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच बांधा जाना चाहिए। फेडरेशन का कहना है कि भाई बहनों के बीच जो विशेष बंधन है वो समय की सीमाओं से परे हैं। मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन के अध्यक्ष भोजराज गुड़बिन को सुनते हैं, जिनसे बात की विधिमा सिबोरन ने।
2: हम लोग फ्राइडे को रक्षाबंधन मना रहे हैं और मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन के कैलेंडर में भी लिखा गया है कि 28 अगस्त को हम लोग रक्षाबंधन मना रहे हैं। जैसे कि आचार्य शकलानी जी ने समझाया, सभी लोगों को समझाया कि क्यों हम लोग 28 अगस्त को हम लोग रक्षाबंधन मना रहे हैं। और हमने ये बात इंडिया से भी डॉक्टर दयानाथ ने खुद वो कंफर्म किया कि रक्षाबंधन 28 को मनाना चाहिए। फ्रॉम सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू दिल्ली, तो सभी लोगों को रक्षाबंधन बहुत बहुत अभिनंदन।
1: विदेशी स्तर पर उत्तरी नेपाल में आई भयावह बाढ़। उत्तरी नेपाल में अचानक आई बाढ़ ने तबाही मचा दी। कम से कम 160 लोगों के मारे जाने की खबर है। करीब 750 लोग लापता बताए जाते हैं, जिनमें कई पर्यटक शामिल हैं। पहाड़ी गांवों में कीचड़ वाला तेज पानी का सैलाब आया और रास्ते में जो भी आया उसे बहा ले गया। बाढ़ ने कई मकानों को अपनी चपेट में ले लिए और नेपाल तिब्बत सीमा वाला क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। स्थानीय मौसम का हाल। हमारे इलाके पर हल्की हवा पाई जा रही है। अनुमान है कि सुबह के वक्त पूर्व, उत्तर एवं ऊंचाइयों पर थोड़ी बहुत बारिश के अलावा मौसम सुहाना रहेगा। दोपहर में पश्चिम, उत्तर पश्चिम और सेंट्रल प्लाटो के एक हिस्से में बादल घेराएंगे और जहां तहां बारिश होने की संभावना है। तापमान सेंट्रल प्लाटो पर न्यूनतम 14 से 17, अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। तटवर्ती इलाकों में न्यूनतम तापमान 19 से 22, अधिकतम जो है 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। आज रात के दौरान हल्की और अस्थिर हवा चलेगी। प्रवाल रेखा से परे समंदर चंचल रहेगा। सुबह के वक्त दक्षिण पश्चिम में लहरें 2 मीटर तक हो सकती हैं। दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है। और अतिरिक्त जानकारी में ये बताया जाता है कि शुक्रवार 28 अगस्त से ठंडी हवा की लहर साथ में मस्करिन्स के दक्षिण पश्चिम की ओर से एक जोरदार एंटीसाइक्लोन हमारे इलाके के करीब पहुंचेगा, जो हमारे मौसम को प्रभावित करेगा। अनुमान है कि हवा जो हैं वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकते हैं कुछ इलाकों में, और तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट भी हो सकती है। इस वजह से शुक्रवार से बारिश होने का अनुमान है। तेज़ हवाएं और ठंड भी रहेगी, साथ में समुद्र में ऊंची लहरें उठेंगी, खासकर पश्चिम एवं दक्षिण में। इसलिए वहाँ पर निचले तटीय इलाकों में भी विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। तो इस तरह शुक्रवार 28 अगस्त से मौसम बिगड़ने का अनुमान लगाया गया है। आज के लिए सूर्योदय 6:23 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6 बजे।

0: खबरों के अंत में सुर्खियां एक बार फिर से। मंगलवार 1 सितंबर 2026 से मेट्रो एक्सप्रेस लाइन 2 पर एक नई सीधी कनेक्टिविटी शुरू, जो क्यूपिप टाउन सेंटर को रेजुई महात्मा गांधी से जोड़ेगी। अब रोलसिल सेंटर पर ट्रेन बदलने की आवश्यकता नहीं होगी। मॉरिशस में मूंगों के अगले प्रजनन मौसम के करीब आने के साथ ही उनके संरक्षण और पुनर्स्थापना में जुटी टीमें इस प्राकृतिक घटना की निगरानी की तैयारी कर रही। सरकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण से जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य योग्यताएं हासिल करने का रास्ता। उद्देश्य प्रशिक्षण केवल भागीदारी प्रमाण पत्र तक सीमित न रहे। मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन के अनुसार रक्षाबंधन शुक्रवार 28 अगस्त को ही मनाया जाएगा। उसके अनुसार राखी बांधने का कोई समय प्रतिबंध नहीं, बशर्ते कि इसे सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच बांधा जाए। और विदेश में उत्तरी नेपाल में आई भयावह बाढ़ ने तबाही मचा दी। कम से कम 160 लोगों की मृत्यु, करीब 750 लोग लापता, जिनमें कई पर्यटक शामिल। 6:46 हो चुके हैं। ये बुलेटिन आप तक पहुंचाया जा रहा है कादिर के सहयोग से। जुड़े रहिए हमारे साथ, कुछ ही समय बाद शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: री एडवर्ड हॉट ट्रेफल रोजिल में 65 साल की 65 ईयर ओल्ड वाहिदाबी रामजान जो वाहिदा से जानी जाती थी, इंतकाल कर गई हैं। जनाजा जो है कल शाम 4:15 इनके मकान एडवर्ड हॉट गली ट्रेफल रोजिल से निकाल के पहले गुद इग्ने की मस्जिद ले जाया गया, फिर दफनाने के लिए सैमौतें मोहश का कब्रिस्तान। फिनरल लास्ट नाइट एट 4:15 PM। गुट वायाल त्यागोज में 59 साल के 59 ईयर ओल्ड श्रीमती शीला विगापेन पैदाशिना मूरत जो देविका से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 10 बजे इनके मकान गुटवायाल त्यागोज से उठाकर दाह संस्कार के लिए बुआमाशाओं की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। रुईलावर्ड सेंट क्वा में 72 साल के 72 ईयर ओल्ड श्री लीलाधर रामनारायण जो गिरीश मागा से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सुबह 9:30 इनके मकान रुई लावर सेंट क्वा से उठाकर दाह संस्कार के लिए सिपाही बोले वाली दीप्रैत की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू डेथ 9:30 AM। कालीमाई गली क्लेमेंसिया में 86 साल की 86 ईयर ओल्ड श्रीमती राजकुमारी रामसरन जो बुलफाम ओंगले से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज दिन के 11 बजे इनके बेटे विजय रामसरन के मकान कालीमाई गली क्लेमेंसिया से उठाकर दाह संस्कार के लिए मेजिन कौरिमास्क की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू डेट 11 AM। रोलों मोरेल पाई में 52 साल की 52 ईयर ओल्ड बीबी शाही खान महमूद अली पैदाइश नाम रजाक जो सहीन से जानी जाती थी, इंतकाल कर गई हैं। जनाजा आज दिन के 11 बजे इनके मकान गुलाम मोगैल पाई से निकाल कर दफनाने के लिए पाई का ही कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फिनरल टुडे एट 11 AM। जगुलेन मोटाबा में 62 साल के 62 ईयर ओल्ड श्री हरिश्चंद दीनू जो प्रीतम से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 12 बजे इनकी पत्नी श्रीमती कविता दीनू के मकान जगुलेन मोटाबा से उठाकर दाह संस्कार के लिए मागजानी रोजबेल की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे आफ्टरनून। पदार्थ लेन नाका

अवयन बाकुआ में 90 साल की 90 ईयर ओल्ड श्रीमती देहूती पदारत, श्रीमती देहूती पदारत जो बामा से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 12 बजे इनके मकान पदारथ गली लाकावयन बाकुआ से उठाकर दाह संस्कार के लिए सुल्फेगिनों की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे आफ्टरनून। मगनलाल देसाई स्ट्रीट बोबासे में 64 साल की 64 ईयर ओल्ड श्रीमती सांता कुमारी नाओर, श्रीमती सांता कुमारी नाओर पैदाइश नाम बिकू जो रीव से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 11 बजे इनके मकान मगनलाल देसाई स्ट्रीट बोबासे से उठाकर दाह संस्कार के लिए कौड़ीव्यू की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। नंबर 7 कैपिटन पोंथ्रे सेंट क्वा पोर्टवे में 76 साल की 76 ईयर ओल्ड श्री कृष्णा पोलिगाडू, श्री कृष्णा पोलिगाडू जो प्रेम से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2 बजे के मकान नंबर 7 कैपिटन पोंथ्रे सेंट क्वा पोर्टवे से उठाकर दाह संस्कार के लिए सिपाही बोले वाली दिफ्त की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। नंबर 7 डेकन स्ट्रीट रोज हिल में 82 साल की 82 ईयर ओल्ड श्रीमती लक्ष्मी नारायणन, श्रीमती लक्ष्मी नारायणन पैदाइश नाम कुंजामाली जो राजामणि से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के आज सुपहर 3 बजे इनके पति विष्णु नारायणन के मकान नंबर 7 डेकन स्ट्रीट रोज हिल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैमौते मोहोश के स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फिनरल टुडे एट 3 PM। गोट वायाल बोबासे में 101 साल की 101 ईयर ओल्ड श्रीमती वेलामा अमुगम, श्रीमती वेलामा अमुगम पैदाइशी नाम कुटापेन जो आका जेगा से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। ये पहले नंबर 14 इंकमान स्ट्रीट रोज हिल रहती थी। अर्थी जो हैं आज दिन के 2 बजे एलियन सन्स ओटवायाल बोबासे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैमौते मोहोश की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फिनरल टुडे एट 2 PM। रेजिडेंस वेन्यू 103 सर्कोंस्टांस सेंट पियर में 101 साल की 101 ईयर ओल्ड श्रीमती पिचाई चिलम्बोई, श्रीमती पिचाई चिलम्बोई जो लक्ष्मी से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2:30 बजे इनकी बेटी वीरान अमुगम के मकान रेजिडेंस वेन्यू 103 सर्कोंस्टांस सेंट पियर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिया कॉन्स्टांस सेंट पियर के ही स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फिनरल टुडे एट 2:30 PM। बलराम डसोईलेन पालमाओ में 65 साल की 65 ईयर ओल्ड श्री हरिदत्त डसोई, श्री हरिदत्त डसोई जो रोहित से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2 बजे के बेटे शुभम डसोई के मकान बलराम डसोईलेन पालमाओ से उठाकर दाह संस्कार के लिए काथोकोको की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। डिस्पेंसरी रोड मिडलैंड्स में 87 साल के 87 ईयर ओल्ड जनाब कसम कादेया, जनाब कसम कादेया जो कसम से जाने जाते थे इंतकाल कर गए हैं। जनाजा जो हैं कल रात 9:15 बजे इनके मकान डिस्पेंसरी रोड मिडलैंड से निकाल कर दफनाने के लिए यूनियन पार्क का कब्रिस्तान ले जाया गया। फिनरल लास्ट नाइट एट 9:15 PM। ओटवायाल रोशतेया में अराडान शब के करीब 51 साल की 51 ईयर ओल्ड श्रीमती सती प्रिया गंगा, श्रीमती सती प्रिया गंगा पैदाइशी नाम चांदू जो सती से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 11 बजे इनके मकान ओटवायाल रोशतेया से उठाकर दाह संस्कार के लिए डागोची की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे।

0: 11 AM और मापूल एक्लेजो गुडलैंड में 38 साल के 38 year old श्री ज्ञानेश्वर सिंह बालडोवा, श्री ज्ञानेश्वर सिंह बालडोवा जो आतिश से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी जो हैं आज सुबह 9:30 बजे इनके मकान मापू लेकलेजो गुडलैंड से उठाकर दाह संस्कार के लिए बेलमो गुडलैंड की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 9 AM। शोकग्रस्त इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
3: गुरुवार 27 अगस्त शाम 6:30 बजे श्रावण गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर श्री कबीर काउंसिल आश्रम लाकाव्यन नंबर 2 वाक्वा में साध्विक ज्ञान यज्ञ चौका आरती का आयोजन किया जा रहा है। श्रावणी उपाकर्म के शुभ अवसर पर गुरुवार 27 अगस्त 2026 को सुबह 9:30 बजे मॉरिशस सनातन धर्म फेडरेशन श्रावणी उपाकर्म उत्सव एवं जनेव परिवर्तन विधि धार्मिक स्नान और यज्ञ का आयोजन कर रहा है फ्रिकॉफ्लाक के शिव सागर मंदिर में। ये विधियां पंडितों के लिए आयोजित किया जा रहा है। गुरुवार 27 अगस्त को सुबह 5 से लेकर शाम के 3 बजे तक श्री शिरडी साई महिमा डिवोशनल ग्रुप द्वारा गौबासे के गंगा तालाब में महाविभूति अभिषेक किया जाएगा। श्रावण मास के संदर्भ में एक्वायर राजपूत सभा, गहलोत राजपूत महासभा के तत्वाधान में गुरुवार 27 अगस्त को शाम 5 बजे एक्वायो में ही महायज्ञ का आयोजन कर रहा है। गुरुवार 27 अगस्त को श्रावण मास के संदर्भ में लावोच्य के झरनाथ शिवालय शाम 6 बजे रामायण सत्संग का आयोजन कर रहा है।
4: नमस्कार, स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। काराबाओ लीग कप में कल रात प्रीमियर लीग की टीमों ने कोई गलती नहीं की। टोटनहम हॉटस्पर की शानदार जीत 5-1 से चार्ल्टन एथलेटिक के खिलाफ। नया खिलाड़ी साविनो ने अपने पहले ही मैच में खाता खोला। बाकी गोल मो सोलांके, डांसो और डेविस के रहे। न्यूकासल यूनाइटेड ने 3-2 से वेस्ट ब्रॉमविच आल्बियन को हराया। आर्वी बार्न्स का डबल, टूरे का एक गोल। प्रेस्टन नॉर्थ एंड 0 एवर्टन 4, चेरनो बारी का हैट्रिक रहा। अब अगले राउंड में सीरियस मामला, यूरोप में खेल रही टीमों की एंट्री होगी और आते ही गर्म फिक्स्चर। लिवरपूल खेलेगा टोटनहम हॉटस्पर के खिलाफ, मैनचेस्टर यूनाइटेड को निकाला गया है ब्राइटन के खिलाफ। आर्सेनल एवे होगा इप्सविच के मैदान में। मैनचेस्टर सिटी नॉर्विच, कोवेंट्री एस्टन विला, मिलवॉल न्यूकासल यूनाइटेड, चेल्सी का मुकाबला। चेल्सी अभी आज खेलेगा लूटन के खिलाफ, अगर जीतेगा तो लीड्स के खिलाफ होगा। और एवर्टन वुल्व्स, ये कुछ महत्वपूर्ण फिक्स्चर्स हैं। आज 2 मैच, चेल्सी वर्सेस लूटन, फुलहम का मुकाबला विंबलडन से होगा। चैंपियंस लीग के ग्रुप स्टेज के ड्रॉ आज निकाले जाएंगे। 36 टीमों की लिस्ट कल पूरी हुई। एथेंस 4, लीव्स की सोफिया 0, फिर स्लोवान ब्रातिस्लावा ने एक्स्ट्रा टाइम में जाकर सेल्ये को 2-1 से हराया। ओलंपिक लियों घास खा गया, फेनेरबाची ने लियों के गुफे में जाकर उसका दांत तोड़ा 2-1 से। फेनेरबाची क्वालिफाई, लियों उतरा यूरोपा लीग में। और वाइकिंग 3-3, दिनामो ज़ाग्रेब 1। यूरोप लीग ड्रॉ भी निकाले जाएंगे, पर इससे पहले आज प्ले ऑफ के रिटर्न लेग के मैच खेले जाएंगे। यूरोपा कप के अलावा यूईएफए कॉन्फ्रेंस लीग के मैच भी हैं। इनमें रेंजर्स एवे होगा याब्लोनेक टीम के खिलाफ। रेंजर्स अभी 1-0 से आगे हैं। फ्रीबर्ग 3-1

से आगे हैं, मदरवेल का स्वागत करेगा। मोनाको खेलेगा गोनिक जाबजे टीम के खिलाफ 3-2 से आगे। ब्राइटन ट्रोम्सो स्कोर अभी 0-0 आज सेकंड लेग का मैच। स्पेन के लालीगा में नए सीजन के दूसरे मैच में ही किलियान एम्बापे का हैट्रिक। सांतियागो बेर्नाब्यू में योजे मोरिनो की वापसी, शानदार स्वागत किया गया। सफल कमबैक रियल मैड्रिड 4 रियल सोसिएदाद 1। एक गोल विनिशियस जूनियर का रहा, 2 असिस्ट जूड बेलिंगम की ओर से। आज स्पेन के लालीगा में ही बार्सिलोना खेलेगा एथलेटिक क्लब के खिलाफ सेल्टा वीगो ओसासुना। ट्रांसफर न्यूज, आर्सेनल बेच रहा है, खरीद भी रहा है। चेल्सी का निकोलस जैक्सन 65 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर आने की राह पर है। उधर ओली वाटकिंस सऊदी प्रो लीग अल हिलाल में जा सकता है, पर्सनल टर्म्स पर मंजूरी पूरी करनी है। न्यूकासल यूनाइटेड में आ गया मैनचेस्टर सिटी से निको गोंजालेस, दाम 50 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग मिडफील्डर के लिए। मेडिकल पूरा हो गया है गोंजालेस, मार्कपाइज का हो गया, उसे मिनी रोड्री कहते हैं। एथलेटिको मैड्रिड में अल्वारेस सागा जारी है, अल्वारेस बार्सिलोना में जाना चाहता है। बार्सिलोना उसे खरीदने के लिए तैयार है, पर एथलेटिको मैड्रिड उसे बार्सिलोना में नहीं जाने देना चाहता। इस बीच आर्सेनल भी तैयार है यूलियन अल्वारेस को साइन करने के लिए। लिवरपूल कोई मछली नहीं पकड़ पा रहा है, जिन खिलाड़ियों को टारगेट कर रहा है ट्रांसफर फी पर मंजूरी नहीं हो पा रही है। ब्रैडली बारकोला का इंतजार है, पर पेरिस सेंट जर्मेन जितना मांग रहा है लिवरपूल उतना देने के लिए तैयार नहीं है। ब्राइटन के मिंटे के लिए 50 और 60 50 और 60 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग के प्रस्ताव भेजे गए, दोनों रिजेक्टेड। अब खबर है क्रिस्टल पैलेस के इस्माइल असार पर नजर है, अभी दिल्ली दूर है इस डील के लिए, पर डेडलाइन डे दूर नहीं है। मंगलवार 1 सितंबर को ट्रांसफर बाजार बंद हो जाएगा। पैसों का आचार खाएंगे लिवरपूल वाले, खर्च करने में कंजूसी लिवरपूल के लिए भारी पड़ सकती है। मोहम्मद सलाह की जगह लेने के लिए अभी इंतजार जारी है, तलाश जारी है। ब्रैडफोर्ड फुलहम से डिफेंडर एल हाजी मलिक जूफ को साइन करने जा रहा है, 40-40 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर ट्रांसफर हो सकता है। क्रिकेट, श्रीलंका टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच का आखिरी दिन है आज। श्रीलंका की टीम की दूसरी इनिंग्स चल रही है, भारत के 503 रनों को पार कर चुके हैं। श्रीलंका की टीम 6 विकेट खोकर 16 रन पर खेल रही है, 16 रन 6 विकेट डाउन, मतलब जीतने के लिए टीम इंडिया को चाहिए जल्द से जल्द 4 विकेट लेना, श्रीलंका की लीड को पार करना। श्रीलंका की टीम अपने बचे विकेट्स के बल पर ज्यादा से ज्यादा रन बनाते हुए क्रीज पर टिकने की कोशिश करेगी। इस सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे है। मॉरिशस में क्षेत्रीय स्तर पर रीजनल लेवल पर इस संडे को रोशनॉय स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में सतानी कोश्ते वर्सेस ओलंपिक भामस्तान। मोसेलमा सेंट आंद्रे में सैटरडे रोवर्स फुटबॉल क्लब की ओर से गाला मैच वेटेरन कैडेट्स के खिलाफ, ये भी इसी रविवार को, इसी संडे को मोसेलमा सेंट आंद्रे के फुटबॉल मैदान में। सेंट जूलियन डुटमॉ के जिल्फा स्पोर्ट्स क्लब की 60वीं वर्षगांठ 60th एनिवर्सरी के लिए सैटरडे शनिवार को जिल्फा स्पोर्ट्स क्लब मल्टी जिम और नए पेटॉक बुलोद्रोम की ओपनिंग होगी और अवार्ड सेरेमनी भी है 4 बजे जिल्फा स्पोर्ट्स क्लब में। सो खेल समाचार में फिलहाल इतना ही, आपके ध्यान के लिए शुक्रिया। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। आप सभी लोगों को अरविंद की ओर से शुभ दिन।

मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस और एमबीसी के मिलल जुलल सहयोग से प्रस्तुत बाटे नू ट्रावाय नू लावेनिर कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में कप लिमिटेड जन रॉयल रोड रिविया जु पोस्ट में पावल जाला एगो मासों ग्राड दे खोजाता एगो वेल्ड ग्रादन जेकर वेल्डिंग में सर्टिफिका बाटे और एगो टर्नर ग्राड एन जेकर सर्टिफिका बाटे टर्नर में एप्लीकेशन करे खातिर टेलीफोनी करिया 52 59 61 76 एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 31 मानी की 31 अगस्त 2026 एग्रीकल्चर के

सिक्तिया में नीरज फार्मलैंड कंपनी लिमिटेड जोन ब्रांच रोड रोशनुआ में पावर जाला एगो वेजिटेबल फार्म लेबर रखो जाता जिकर 6 महीना के एक्सपीरियंस बाटे एप्लीकेशन करे खातिर टेलीफोनी करिया 77 62 17 77। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख 28 अगस्त 2026। मैन्युफैक्चरिंग के सिक्तिया में ते से आश इंटीरियर्स लिमिटेड जोन रॉयल रोड कंफोक्रो में पावल जाला एगो हेल्प खोजता जिकर फॉर्म 3 संगे एससी बाटे और रूल एक्सपीरियंस होय के नहीं होय कोनो फर्क नहीं बाटे। साथ में खोजता एगो शॉप पहुंचे जिकर एनटीसी 3 बाटे टॉप एंट्री और कैबिनेट मेकर में और चाहेला दुबर स्किल एक्सपीरियंस। एप्लीकेशन करे खातिर अपन सीवी ईमेल द्वारा ई पता पर विदा कर दी है teamadmin@tseashinteriors.com न तो व्हाट्सएप करिए ई नंबर पर 52 55 08 69। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख 30 सितंबर 2026। मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में मेकनाइजेशन ऑफ नागन लिमिटेड जोन रॉयल रोड मोतायोरी मोका में पावल जाला एगो वेल्डर खोजता जिकर 2 से 5 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे और एगो वेल्डर फैब्रिकेटर जिकर 2 से 10 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे। एप्लीकेशन करे खातिर हौजे पहुंच जाइया जे जस्ती जानकारी खोजब तो टेलीफोनी करिया 57 71 35 12 न 433 21 90। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख 17 सितंबर 2026। मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में SAV गारमेंट्स लिमिटेड जोन हेल्थ सेंटर रोड मोटा ब्लॉच में पावल जाला एगो सुविंग मशीन ऑपरेटर खोजता जेकर 1 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे। एप्लीकेशन करे खातिर टेलीफोनी करिया 77 56 4007। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख 30 अगस्त 2026। होलसेल के सेक्टर में असिन एंटरप्राइज लिमिटेड जोन फ्लॉम्बॉयंस स्ट्रीट शेनफील्ड ब्रांच रोड रिविया जुरांप में पावल जाला एगो फूड प्रोसेसिंग ऑपरेटर खोजता जेकर एसी संगे 2 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे। एप्लीकेशन करे खातिर टेलीफोनी करिया 55 09 11 98। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख 28 अगस्त 2026। रिटेल सेल के सेक्टर में तेरा मेड लिमिटेड जोन रॉयल रोड रिविया जुरांप में पावल जाला एगो प्राइवेट कार ड्राइवर खोजता जेकर 1 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे और चाहेला फ्रेंच स्पीकिंग होई के। एप्लीकेशन करे खातिर टेलीफोनी करिया 59 42 59 13। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख 28 अगस्त 2026। एग्रीकल्चर के सेक्टर में एक्लिप्स ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड जोन टेम्पल रोड कोटेज में पावल जाला एगो फील्ड क्रॉप लेबर खोजता जेकर एक्सपीरियंस नताजे नहीं होय कोनो प्रॉब्लम नहीं बाटे। एप्लीकेशन करे खातिर टेलीफोनी करिया 52 56 22 75। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख 31 अगस्त 2026। जॉब कॉन्ट्रैक्टर के सेक्टर में स्क्वायर डील मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड जोन CB रोड गुडलैंड में पावल जाला एगो कंस्ट्रक्शन मशीनरी मैकेनिक खोजता जेकर 3 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे। एप्लीकेशन ईमेल द्वारा ई पता पर विदा कर दी है shravan@squaredealmcs.com न तो टेलीफोनी करिया 283 77 77 न 59 85 74 25। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख 31 अगस्त 2026। एजुकेशन सर्विस के सेक्टर में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट जोन महात्मा गांधी रोड मोका में पावल जाला एगो अकाउंटेंट खोजता जेकर आसेसिया बाटे एगो अकाउंट क्लर्क जेकर HSC संगे बुक कीपिंग लेवल 2 में एगो सर्टिफिका बाटे और खोजता एगो जनरल वर्ड प्रोसेसिंग ऑपरेटर जेकर HSC बाटे। एप्लीकेशन करे खातिर ई वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर दी है www.mgirti.ac.mu। जस्ती जानकारी खोजब तो टेलीफोनी करिए 403 20 27 न 57 68 51 99। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख 31 अगस्त 2026।
जे पब्लिक सेक्टर में काम खोजत हुआ।

0: त यी भी सुनते चला कि लोकल गवर्नमेंट सर्विस कमीशन एगो लैंड सर्वेयर खोजता आपली कासो करे खातिर ई वेबसाइट विजिट करिया https://ljsc.gov.mu.org आपली कासो करे के अंतिम तारीख 27 अगस्त 2026 प्राइवेट हाउसहोल्ड के सेक्टर में एगो केयरर कम हाउसमेट के खोज बाते ओ भी प्लेन दे रोच रिवियर दू रैंपोर्ट के रीजन में एप्लीकेशन करे खातिर रिवियर दू रैंपोर्ट ईआईसी टेलीफोनिक करिया ई नंबर पर 412-69-25 अपवेल के रीजन में एगो हाउसहोल्ड एम्प्लॉय के खोज बाटे एप्लीकेशन करे खातिर गुडलैंड्स ईआईसी टेलीफोनिक करिया ई नंबर पर 282-59-17 नत 282-59-18 क्यूपिप के रीजन खातिर एगो बेबी सीटर के खोज बाटे एप्लीकेशन करे खातिर क्यूपिप ईआईसी टेलीफोनिक करिया 675-1115 और कैटरबोन के रीजन खातिर एगो हाउसहोल्ड एम्प्लॉय के खोज बाटे त एप्लीकेशन करे खातिर कैटरबोन ईआईसी टेलीफोनिक करिया 427-44-39 मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस और एमबीसी के मिलल जुलल सहयोग से नू ट्रावाय नू लावेनिया
1: चलिए श्रोताओ 7:12 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से चंद विज्ञप्तियां सुनिए। जरूरी मरम्मत कार्यों की वजह से कई इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। सबसे पहले लावांचिया के रहने वाले निवासियों को जिनमें है रॉयल रोड, टेम्पल रोड, शिवाला रोड, विलेज हॉल लेन के निवासियों को सूचित किया जाता है कि गुरुवार 27 अगस्त 2026 को सुबह 8:45 से लेकर शाम के 4 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ में है सदना के रहने वाले निवासियों को जिनमें है एवेन्यू चिलिप, एवेन्यू टालिपो, फ्लैट बंजन और आसपास की गलियों के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि गुरुवार 27 अगस्त 2024 को सुबह 9 बजे से लेकर दिन के 11 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमाप्रार्थी है और बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई सामान्य पर लाई जाएगी। तो श्रोताओं अभी आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से चंद विज्ञप्तियाँ सुन रहे थे, ये रेडियो मॉरिशस है। तो चलिए आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं मीडियम वेव 19 किलोहर्ट्ज पे हमारा प्रसारण हो रहा है, तो इस हिंदुस्तानी सभा को हम आगे बढ़ाएंगे।
2: दिल की बहार सुबह का नजराना रेडियो मॉरिशस पर

0: चलिए श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम आपसे यही कहेंगे, जो बीत गया उसे जाने दीजिए, जो आज मिला है उसे खुशी से लीजिए। यह जीवन को सुंदर बनाने का सबसे सरल तरीका है। तो चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग, हमारा प्यार भरा नमस्कार और आदाब आप सभी सुनने वालों को। सुबह 6 बजे से समय तक आप लोगों का साथ रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, ये सफ़र जो है हम जारी रखने वाले हैं दिन के 11 बजे तक। सुबह का नजाना कार्यक्रम, एक से बढ़कर एक कार्यक्रम आप सभी सुनने वालों के नाम। तो चलिए, ज़्यादा देर न करते हुए, गुरुवार का दिन है आज, आज है 27 अगस्त 2026। चलिए चिंतन हम सुनेंगे। चिंतन जो है डॉक्टर शांति महावीर जी की प्रस्तुति में आप सुन पाएंगे।
1: मूल्य, सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
2: आवश्यक नहीं कि हर समय मुख से भगवान का नाम लिया जाए। वह क्षण भी भक्ति का होता है जब मनुष्य मनुष्य के काम आए।

0: रेडियो मॉरीशस
1: झलकियां
2: रेडियो मॉरीशस।
3: चलिए श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम आपको बताते चलिए हमारे रेडियो कार्यक्रमों की रूपरेखा। श्रोताओ, इस समय आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुबह का नज़ाना कार्यक्रम को हम प्रसारित कर रहे हैं, चंद पुराने गाने आपकी सेवा में। 8 बजे भोजपुरी में समाचार पढ़े जाएंगे, समाचारों के उस पार सुबह का नज़ाना कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे और इसके बाद चंद डुएट्स गाने आपके नाम। 8:50 पर हमारी धरोहर कार्यक्रम किरण जानकी की प्रस्तुति में साथ में एक भोजपुरी गीत आपके लिए। 9 बजे के समाचारों के बाद आज की चर्चा कार्यक्रम अनुराधा की प्रस्तुति में और 10 बजे एक बार फिर से समाचार पढ़े जाएंगे और 10:03 पर भक्ति धारा कार्यक्रम होने वाला है और इस कार्यक्रम के अंतर्गत ज्ञान चक्र, ये कार्यक्रम जो है श्रावण मास

0: के संदर्भ में आप सुन पाएंगे सनातन धर्म मंदिर परिषद की तरफ से। और हमारा जो भक्ति धारा कार्यक्रम है इसे हम आगे बढ़ाएंगे 10:30 बजे श्रावण मास के शुभ अवसर पर, साथ में रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम आप श्री सनातन धर्मिया ब्रह्मान महासभा की तरफ से सुन पाएंगे। और 11 बजे समाचार पढ़े जाएंगे और इसके बाद उर्दू कार्यक्रम सायदा के साथ तेलुगु भाषा में कार्यक्रम गिरी शानी लेकर आएगी दिन के 12 बजे। 12:30 बजे आप तमिल भाषा में कार्यक्रम आरसी के साथ पाएंगे और 1:30 बजे मराठी भाषा में कार्यक्रम प्रीति के साथ जिन लेकर आएगी। दोपहर के 2 बजे मंडारिन में कार्यक्रम गुजराती कार्यक्रम अमिता के साथ 2:30 बजे आपकी पसंद कार्यक्रम 2:45 पर सुमिता के साथ। सपहर के 3 बजे समाचार पढ़े जाएंगे और उसके बाद आपकी पसंद कार्यक्रम को जारी रखा जाएगा। शाम के 4 बजे भक्ति सागर कार्यक्रम सुमिता की प्रस्तुति में। शाम के 5 बजे सराबहार गीत सुमिता के साथ। 6 बजे पूरा समाचार बुलेटिन। 6:30 बजे मंडारिन में कार्यक्रम दावित की प्रस्तुति में। तमिल भाषा में कार्यक्रम रात्रि के 7 बजे तमिल भाषा में कार्यक्रम युवारासन के साथ। तेलुगु भाषा में कार्यक्रम वर्षा लेकर आएगी 7:30 बजे 7:50 पर गीत गंगा ये मराठी भाषा में होने वाला है शीर्ष के साथ। देवीना लेकर आएगी भजले प्रभु का नाम 8:10 पर मैं फिले शब समीर के साथ। 8:40 पर रात्रि के 9 बजे भोजपुरी जहां भोजपुरी तड़का किरण के साथ सुनहरे पर ये कार्यक्रम गिनिशा की प्रस्तुति में। रात्रि के 11 बजे और रात्रि के 12 बजे से लेकर कल सुबह के 6 बजे तक चंद प्यारे प्यारे गीत आपकी सेवा में। तो हमारे रेडियो कार्यक्रमों की रूपरेखा झलकियां इस समय आप सुन रहे हैं।
1: झलकियां

वैसे श्रोताओं, नए सुबह नई उम्मीद लेकर आता है, साथ में नए सपने और नई ऊर्जा को भी साथ लेकर आती है। तो चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और आज का दिन आपके जीवन में खुशियों की नई रोशनी लेकर आए, हमारी यही कामना है। 7:26 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में। चलिए, कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं। आपके लाए हैं एक से बढ़कर एक गाना, चंद सदाबहार गीत आपके नाम, और हेमंत कुमार की आवाज़ में फिल्म खामोशी से लिया गया ये सदाबहार गीत आप सभी सुनने वालों के लिए।

वैसे श्रोताओं, सदाबहार गीतों की खासियत यही है, दौर बदल जाते हैं, चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन दिल को छू जाने वाली धुनें हमेशा अपनी जगह बनाए रखती है।

मैं और मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

तो चलिए श्रोताओं, बहुत ही प्यारा संगीत फिल्म सिलसिला से लिया गया और ये कहाँ गए हम, अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत एहसास है। इस गीत में प्रेम है, यादें हैं, साथ में जीवन के बदलते रास्तों की भावनाएं बहुत ही गहराई से महसूस होती हैं। तो चलिए गीतों का यह खूबसूरत सफ़र इसे आगे बढ़ाएंगे। फिल्म का नाम है आहिस्ता आहिस्ता और आपको याद है ये फिल्म जो है बहुत ही पॉपुलर हुए थे और इस फिल्म के सभी गाने जो है बेहद ही हिट है। तो चलिए एक बहुत ही प्यारा सा रोमांटिक गीत आप सभी सुनने वालों के लिए।

वैसे श्रोताओं, सुबह की हल्की सी ठंडक, हाथों में चाय या कॉफी का प्याला और साथ में मीठी सी मुस्कान और चंद प्यारे प्यारे गीत हो तो फिर क्या कहना।

श्रोताओ, जिंदगी भी समंदर की लहरों जैसी है, कभी शांत तो कभी उथल पुथल से भरी हुई। मगर सफर वही सुंदर है जहां हम हर लहर के साथ खुद को संभालते हुए आगे बढ़ते जाएं। बस यही सीख हमें लेना है। सुबह का नजाना कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं। कुछ ही घड़ी में 8 बजने वाले हैं और आप भोजपुरी में समाचार सुन सकेंगे। तो चलिए, प्यारा सा गीत फिल्म कलाकार से लिया गया आप सभी सुनने वालों के लिए।

8 बजे तक पेश बा भोजपुरी समाचार। सब लोगन के नमस्ते, भोजपुरी समाचार में आप लोग के स्वागत बाते। मंगलवार 1 सितंबर 2026 से मेट्रो एक्सप्रेस लाइन 2 पर एगो नवा सीधा कनेक्टिविटी शुरू हुई, जिनकी क्यूपिप टाउन सेंटर से रेजवी में महात्मा गांधी से जुड़ी। अब रोसिल सेंटर पर ट्रेन बदले के जरूरत नहीं पड़ी। अगते यात्री लोग के हो जा अनिवार्य रूप से ट्रेन बदले के परत रहल अब सीधा जाय सकें जा। बीच के सब स्टेशन पर ट्रेन रुकी, ई बिना रुके होला एक्सप्रेस ने है। मेट्रो एक्सप्रेस लिमिटेड के मार्केटिंग और कम्युनिकेशन मैनेजर बोलन कि अगर इस सीधा सेवा के इस्तेमाल काफ़ी बढ़ी तो कंपनी ई व्यवस्था के क्यूपिप और रेजवी के बीच स्थायी रूप से लागू करे पर विचार करी। ई बदलाव खासकर क्यूपिप से रेजवी मौका जाय होला छात्र और कामकाजी लोगन खातिर बहुत सुविधाजनक रही और समय के भी बचत हुई। मॉरिशस में मुंगा

की प्रजनन मौसम के करीब अयला संगे ही ओकर संरक्षण और पुनर्स्थापना से जुटल टीम ये प्राकृतिक घटना के निगरानी के तैयारी करत हवन स। इ दौरान ब्लूबे मेबक और पैदेशनी के आसपास समुद्र के पानी गुलाबी रंग के दिखाई दे सकी। यही सिलसिला में आज मेबक के सोशल सेंटर में एगो जानकारी सत्र लगावल जात बा। एकर आयोजन इकोस्विड और वी ओजीसीओ के पहल पर करल जात बा। एकर उद्देश्य आम लोगन के मूंगा के भूमिका, तटीय क्षेत्र के सुरक्षा में ओकर महत्वपूर्ण भूमिका और आज प्रवाल भित्ति यानी कि कोरल रीफ के सामने मौजूद खतरा के बारे में जानकारी देवे के है। ये पहल ऐसा समय में होता जब समुद्र के बढ़ल तापमान और मूंगा के विरंजन यानी कि कोरल ब्लीचिंग के घटना के कारण प्रवाल भित्ति पर दबाव लगातार बढ़त बाते। पॉम्पलमुस के निवासी के अब एगो नवा और आधुनिक बाजार मिल गल बाते। पुराना बाजार में बारिश के दिन में पहुँचे के अक्सर मुश्किल होत रहल। 138 मिलियन रुपया के लागत से हाल ही में उद्घाटित ई नवा बाजार में 400 से जस्ते स्टॉल बाते, जकर में मुख्य रूप से कृषि उत्पाद के बिक्री करल जाला। फिलहाल एगो समस्या बनल बाते, कपड़ा के व्यापारी पहला मंजिल पर अपन स्टॉल लगाए से इनकार करत हवन जा। उलू बुढ़त हवन जा कि हो जा पहुँचे खातिर एगो लिफ्ट हो के चाही। जिला परिषद उलोक के दूसर स्थान पर स्टॉल दे के प्रस्ताव रखे के फैसला कर ले बाते। सरकारी कर्मचारी के प्रशिक्षण से जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य योग्यता हासिल करे के रास्ता खुले सकी। उद्देश्य है प्रशिक्षण खाली भागीदारी प्रमाण पत्र तक सीमित नहीं रही। पब्लिक ऑफिसर्स, मानव संसाधन, प्रशासन, वित्त और प्रोक्यूमेंट जैसन क्षेत्र में प्रशिक्षण ले सकें जा। एकर तहत लोग के प्रमाण पत्र, डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएट स्तर के योग्यता हासिल करे के अवसर मिली। ये पहल के उद्देश्य सरकारी कर्मचारी के कौशल के मजबूत करे के और देश के विकास के जरूरत के बेहतर ढंग से पूरा करे के है। मामी गावा तुमांग के जमानत पर रिहाई के मांग के लिए की सुनवाई आज बेल एंड रिमांड कोर्ट में जारी रही। 10 महीना से सलाखा के पीछे स्थित ये मलागासी कारोबारी पर काला धन यानी मनी लॉन्डरिंग के आरोप बातें और एफसीसीओ का रिहाई पर आपत्ति जतैली आल बातें। मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन के गो विज्ञप्ति में एक पर ध्यान आकर्षित करल गल बा कि रक्षाबंधन सुख 28 अगस्त 2026 के ही मनावल जाए। ओकर अनुसार ई ध्यान दे के योग्य है कि राखी बांधे के कोनो समय प्रतिबंध नहीं बाते, बस इकरा सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच बांधे के चाहें। मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन बोले बाकी भाई बहन के बीच जोन खास बंधन बा उस समय के सीमा से परे है। और ये दूसर देश के समाचार में उत्तरी नेपाल में अचानक आयल बाढ़ तबाही मचा दिले बाते। कम से कम 160 जना के मारे जाए की खबर बा। करीब 750 जना लापता हवन जा, जिकर में पर्यटक भी शामिल बाते। पहाड़ी गांव में कीचड़ होला, तेज पानी के सैलाब आल और रास्ता में जोन भी आल ओकरा बहा ले गल। बाढ़ कई गो मकान के अपन चपेट में ले लीलक। नेपाल तिब्बत सीमा होला क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित होल बाते। अधिकारी के अनुसार लापता पर्यटक में भारत के सबसे जस्ती जना, अमेरिका के 54, ऑस्ट्रेलिया के 34, ब्रिटेन के 33 और नेपाल के सबसे जस्ती लोग शामिल हवन जा। ई इलाका तीर्थयात्री और ट्रैकिंग करे होला पर्यटक लोग के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। नेपाल में आल विनाशकारी फ्लैश फ्लड के बाद भारत राहत और बचाव अभियान में मदद खातिर बुध के 10 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री भेजक। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह संगे फोन में बात करलन और नेपाल में बाढ़ के कारण होल जान माल के हानि पर संवेदना व्यक्त करलन। वो बोलन कि कठिन समय में भारत के लोग नेपाल में अपन भाई बहन के संगे एकजुट खड़ा होवन स। प्रधानमंत्री मोदी दोहरैलन कि भारत नेपाल के हर संभव मानवीय सहायता प्रदान करे खातिर तैयार बाते। एक संगे भोजपुरी समाचार समाप्त भल। धन्यवाद।

0: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
1: शोक समाचार सुना जा महापुर एकलेजो गुडलैंड में 38 बरिस के थौचवीतों के श्री ज्ञानेश्वर सिंह बाल्डोवा श्री ज्ञानेश्वर सिंह बाल्डोवा जिनकरा लोग आतिश से जानत रलन जा के मृत्यु हो गल बा। अर्थी आज फजर के 9:09 इनकर मकान महापुर एकलेजो गुडलैंड से उठा के दाह संस्कार खातिर बेलमो गुडलैंड के शमशान भूमि ले जाल जाए। गोठवायाल गोश्तिया में आगादों शब के करीब 51 बरिस के सैकौतेनों के श्री सती प्रिया गंगा पैदाइश नाम चांदू जिनकरा लोग सती से जानत रलन जा की मृत्यु हो गल बा। अर्थी आज दिन के 10 बजे इनकर मकान गोठवायाल गोश्तिया से उठा के दाह संस्कार खातिर दाहोची के शमशान भूमि ले जाल जाए। डिस्पेंसरी गली मिडलैंड्स में 87 बरिस के कथवासीतों के जनाब कासाम कादेय जिनकरा लोग कासाम से जानत रलन जा इंतकाल कर गल हुवन। इनकर जनाजा काल रात के 9:15 पर इनकर मकान डिस्पेंसरी गली मिडलैंड से निकाल के दफनाए खातिर यूनियन पार्क के कब्रिस्तान ने जाल गल। बलराम डसोई लेन पालमो में 65 बरिस के श्वसन सैकों के श्री हरिदत्त डसोई जिनकरा लोग रोहित से जानत रलन जा के मृत्यु हो गल बा। अर्थी आज दिन के 2 बजे इनकर बेटा शुभम डसोई के मकान बलराम डसोई लेन पालमो से उठा के दाह संस्कार खातिर कथकोको के शमशान भूमि ले जाल जाए। रेजिडेंस विन्यो नंबर 103 सियाकुंस्टांस सैं पियर में 101 बरिस के 100 एनों के श्रीमती पिचाई चेलाम्बोई जिनकरा लोग लक्ष्मी से जानत रलन जा के मृत्यु हो गल बा। अर्थी आज दिन के 2:00 कर बेटी वीरन अमुगम के मकान रेजिडेंस विन्यो नंबर 103 सियाकुंस्टांस सैं पियर से उठा के अंतिम संस्कार खातिर सियाकुंस्टांस सैं पियर के शमशान भूमि ले जाल जाए। गोठवायाल बोबासे में 101 बरिस के 100 एनों के श्रीमती वेलामा अमुगम पैदाइश नाम कुटापेन जिनकरा लोग आकाजेगा से जानत रलन जा के मृत्यु हो गल बा। ई अक्टे नंबर 14 इंकामान गली रोजिल रहत रलन इनकर अर्थी आज दिन के 2 बजे एलियंसन्स गोठवायाल बोबासे से उठा के अंतिम संस्कार खातिर सैमौत मोहोश के शमशान भूमि ले जाल जाए। नंबर 7 डेकाउन स्ट्रीट रोजहिल में 82 बरिस के कथवा देशों के श्रीमती लक्ष्मी नारायणन पैदाइश नाम कुंजामाली जिनकरा लोग राजामणि से जानत रलन जा के मृत्यु हो गल बा। अर्थी आज सपहर 3 बजे इनकर पति श्री विष्णु नारायणन के मकान नंबर 7 डेकाउन स्ट्रीट रोजहिल से उठा के दाह संस्कार खातिर सहमौत मोहोश के शमशान भूमि ले जाल जाए। नंबर 7 कैपिटेन पोंट्रे सेंट क्वा पोटवी में 76 बरिस के श्वसन सेजों के श्री कृष्णा पुलगाडू जिनकरा लोग प्रेम से जानत रलन जा के मृत्यु हो गल बा। अर्थी आज दिन के 2 बजे इनकर मकान नंबर 7 कैपिटेन पोंट्रे सेंट क्वा पोटवी से उठा के दाह संस्कार खातिर सिपाही भूले वाली दीपत के शमशान भूमि ले जाल जाए। मगनलाल देसाई स्ट्रीट बोबासे में 64 बरिस के श्वासन कथों के श्रीमती शांता कुमारी नाउर पैदाश नाम बिकू जिनकरा लोग गरीब से जानत रलन जा की मृत्यु हो गल बा। अर्थी आज दिन के 11 बजे इनकर मकान मगनलाल देसाई स्ट्रीट बोबासे से उठा के दाह संस्कार खातिर कौलिवजे के शमशान भूमि ले जाल जाए। पदारत गली लकावेन बाकुआ में 90 बरिस के कथवें जीजों के श्रीमती देवहूती पदारथ

अरे लोग बामा से जानत रलें जा कि मृत्यु हो गल बा। अर्थी आज दिन के 12 बजे इनकर मकान पदारथ लेन लाकावैन वाकवासी उठा के दाह संस्कार खातिर सुल्फेगिनो के शमशान भूमि ले जाल जाए। जगुलेन मौताबा में 62 बरिस के स्वासंदेजों के श्री हरीश चंदी नु श्री हरीश चंदी नु जिनकरा लोग प्रीतम से जानत रलन जा की मृत्यु हो गलवा। अर्थी आज दिन के 12 बजे इनकर पत्नी श्रीमती कविता दिनू के मकान जगुलेन मोहताबा से उठा के दाह संस्कार खातिर मागिशानी रोजबेल के शमशान भूमि ले जल जाए। गुलाम ओगैल पाए में 52 बरिस के सेकंदेजों के बीबी सहीना खान महामुडाली बीबी सहीना खान महामुडाली पैदाइश नाम रजाक जिनकरा लोग साहिन से जानत रलन जा इंतकाल कर गल हवन। जनाजा जुनबाती आज दिन के 11 बजे इनकर मकान गुलाम ओगैल पाए से निकाल के दफनावे खातिर पाए के ही कब्रिस्तान ले जाल जाए। कालीमाई गली क्लेमोशिया में 86 बरिस के काथोवैसीजों के श्रीमती राजकुमारी रामसरन श्रीमती राजकुमारी रामसरन जिनकरा लोग बुलफाम ओंगले से जानत रलन जा के मृत्यु हो गल बा। अर्थी आज दिन के 11 बजे इनकर बेटा विजय रामसरन के मकान कालीमाई स्ट्रीट क्लेमोशिया से उठा के दाह संस्कार खातिर मेजिन का दिमास्क के शमशान भूमि ले जाल जाए। रुई लावो सेंट क्वा में 72 बरिस के श्वासन डूजों के श्री लीलाधर श्री लीलधर राम नारायण श्री लीलधर राम नारायण जिनकरा लोग गिरीश मगाल से जानत रलन जा के मृत्यु हो गल बा। अर्थी आज फजीर के 9 बज के आधान कर मकान रुई लावो सेंट क्वा से उठा के दाह संस्कार खाते सिपाही भूले वाले दीपत के शमशान भूमि ले जाल जाए। और रुटवायाल त्यागोज में 59 बरिस के सैकौत नेवों के श्रीमती शीला वीरापन श्रीमती शीला वीरापन पैराशिना मूर्त जिनकरा लोग देविका से जानत रलन जा के मृत्यु हो गलबा। अर्थी आज दिन के 10 बजे इनकर मकान रुटवायाल त्यागोज से उठा के दाह संस्कार खातिर बुआ मौशा के शमशान भूमि ले जाल जाए। दशोक में डुबल इस सब परिवार लोगन के प्रति हमने की दिली हमदर्दी बातें।

बहुत ही प्यारा सा डुएट जो है कार्यक्रम की पहली भेंट में फिल्म हर जाई से लिया गया, आशा भोंसले और किशोर कुमार की मीठी आवाज़ों में। श्रोताओ, कुछ फिल्में पर्दे पर आती है और गुजर जाती है, लेकिन कुछ फिल्में अपनी कहानी और गीतों के जरिए यादों में बस जाती है। हर जाई भी एक ऐसी फिल्म है जिसके सदाबहार नगमे आज भी दिल को पुराने दौर की सैर करा देते हैं। तो आइए उसी सुनहरे दौर की एक प्यारी सी धुन के साथ यादों को हम ताज़ा करेंगे।

चलिए श्रोताओं, 8:21 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में। ये रेडियो मॉरिशस है, मीडियम वेव 19 किलोहर्ट्ज पे हमारा प्रसारण हो रहा है। तो चलिए समय से लेकर 8:50 पर चंद डुएट्स गाने आपके लिए श्रोताओं। वैसे

श्रोताओं, जब बात हो उस दौर की फिल्मों की जिनमें कहानी के साथ साथ संगीत भी दिल जीत लेते हैं, द ग्रेट गैम्बलर का नाम जरूर याद आता है। तो चलिए इस फिल्म से लिया गया गीत आप सभी सुनने वालों के लिए।

चलिए ये अगला गीत सुलक्षणा पंडित और अनवर की मीठी आवाजों में बहुत ही लोकप्रिय गीत है, आज भी बेहद लोकप्रिय सदाबहार गीतों में भी गिना जाता है। आज बजकर 32 मिनट हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्रोताओं, ये रेडियो मॉरिशस है, चंद्वेट्स गाने आप

चलिए एक से बढ़कर एक गीत आप सभी सुनने वालों के नाम हम कर रहे हैं इस समय, और प्यारा सा गीत अभी आप सुन रहे थे। तो चलिए थोड़ी सी बेवफाई फिल्म से लिया गया, बहुत ही अच्छी मूवी है। और साथ ही साथ कार्यक्रम की अगली भेंट में आशा भोंसले, किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ों में फिल्म का नाम है राम बलराम।

चलिए, फिल्म का नाम है मंजिल मंजिल और इस फिल्म से लिया गया गीत आशा भोंसले और शैलेंद्र सिंह की आवाज़ों में आप सुन पाएंगे। बहुत ही प्यारा सा गीत है, रोमांटिक गीत है, इसे आप ज़रूर गाइए, गुनगुनाए हमारे साथ।

0: तो चलिए श्रोताओं, चंद डुएट्स गाने समय आप सुन रहे थे। इस कार्यक्रम का समय पूरा हो चला। चलिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से ये विज्ञप्ति सुनिए। सुदनक के रहने वाले निवासियों को, जिनमें है अवेन्यू चिलिप, अवेन्यू तालिपो, फ्लैट बंजन और आसपास की गलियों के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि गुरुवार 27 अगस्त 2026 को सुबह के 9 बजे से लेकर दिन के 11 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इस सभी असुविधाओं के लिए, जी हाँ, इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी और बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई सामान्य पर लाई जाएगी। तो अभी आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से एक विज्ञप्ति सुन रहे थे श्रोताओं। चलिए समय हुआ है हमारी धरोहर कार्यक्रम का। ये कार्यक्रम किरण जानकी के साथ।
1: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।
2: नमस्ते, हमारी धरोहर में आपके स्वागत बा। जैसे जानेला हर बरिस जब रक्षाबंधन के दिन आवेला त ओकर संगे संगे एगो और बड़ा महत्वपूर्ण दिन मनावल जाला और उह संस्कृत दिवस। संस्कृत दिवस हर बरिस रक्षाबंधन के संगे मनावल जाला और ई मानल जाला कि भाषा धरोहर के एगो बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। यूनेस्को ई भी मान के चलेला कि भाषा गल त संस्कृति गल। सब हिंदू धर्म ग्रंथ संस्कृत में ही लिखल गल बा। ई मानल जाला कि संस्कृत देवों की भाषा है। देवी देवता ई भाषा में बतियात रलन जा और ई सब पुराना भाषा में अपन योगदान दिले बा। हिंदू धर्म के सब पूजा पाठ सब मंत्र यही भाषा में होवेला। यज्ञ भी संस्कृत में भी होवेला। विश्व संस्कृत दिवस पहला हला 1969 में मनावल कर रहा। जैनिज्म, बुद्धिज्म और सिखिज्म में भी बहुत मात्रा में संस्कृत के इस्तेमाल होवेला। भले ही आज संस्कृति एगो चलती फिरती भाषा गिनेला संस्कृत के, भले ही आज संस्कृत एगो चलती फिरती भाषा नहीं है, फिर भी भारत के 22 औपचारिक भाषा में से ई एगो है। और फिर उत्तराखंड के राज्य में संस्कृत भाषा के भरपूर प्रयोग होवेला। आज एकर जगह हमनी के जीवन में हिंदू परंपरा, दर्शन, धार्मिक पर्व और त्योहार में बा। और बहुत देश में ई स्कूल में पढ़ावल जाला। मॉरिशस में तो विश्वविद्यालय स्तर तक संस्कृत के पढ़ाई होवेला। मॉरिशस में संस्कृत स्पीकिंग यूनियन भी बा। और संस्कृत के जनक महर्षि पाणिनी हवन आप ही संस्कृत के व्याकरण तय कर ले हवा। 5वीं और 6ठी सदी में महर्षि पाणिनी पुराना भारत के एगो प्रतिष्ठित ज्ञानी, संस्कृत व्याकरण रचयिता और भाषा के पंडित रलन। विश्व भर में भाषा के बचावे पर और बढ़ावा देवे पर जोर देवल जाला और संस्कृत भी इमें शामिल बा। भले ही भारत में आज 1% से कमती जनता ई भाषा बोलेला, पर एकर उच्चारण सब धार्मिक कथा, पूजा या हवन पर होवेला। पंडित और पुरोहित लोग के द्वारा करा गल ई उच्चारण हमने सब कोई सुनीला जा। सब मंत्र संस्कृत में है और MBC रेडियो पर संस्कृत भाषा के सिखावे पर भी प्रोग्राम चलेला। और संस्कृत के प्रभाव दूसरा भाषा पर भी बहुत हद तक होलबा, जैसे ग्रीक, लैटिन, पर्शियन और जर्मन पर। हिंदी के तो बात ही नहीं कर रहा। और भारत के जो कितने पूर्वी भाषा बा उस सब में संस्कृत के बहुत प्रभाव बा। देवनागरी लिपि में ई भाषा लिखाला और मॉरिशस जैसन छोटा देश में संस्कृत स्पीकिंग यूनियन के स्थापना विशेष उल्लेखनीय है। संस्कृत विश्व दिवस के आप सबको के बहुत बहुत शुभकामना। नमस्ते।
1: हमारी धरोहर किरण।

0: जानकी के साथ। हमारी धरोहर
1: तो चलिए श्रोताओं, हमारी धरोहर कार्यक्रम के बाद आइए सुनते हैं एक भोजपुरी गीत। कुछ ही घर में 9 बजने वाले समाचार सुन सकेंगे आप, और समाचारों के बाद आज की चर्चा कार्यक्रम अनुराधा के साथ। तो मिलते हैं वापस 10 बजे भक्ति धरा कार्यक्रम को लेकर। आप सभी को शुभ दिन।

पहली सितंबर 2026 से मेट्रो एक्सप्रेस लाइन 2 पर एक नई सीधी कनेक्टिविटी शुरू होगी। ये क्यूपिप टाउन सेंटर को रेजुई के महात्मा गांधी से जोड़ेगी। इससे रोज हिल सेंट्रल पर ट्रेन बदलने की आवश्यकता नहीं होगी। पहले यात्रियों को वहां अनिवार्य रूप से ट्रेन बदलनी पड़ती थी, अब सीधे जा सकेंगे। मेट्रो एक्सप्रेस के अनुसार अगर इस सीधी सेवा की बहुत मांग रही तो कंपनी इस व्यवस्था को क्यूपिप और रेजुई के बीच स्थायी रूप से लागू करने पर विचार करेगी। पॉम्पलमस के निवासियों को अब एक नया और आधुनिक बाजार मिल गया है। पुराने बाजार में बारिश के दिनों में पहुंचना अक्सर मुश्किल होता था। 138 मिलियन रुपए की लागत से हाल ही में उद्घाटित इस नए बाजार में 400 स्टॉल हैं, जिनमें मुख्य रूप से कृषि उत्पादों की बिक्री की जाएगी। फिलहाल एक समस्या है, कपड़ों के व्यापारी पहली मंजिल पर अपने स्टॉल लगाने से इनकार कर रहे हैं।

उनका कहना है कि वहां पहुंचने के लिए लिफ्ट होनी चाहिए थी। जिला परिषद ने उन्हें किसी अन्य स्थान पर स्टॉल देने का प्रस्ताव रखा है। मामी गावाटुबांग की जमानत पर रिहाई की मांग को लेकर सुनवाई आज गुरुवार को बेल एंड रिमांड कोर्ट में जारी रहेगी। 10 महीनों से सलाखों के पीछे स्थित इस मलागासी कारोबार पर कालाधन यानी कि मनी लॉन्डरिंग का आरोप है और FCC ने उनकी रिहाई पर आपत्ति जताई है। मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन के एक विज्ञप्ति में इस पर ध्यान आकर्षित किया गया है कि रक्षाबंधन शुक्रवार 28 अगस्त 2026 को ही मनाया जाएगा। उसके अनुसार ये ध्यान देने योग्य है कि राखी बांधने का कोई समय प्रतिबंध नहीं है, बस इसे सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच बांधा जाना चाहिए। मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन का कहना है कि भाई बहनों के बीच जो विशेष संबंध है वो समय की सीमाओं से परे है। विदेश में उत्तरी नेपाल में आई भयावह बाढ़। उत्तरी नेपाल में अचानक आई बाढ़ ने तबाही मचा दी है। कम से कम 160 लोगों के मारे जाने की खबर है। करीब 750 लोग लापता बताए जाते हैं, जिनमें पर्यटक भी शामिल हैं। पहाड़ी गांवों में कीचड़ वाला तेज पानी का सैलाब आया और रास्ते में जो भी आया उसे बहा ले गया। बाढ़ ने कई मकानों को अपनी चपेट में ले लिए और नेपाल तिब्बत सीमा वाला क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। अधिकारियों के अनुसार लापता पर्यटकों में भारत के 100 से अधिक लोग शामिल हैं, अमेरिका के 54, ऑस्ट्रेलिया के 34, ब्रिटेन के 33 और नेपाल के 100 से अधिक लोग शामिल हैं। ये इलाका तीर्थयात्रियों और ट्रैकिंग करने वाले पर्यटकों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। नेपाल में आई विनाशकारी फ्लैश फ्लड के बाद भारत ने राहत और बचाव अभियान में मदद देने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। कल बुधवार को 10 टन मानवीय सहायता एवं आपदा राहत सामग्री भेजी गई। वहां पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से फ़ोन पर बात की और नेपाल के बाढ़ के कारण हुई जानमाल के हानि पर संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस कठिन समय में भारत के लोग नेपाल में अपने भाई बहनों के साथ एकजुटता से खड़े हैं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद। नमस्कार।

0: आज की चर्चा।
1: आप सभी को नमस्कार और आदाब। इस कार्यक्रम में आप सबों का हार्दिक स्वागत हम करते हैं और आज हमारे साथ हैं हमारी टीम में है कादर कोदादीन, उरुसा है और हमारे प्रोड्यूसर है जिनेश। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी बिल्कुल तैयार हैं ये प्रोग्राम सुनने के लिए। तो समाज एक ऐसी चीज़ है जो कभी स्थिर तो नहीं रहती। वक्त बदलता है, टेक्नोलॉजी बदलती है, हमारी लाइफ स्टाइल भी बदलती है और उन सब के साथ बदलता है हमारा समाज। जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बताया, हमारे रिश्ते भी यानी कि रिलेशनशिप्स और ख़ुद को देखने का जो हमारा नज़रिया, ये भी बदल गई है और अलग अलग है। और आज हम एक ऐसे दौर में हैं जहाँ मीडिया हमारी ज़िंदगी का सिर्फ एक हिस्सा तो नहीं है बल्कि हमारी सच्चाई, हमारी पहचान, हमारी जो सोशल रियलिटी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। तो सोशियोलॉजी के इस बदलते समाज को समझने के लिए इम्पोर्टेंट एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट है पोस्ट मॉडर्निज्म। और ये सवाल ये उठता है यहाँ पर, टेक्नोलॉजी और मीडिया ने सिर्फ हमारी कम्युनिकेशन बदली है या फिर हमारे समाज के नियम, हमारे रिश्ते, हमारे मूल्य और पहचान को भी बदल डाली है। तो इसी विषय से संबंधित पोस्ट मॉडर्निज्म पर ये चर्चा हमने रखा है। और आज हर्ष की बात है कि हमारे साथ एक सोशियोलॉजिस्ट हैं, समाज शास्त्री हैं, एक सोशल वर्कर हैं, एक रिसर्चर हैं, जियोग्राफर हैं और मॉरिशस विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस के एक फैकल्टी मेंबर रह चुके हैं। आप हैं श्री हेमंत रामगोबीन जी। तो हमारे इस प्रोग्राम में हेमंत जी, आपको नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत हमारे इस प्रोग्राम में। तो जैसे कि हमने कहा कि पोस्ट मॉडर्निज्म, शायद ये जो शब्द है बहुत मुश्किल है, डिफिकल्ट है। तो हेमंत जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे आज के हमने के जो विषय है पोस्ट मॉडर्निज्म, एकर शुरुआत कब से हो, एक सरल भाषा में बताएं कुछ।
2: पोस्ट मॉडर्निज्म समझने के लिए, जैसे वो शब्द कह रहा है कि पोस्ट मॉडर्निज्म मतलब मॉडर्निज्म के बाद, तो ये उसको पोस्ट मॉडर्निज्म समझने के लिए हमको समझना चाहिए मॉडर्निज्म क्या है। देखिए, हमारे मानव का इतिहास में बहुत से बड़े इवेंट्स हुए हैं जिसको कहते हैं हम रेवोल्यूशन
1: जी।
2: रेवोल्यूशन पहला ऐसा देखेंगे तो लगभग चार रेवोल्यूशन हुए हैं। पहला रेवोल्यूशन जब एग्रीकल्चर का इन्वेंशन हुआ, तो एग्रीकल्चर जब लोग मनुष्य
1: मैनुअल वर्कर्स
2: नहीं मतलब बोने लगे,

0: खाने के लिए एक ही जगह में, तो वहाँ से सेटल लाइफ विलेजर्स का कल्चर शुरू हुआ, सेटल लाइफ। ये लगभग 12,000 साल पहले, इसको कहते हैं नियोलिथिक रेवोल्यूशन। उसके बाद एक 1500 अप्रोक्सीमेटली में, 1500 ये अभी कैसा जैसे बोलते हैं, यहाँ पर एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन हुआ। साइंटिफिक रेवोल्यूशन उसका मतलब, कभी भी हमारी हिस्ट्री में साइंस नहीं था। साइंस मतलब वेरिफिकेशन, कैसे बोलते हैं, एम्पिरिकल एविडेंस। ये कह रहे हैं आप ठीक है, लेकिन उसका सबूत क्या है? तो इससे एक दूसरा सोच का ये धारा बहा, एक दूसरे विचार का धारा बहा। उसके कारण बहुत से इन्वेंशंस हुए। एक एक अनुभव दे रहा हूँ मैं आपको। 1543 में पहली बार एक साइंटिस्ट ने कहा कि देखो, हमारे धरती जो है ना, वो सूर्य का चक्कर करता है।
1: अच्छा।
0: सूर्य धरती का चक्कर नहीं करता है। ये सब जितना कहते हैं, जितना ये सोच है, सब बदल गया। हेलियोसेंट्रिक यूनिवर्स।
1: ओके।
0: उसके कारण हमें बहुत से इन्वेंशन हुआ। मशीन कैसे लोहा हुआ बनाते हैं, कैसे कोल यूज़ करेंगे एनर्जी के लिए। तो उसके कारण इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ
1: जी।
0: 1750 में शुरू हुआ इंग्लैंड में और यूरोप में फैल गया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्यों रेवोल्यूशन है? क्यों इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से आगे सब कुछ हमारे हाथों से बनते थे। उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद मशीन बनने लगे। ये जो रेवोल्यूशन है बहुत महत्व है हमारे जीवन में, मनुष्य का जीवन में। एक अनुभव दे रहा हूँ आप। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय जब शुरू हुआ, भारत में एक मैन, एक आदमी पुरुष, उसका कैसे बोलते हैं उसको, लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 32 ईयर्स था। अभी लगभग 75 है। मॉरिशस, इंग्लैंड में अभी 80 हो गया है अप्रोक्सीमेटली। तो क्यों इतना चेंज हुआ? क्योंकि हमारा लिविंग कंडीशन सब बदल गया
1: जी।
0: अच्छे खाना, खाना का वो सिक्योरिटी, अच्छे जीने का जगह, दवाई का इन्वेंशन, क्लीनलीनेस, सब कुछ। और ये जो अभी का जो जीवन, अभी का जो दुनिया हम देख रहे हैं, बड़ा बड़ा हवाई जहाज, बहुत बड़े बड़े शहर, टेक्नोलॉजी, मशीन्स, बहुत सुंदर गाड़ियाँ, बड़े बड़े महल,
1: तो इन सब डेवलपमेंट से हमने के समाज कैसे प्रभावित होगा?
0: ये सब डेवलपमेंट जो है, इतना डेवलपमेंट है, उसका एज सिर्फ 275 साल है। उससे पहले ये सब कुछ नहीं था। सब पूरा, जैसे कह मैं अभी कहा कि एग्रीकल्चर था, गांव था। ये जो सिविलाइजेशन है एकदम नया है। अभी बहुत थोड़ा समय में इतना डेवलपमेंट हुआ है। और ये जो अभी का समय जो कहते हैं, आपने वो प्रश्न पूछे, तो 1750 से पहले उसको ट्रेडिशनल सोसाइटी कहते थे, प्री मॉडर्न। और अभी 1750 से 1970 तक इसको मॉडर्निटी कहते हैं, मॉडर्न पीरियड। और क्योंकि और एक रेवोल्यूशन हो गया है एक तरफ से, उसको कहते हैं डिजिटल रेवोल्यूशन
1: जी।
0: डिजिटल रेवोल्यूशन कॉमन पॉलॉन्स में कैसे बोलते हैं, वो सब कुछ वो डिजिटलाइज हो गया, 01 टेक्नोलॉजी से कम्युनिकेशन। ओके। ये लगभग 1971 से शुरू हुआ। तो इसमें रेवोल्यूशन आया कंप्यूटर का, लैपटॉप का। देखिए छोटा जो लैपटॉप, ये लैपटॉप ने मतलब पर्सनल कंप्यूटर। उससे पहले एक कंप्यूटर का साइज लगभग था एक रूम के बराबर। उसके बाद एक टेबल पर रख सकते थे। उसके बाद आया इंटरनेट। आज वही कंप्यूटर हमारे पॉकेट में है,
1: मोबाइल।
0: हाँ, तो ये जो है डिजिटल रेवोल्यूशन। तो सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं ये जो हम एरा में जी रहे हैं एकदम अलग से है। कैसे बोलते हैं जो फ्रांसे में, फ्रेंच में, जो

0: हमें भी। तो अभी क्या हो रहा है अपना जीवन में, ये अभी पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड जैसे कहते हैं, पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो अभी सोशियोलॉजिस्ट समझ रहे हैं कि क्या हो।
1: तो ये सब मेकानाइजेशन जब मजदूर लोग के रिप्लेस कर लग तो एक कॉन्सिक्वेंस कौन चीज रहा
0: नहीं, तब जब मजदूर लोग के रिप्लेस

0: बेचने लगे। और मेकनाइजेशन मतलब अभी यूज़ ऑफ एनर्जी कुआँ से कोल, अभी बाद में एक 100 साल के बाद में डीजल शुरू हुआ, तब अभी बहुत से डेरिवेटिव सही एनर्जी का, तो हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है बहुत सुधर गया। वो धीरे धीरे ये जो मशीन से बने का चीज़ बहुत फैल गया दुनिया भर में। मैं कहते हैं ये 20th century में, अभी मॉरिशस में ही हमारे यहाँ भी एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था 1985 और 1995 के बीच में। बहुत से लीजिंग फैक्ट्रीज खुला था, वो टेक्सटाइल मशीनरी एंड सो ऑन। तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये एकदम ख़राब है, कैसे जब भी मैंने आपको बताया कि लोग ज़्यादा अच्छा से जीने लगे, लेकिन उसका प्रॉब्लम भी आया है। अभी हम इतना पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं कि हमारे जो जो धरती माता है वो बहुत अफेक्ट हो गया है। अभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अभी देखिए नेपाल में क्या हो गया, अभी इतना गर्मी था यूरोप में, तो उसका परिणाम है। उसका पोस्ट मॉडर्निस्ट कहते हैं कि देखो क्या हो गया, साइंस ने हमारा बहुत सुधारा और एट द सेम टाइम बहुत कुछ बिगाड़ दिया अपना जीवन में। बिगाड़ दिया मतलब बीमारी आया है, पोल्यूशन आया है, लेकिन ये हम क्या करें, अभी उसका समस्या का वो हल ढूंढ रहे हैं, लेकिन कठिन है। अभी इतना पोल्यूशन, मैंने एक बार प्रोग्राम किया था वो क्लाइमेट चेंज के बारे में, कितना हम डिपेंडेंट है फॉसिल फ्यूल्स पर, तो ये सब साइंस का परिणाम है। लेकिन उससे जुड़े हुए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कंज्यूमरिज्म। पोस्ट मॉडर्न लोग कहते हैं कि देखो आप कौन है, अभी आपका आइडेंटिटी क्या है, आपका आइडेंटिटी ये नहीं है कि आप कितना अच्छा आदमी है, कितना वैल्यूफुल लाइफ जीते हैं, क्योंकि कितना इंटेलिजेंट है, नो। आपका आइडेंटिटी है क्या आपके पास है, व्हाट डू यू पोसेस, कैसा घर है आपका, कितना बड़ा गाड़ी है, कितना पैसा है, कितना बार इंग्लैंड कितना बार फ्रांस जाते हो टूरिज्म में, ये हमारा आइडेंटिटी है कंज्यूमरिज्म। और क्या किए हमने, अपने घर को वेयरहाउस बना दिया है, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल है हमारा आइडेंटिटी, मतलब देखो अपना अभी गाड़ी पर अपना नाम लिख देते हैं अपना आइडेंटिटी को पुश करने के लिए। तो सभी ये धाव पर है, सभी लोग भाग रहे हैं ताकि ज़्यादा पैसा कमाए, ज़्यादा कंज्यूम किए, लेकिन वो अपने असलियत में हैप्पीनेस नहीं लाते।
1: तो इसी तरह हमारी जो मॉडर्न दुनिया में मीडिया का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा योगदान है,
0: बहुत बड़ा योगदान है। मैं सहमत हूँ। अभी हम कह रहे हैं कि डिजिटल रेवोल्यूशन नहीं, सिर्फ उससे पैदा हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
1: AI आया है, टिकटॉक है, यूट्यूब है।
0: पहले ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ था, आपका फोटो ये वो फिल्म सब रहे निगेटिव पॉजिटिव, तब बाद में कलर फोटोग्राफी आया। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अगर आप मुस्कुरा नहीं रहे तो आपको मुस्कुरा देंगे। पता होगा आपको कि कितने से सॉफ्टवेयर सब निकले, लेकिन उसका बहुत बहुत बेनिफिट्स है। डिजिटल रिवॉल्यूशन का, डिजिटलाइजेशन का बहुत से बेनिफिट्स है। वी आर कनेक्टेड टू द वर्ल्ड। आपको एक अनुभव दे रहा हूँ, मेरे पास कोई ये फिगर है, आपको सिर्फ शेयर करना चाहता हूँ कि 1998 में अपना डिजिटल रिवॉल्यूशन का जो ये शुरू हुआ था,
1: ट्रेंड
0: नहीं उससे पहले शुरू हो गया था, लेकिन जब कनेक्शन शुरू हुआ था इंटरनेट में, इंटरनेट से 1998 में 140 मिलियन लोग कनेक्टेड थे इंटरनेट से, 2000 में 360 मिलियन, और 2024 में 5.5 बिलियन, अभी लगभग 26 में 6 बिलियन। हमारे पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड है 8.3 बिलियन, मतलब नियरली 70% ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट। तो क्या प्रभाव होगा उससे, बहुत प्रभाव है। कैसे बोलते हैं अभी सेज यू जामे भी, इट हैपन नेवर बिफोर। और उसका इम्पैक्ट क्या है, सबसे बड़ा इम्पैक्ट कैसे मैं बोला कंज्यूमरिज्म, आपको दुकान में नहीं जाना पड़ेगा, घर ही से खरीदो। शॉपिंग कहाँ से, घर से, पूरा दुनिया का माल है सब, पैसा कैसे भरने का।

0: डिजिटल पेमेंट, तो ऐसा कभी नहीं था और उसका प्रभाव जरूरी होगी मनुष्य के जीवन पर।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो उसके सोशियोलॉजिस्ट को कहते हैं ये मीडिया का है, इट फॉल्स अंडर मीडिया, डिजिटल मीडिया। और शायद मैंने पहले कहा होगा कोई दूसरा प्रोग्राम में, हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में 5 इंस्टीट्यूशंस हैं। इंस्टीट्यूशंस मीन सामाजिक संस्थान, मतलब मेजर इंस्टीट्यूशंस, वही मतलब समाज को चलाते हैं। पहला है परिवार, फैमिली। दूसरा है वर्कप्लेस, जहाँ पर काम करते हैं। और पॉलिटिकल सिस्टम, कैसे कम्युनिज्म है कि या कैपिटलिज्म कि डेमोक्रेसी है। तीसरा है एजुकेशन, चौथा है रिलीजन, और पांचवा है मीडिया। तो अभी 1970 तक, अभी ये समाजशास्त्री लोग बोलते हैं, सोशियोलॉजिस्ट बोलते हैं, अंतिम 1970 सबसे महत्व संस्थान, इंस्टीट्यूशन, वो परिवार था।
1: परिवार था।
0: अभी सबसे महत्व इंस्टीट्यूशन मीडिया हो गया है। तो परिवार में वैल्यूज था, वेरी स्ट्रॉन्ग रूल्स एंड रेगुलेशंस था, मीडिया में वैल्यूज है? आप ही कह सकते हैं कहाँ है वैल्यूज मीडिया का।
1: लेकिन ये सच बात है कि अभी जब कोई उठता है, जागता है, तो मोबाइल उसके हाथ में है। सोने से पहले भी मोबाइल ही सब, चाहे यहीं तक कि आज के ई जवान पीढ़ी जो इन बात कैसे हम नहीं सकब जा लोग के मतलब हकीकत बतावे।
0: हमें को दूसरा, हमें को दूसरा शिव देवा थे दोहरा बहन जी, एगो एगो एक कंपैरिजन के तौर से एक, हाँ, रिसर्च, अमेरिकन रिसर्च कह रहे हैं कि 16 से 24 साल तक ये जो लोग हैं दुनिया में, 6.5 घंटा मोबाइल फोन पर रहते हैं। 25 से 54 तक, 25 to 54, 4 से 5 घंटा, 54 से 64 तक 4 घंटा। और बच्चों को देखेंगे तो 8 से 10 साल लगभग 6 घंटा, 11 से 14 साल 9 घंटा, और 15 से 18 7.5 घंटा। तो इसका परिणाम जरूरी होगा। परिवार तो लगभग क्या कहते हैं, उसका इम्पोर्टेंस बहुत कम हो
1: रहा
0: है। अभी देखेंगे तो कहीं भी जाओ, मेथको में जाओ, सी साइड पर जाओ, पूजा में जाओ, सब लोग सेलफोन ही देख रहे हैं। वही आज का भगवान बन गया है। दर्शन करते हैं सुबह, जैसे आपने कहा पहरा, और सोते से, सोने से पहले उसी से जीते हैं। तो उसका परिणाम देखो, मैं अल्बर्ट आइंस्टाइन एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, वो बहुत साल पहले, उसके मृत्यु के लगभग 2-3 साल पहले उन्होंने लिख दिया था कि द डे टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू रिप्लेस ह्यूमन इंटरेक्शन, वी शैल हैव ए जनरेशन ऑफ इडियट्स। अभी मैं एक अनुभव, ये एक लिव्ड एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। जो छोटा बच्चे हैं 3 साल 4 साल, वो उनका भाषा का मास्टरी बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, क्योंकि कोई उनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, वही तो सेलफोन पर है, माता जी भी सेलफोन पर हैं, तो कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन के द्वारा ये जो लैंग्वेज स्किल्स है डेवलप होता है, और सिर्फ वही नहीं, सोचने का स्किल।
1: तो एक वक्त था जब हमारी दुनिया बहुत हद तक परिवार, नेबरहुड, कम्युनिटी और फेस टू फेस रिलेशनशिप के आसपास बनी हुई थी। फिर टेलीविजन आया, रेडियो और सिनेमा ने हमारी दुनिया को और बड़ा किया, और आज हम एक ऐसे दौर में हैं जहां मीडिया हमारी ज़िंदगी का सिर्फ एक हिस्सा नहीं, बल्कि हमारी सोशल रियलिटी को एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो हम अपने श्रोताओं और दर्शकों की मांग है, अगर इस विषय पर आप कोई मतलब कोई आइडिया देना चाहेंगे या फिर कोई सवाल करना चाहेंगे हमारे सोशियोलॉजिस्ट से, बेझिझक 4028085 पर आप फ़ोन कर सकते हैं, 4028085 पर फ़ोन कर सकते हैं। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, कार्डे से गुजारिश है।

0: आज की चर्चा।
1: इस प्रोग्राम में आप सबों का दोबारा स्वागत हम करते हैं और आज श्री हेमंत राम गोविंद जी हमारे साथ हैं जो एक समाज शास्त्री हैं, सोशियोलॉजिस्ट हैं। और अभी कुछ दिन पहले हमने बताई ली जा कैसे ई मॉडर्न दुनिया में मीडिया के कितना कंट्रीब्यूशन बा, इस पर काफ़ी चर्चा हो बा। तो हेमंत जी, एगो व्यक्ति के सोच बदले खातिर पहला चाहेला पूरा समाज ही के सोच बदले के, इस पर आप कौन सा बोले?
2: हाँ नहीं, वो उतना मतलब ऑटोमेटिक नहीं है।
1: नहीं,
2: अभी जैसे हम बात कर रहे हैं पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में, तो एक करैक्टरिस्टिक ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म, जैसे कि उन लोग को जो जब रिसर्च किए हैं कि अभी वो जो कम्युनिटी लाइफ है, इट इज़ प्रैक्टिकली इनएग्जिस्टेंट। लोग अपने कैसे बोलते हैं, वो फैमिली सेंटर्ड लाइफ जीते हैं, और बहुत से कैसे वो इंग्लैंड ये इंग्लिश में इंडिविजुअलिज्म बोलते हैं।
1: ये क्या है इस पर?
2: इंडिविजुअलिज्म मतलब खुद के जीवन पर निर्भर है, दूसरों पर निर्भर नहीं है। कैसे अब पहले एक्सटेंडेड फैमिली था, अभी न्यूक्लियर फैमिली है, तो अब वो न्यूक्लियर फैमिली भी वो पोता ये सेलफोन से बात करते हैं, जूम कॉल करते हैं या वीडियो कॉल करते हैं, ये सब सुविधा है, लेकिन आना जाना बहुत कम है क्योंकि किसी के पास समय नहीं है। यही सेलफोन पकड़ते हैं सुबह और यही सेलफोन वही दौड़ाता है, दौड़ाता है वो। तो मतलब ये सब जितना बदलाव है अभी शुरू हो गया, अभी हो रहा है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि हम इसका कैसे बोलते हैं स्लेव बने, इसको लेके चलते रहे। ये अपने पर निर्भर है, मेरा जीवन है, मैं इस पर, मुझ पर निर्भर है कि मैं इसका स्लेव बनूं या न बनूं। कैसे हम ये डिजिटल रेवोल्यूशन से,
1: ये अपने पर निर्भर है कि आप क्या करें क्या न करें।
2: एग्जैक्टली, कैसे बोलते हैं, फैमिली में एक परिवार में कोई अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस होना चाहिए। रूल्स एंड रेगुलेशंस मतलब कब सेलफोन यूज़ करते हैं, कब नहीं करते हैं, और वो जो बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। अभी मैंने एक पेपर पढ़ा था, वो कैसे वो चाइल्ड और मदर रिलेशनशिप के बीच में जब बच्चे छोटा है तो ये यूज़ ऑफ सेलफोन्स कैसे अफेक्ट करता है, क्योंकि माता जी भी हैं सेलफोन पर और एक दूसरा सेलफोन बच्चों को दे देती है, तो छोटे से वो उसका सोशलाइजेशन हो रहा है कि वो सेलफोन यूज़ करे, दैट इज़ समथिंग नॉर्मल, और फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं है। तो हम अभी के समय में वो समाज बदलने का काफ़ी कठिन है। मतलब खुद से देखो, पहले हम कितना पुस्तक पढ़ते थे, अभी सब पुस्तक बंद रखा है, किसी के यहाँ ये हैबिट नहीं है, और सोचते हैं कि क्या पुस्तक पढ़ते हो तुम, सेलफोन देखो, वो सेलफोन यू आर कनेक्टेड टू द वर्ल्ड।
1: लेकिन रिसर्च के माध्यम से देखा है कि अगर आप पुस्तक पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें, पहले की तरह ये ज़्यादा फायदेमंद है।
2: वो उसका असर जब नहीं पढ़ेंगे, बच्चे नहीं पढ़ेंगे, पुस्तक नहीं पढ़ेंगे, उनका पढ़ाई पर प्रभाव पड़ेगा। पहले लड़की लोग ज़्यादा पुस्तक पढ़ते थे, अभी लड़की लोग ज़्यादा सेलफोन पर है।
1: और ये भी देखा गया है कि ज़्यादा बहुत लिखना चाहिए, लिख कर के इसमें भी कुछ,
2: ये एक पहले बहुत एज ओल्ड सीक्रेट है, जब कुछ आपको मेमोराइज करना चाहिए पहले आपको अपना दिमाग में लिख देना चाहिए। जब कागज़ पर लिखते हैं तो दिमाग में भी लिखते हैं। तो अभी देखिए, रिसर्च के द्वारा जो हुआ है, अभी बहुत से यूरोपियन कंट्रीज़ उन्होंने डिसीजन लिया है कि थोड़ा सा हटें ये डिजिटल रेवोल्यूशन से, ये टैबलेट फैबलेट सेलफोन से, ये जूम कम्युनिकेशन से, और कैसे बोलते हैं वो जैसे पहले था, नोटबुक पुस्तक कॉपी बुक लिखने का, वो फिर से ला रहे सब वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में, नॉर्वे, फिनलैंड।

0: स्वीडन
1: ये तो यूरोपियन कंट्रीज, लेकिन हम लोगों की जो मॉरिशन मॉरिशस में कौन सी सब बोले सोल्यूशन कौन सी कौन समाधान सकेला करी हमने?
0: देखो हमारा हम भी वही वही
1: कंटिन्यू कर रही है उसमें,
0: हम भी वही जहाज में है, मतलब कैसे वो मिसयूज ऑफ
1: मोबाइल वगैरह
0: मोबाइल, और सोचते हैं कि देखो एक फेस टू फेस इंटरक्शन, फेस टू फेस टीचिंग और डिजिटल कैसे यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, मतलब जूम पर या इंटरनेट पर टीचिंग, वो बराबर नहीं हो सकता है। लेकिन देखिए हम पर निर्भर हैं, वो बहुत सुविधा है। एक सेलफोन पर देखेंगे तो लगभग 2-3 हज़ार एप्लीकेशंस हो सकता है, 2-3 हज़ार यूजर्स। ये तो टेक्नोलॉजी बनाया है, मनुष्य बनाया, लेकिन उसको उपयोग करना जानना चाहिए,
1: मतलब सही समय पर उपयोग करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए।
0: मैं आपको एक बात बताऊं, अभी थोड़े समय पहले हर एक इंडिविजुअल का एक हॉबी था, किसी का हॉबी गार्डनिंग था, किसी का हॉबी वो पढ़ाई था, किसी का हॉबी वो गेम खेलने का या वॉक करने जाने का। तो अभी ये जो ये टेक्नोलॉजी जो आया है, डिजिटल रेवोल्यूशन, सेलफोन, ये इतना पता नहीं कितना टीवी चैनल से टेलीविज़न कनेक्शन में, केबल कनेक्शन में, तो ये सब इफेक्ट हुआ है अपना जो खुद का जो ये जो
1: बर्ताव, हाँ
0: जो वो
1: जितना हम लोग
0: यस वो एग्जिस्टेंस ऑफ वेल बीइंग जैसे बोलते हैं, क्योंकि जब एक आपको एक अच्छा हॉबी होगा तो आपको उसमें एक सुकून मिलता है, एक शांति मिलता है, यू गेट ए सम सॉर्ट ऑफ ए पीस। तो ये डिजिटल ये डिवाइसेस में पीस नहीं मिलता है, उसमें स्ट्रेस मिलता है, उसमें थोड़े समय के लिए डोपामिन मिलता है। कैसे आप कहेंगे कि जो जिसको डायबिटीज़ है उसको लड्डू बहुत पसंद है, चीनी का लड्डू बहुत पसंद है, जब वो खा लेता है उसको इतना अच्छा लगता है, तो वैसे ही कभी भी वो सेलफोन यूज़ का बहुत अच्छा लगता है उसको, उसमें डोपामिन आता है। और एक भय होता है कि मैं मुझे देखना है सेलफोन ताकि मुझे आई डोंट मिस एनीथिंग, तो वो इम्पल्सिव हो जाता है, 2 बजे समय वो उसका वो नींद छूट गया तो वो सेलफोन पकड़ते हैं। तो ये वी हैव टू कैसे बोलते हैं अपने आप पर निर्भर है, उसके लिए सेंसिटाइजेशन कैंपेन्स करना चाहिए, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है ये, हमको पता है लेकिन करते हैं, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये। एक रूटीन जो एस्टैब्लिश होना चाहिए अपना अच्छा जीवन के लिए, उसमें ये डिजिटल एडिक्शन जैसे कहते हैं उसमें नहीं आना चाहिए, तब आपका ये मतलब यू आर यूजिंग द यू आर हैविंग द बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल कनेक्शन, यू आर हैविंग बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, एट द सेम टाइम यू आर लिविंग योर लाइफ प्रॉपरली, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अच्छा ठीक है, जब अडल्ट को कहते हैं कि ओके यू हैव टू यूज़ योर सेलफोन इन ए डिसिप्लिन वे, तो बच्चों को क्या करेंगे? बच्चों में 18 साल से पहले जब बच्चे होते हैं या 6 साल 9 साल एडोलेसेंस, उनके लिए तो कंट्रोल होना चाहिए, कंट्रोल माता पिता से, स्कूल में ये कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन क्योंकि उन पर बहुत से इफ़ेक्ट है, देखो डिजिटल वीडियो गेम्स एक्सेट्रा, ये सब उनका दिमाग पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है, नेगेटिव। और अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उनके लिस्ट में है कि एक बीमारी हो सकता है, मेंटल बीमारी हो सकता है वीडियो, ज़्यादा वीडियो गेम खेलने से, इट इज़ देयर। तो पहले ही सब नहीं था, तो कौन हानिकारक है? हमारे परिवार, हमारे बच्चे। अब देखें जब आप शादी में कभी जाएंगे, कभी मैंने ऑब्जर्वेशन किया है जवान लोग नहीं दिखते हैं सेरेमनी में, कहाँ है वो? एक कमरे में है, सभी अपना सेलफोन पे हैं कनेक्टेड। अगर आपको एक जवान को दुखी करना चाहते हो, उसका फ़ोन ले लो, वो बीमार पड़ जाएगा, या इंटरनेट काट दो, वो बीमार पड़ जाएगा। तो इतना डिपेंडेंसी बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। ये अपना आने वाली पीढ़ी से, आने वाली पीढ़ी को सोचना चाहिए, परिवार को सोचना चाहिए, कम्युनिकेशन शुड बी री एस्टैब्लिश्ड। बहुत अच्छा, आपको कैसा लगेगा कि आपके सामने आपके कोई परिवार मेंबर है बैठा है लेकिन वो बातचीत नहीं कर रहा है?
1: तो वो तो एजुकेशन के हिसाब से आप बता रहे हैं कि उसको मतलब जागरूक

0: खाना चाहिए, तो मेरे ख्याल से हो भी रहा है।
1: हाँ।
0: हो रहा है।
1: हाँ। हमको पता है ये सब, ये खराब है, इतना यूज करना खराब है। देखो मैंने देखा अभी आते समय एक मोटरसाइकिलिस्ट, एक हाथ से वो पकड़ा है उसका ये डायरेक्शन, एक हाथ में सेलफोन है मोटरसाइकिल पर। गाड़ी में तो ये लॉ है, रूल्स है, लेकिन अभी के समय में, पोस्ट मॉडर्निज्म के समय में, लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं मानते,
0: कर रही है
1: नहीं मानते हैं, as if it doesn't exist, वैल्यूज को नहीं मानते हैं कि ये मुझे करना, ये ऐसा करना चाहिए था, ये मैं नहीं करता, कौन दिखता है। तो वैल्यूज, फैमिली वैल्यूज, रूल्स एंड रेगुलेशंस एवरीवेयर, ऑन द रोड, इन द शॉप्स, एवरीवेयर, ऑन द बीच, रूल्स एंड रेगुलेशंस लोग मानते नहीं है, सभी लोग बहुत ये एवरीबॉडी इज इन हरी, और सोचने का समय नहीं है, जो करना है वो हाल ही जल्दी से करो।
0: अभी अभी के ई भागदौड़ जिंदगी में,
1: हाँ जी,
0: एक व्यक्ति के चाहे छोटा हो या बड़ा हो, ओके कैसे चाहेला अडाप्टे होगी,
1: ओके कैसे अडाप्टे होके चाहेला। देखो ये छोटा से शुरू होता है। देखिए आगे, पहले मुझे याद है जब बच्चे को खिलाते थे तो उसको चंदा मामा दिखाते थे, गाते थे, अभी सेलफोन दे देते हैं, और जैसे वो सेलफोन वापस लेंगे तो वो
0: रोने लगेगा।
1: तो ये हैबिट, मतलब ये इसको
0: कम करना चाहिए,
1: बहुत मतलब एक री एजुकेशन करना चाहिए अपना, जो वो सोशलाइजेशन है बच्चों के, अभी शायद हो रहा है क्योंकि रिसर्च बता रहा है कितना नेगेटिव इफेक्ट्स हो रहा है बच्चों पर। और
0: स्कूल्स में भी कुछ कहा गया कि मोबाइल को कम बच्चों को नहीं देना चाहिए क्लासेस में, ये सारा कुछ।
1: फ्रांस में देखो, फ्रांस में उन्होंने रिसर्च किया है, उनको ये यूरोप में पहले ये कंट्री जो है बहुत, मतलब द वेकअप कॉल किया कि देखो बच्चों पर बहुत असर हुआ है, क्योंकि बच्चे लोग सोच नहीं पा रहे हैं, कैसे बोलते हैं उसका कॉग्निटिव प्रोसेस में बहुत इफेक्ट है, क्योंकि उनको सब कुछ रेडी, स्क्रोलिंग से सब कुछ रेडी में मिल रहा है, ये देख रहा है, वो देख रहा है, ये देख, उनको कभी सोचने का, अब जब जाते हैं पढ़ने के लिए तो सोचना चाहिए, मेमोरी में आने के लिए सोचना चाहिए, रीडिंग के लिए रिपीटिटिव एक्शन सोचना चाहिए, तो बहुत इफेक्ट।
0: कभी कभी छोटे से इस कैलकुलेशन के लिए भी सब लेते हैं।
1: हाँ, वो तो एक बहुत बड़ा डिबेट है, अभी कोई कोई एग्जाम में कैलकुलेशन यूज़ करना चाहिए, लेकिन हमारा जो दिमाग है बहन जी, हमारा जो दिमाग है उसको फिट रखने के लिए उसको यूज़ करना चाहिए। बुजुर्ग लोगों कहना को उनको ये एडवाइस देते हैं कि देखो आपको आपका दिमाग जवान रखने के लिए आपको कुछ नई सीखना चाहिए, तो बच्चे ही नई सीख रहे हैं, जो कुछ रहा है उस पर वही देख रहे हैं, तो नहीं अच्छा है। मतलब कुछ आगे पहले बच्चों को ये म्यूज़िक सिखाया जाता था, बहुत कम जाते हैं अभी, बहुत कम म्यूज़िक या हॉबी या एग्जरसाइज, तो सब कैसे बोलते हैं, इट इज़ अ डिजिटल रेवोल्यूशन, स्लेवरी कैसे हैं, डिजिटल एडिक्शन। तो ये उसका संविधान क्या है, ये हम पर निर्भर है एज ए पेरेंट। मेरा भी बच्चे थे जब वो स्कूल जाते थे, मैं एक नोकिया 33 कैसे हैं 3310 सिर्फ 27 फोन नंबर्स, इंटरनेट कनेक्शन कुछ नहीं होगा, सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो उसका प्रभाव पड़ा, पॉजिटिव प्रभाव पड़ा उनके सक्सेस में, एग्जामिनेशन में। तो कितने अभी पेरेंट्स वो कर रहे हैं, अभी तो कई बच्चे जाते हैं स्कूल 50,000 60,000 का फ़ोन लेकर। अभी तो 4G बदलना चाहिए, अब 5G चाहिए, तो इज इट रियली नेसेसरी, ये क्वेश्चन है, लेकिन कोई पेरेंट्स देते हैं, वो इन पर निर्भर है। और नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मुझे मैं आई अंडरस्टैंड कि अगर सभी के यहाँ फ़ोन है, एक है, एक यहाँ फ़ोन नहीं है तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, और उसके सेलफोन बन रहा है उसका मार्केटिंग भी करना चाहिए, बेचना भी चलना चाहिए, तो उनका भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है कैसे
0: बच्चों से। निष्कर्ष निकालना है तो बस यही कहेंगे कि हम लोग मतलब अब ये सारा कुछ अपने ऊपर है,
1: हाँ,
0: हम लोग ही डिसाइड करना चाहिए।
1: सोशियोलॉजी

0: इस कहते हैं कि पीपल हैव ए चॉइस, ये सब कुछ है, ये इतना एप्लीकेशंस है, इतना गेम्स है, ये नेटफ्लिक्स है, ये वो है सब, मेरे पर निर्भर है कैसे मैं अपना जीवन को ले जाऊं, ये मेरे पर निर्भर है। कितनों भी आपको कैसे मैं कहा कि तभी कि इस एरा में लोग सुनते नहीं हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते, वैल्यूफुल लिविंग नहीं जीते हैं, वो खुद का सीख देते हैं।
1: बिल्कुल, हम न्यूज़ को मीडिया से जानते हैं, ट्रेंड्स मीडिया से सीखते हैं, दूसरों की ज़िंदगी को सोशल मीडिया पर देखते भी हैं, और अपनी पहचान भी कभी कभी लाइक्स, फॉलोअर्स, ऑनलाइन इमेज के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं।
0: हाँ, क्योंकि अपना डिजिटल आइडेंटिटी हो गया है। अभी आपसे पूछूंगा बहन जी, आपका कितना एड्रेस है, कितना एड्रेस है आपका? एक ही एड्रेस है? नहीं, ईमेल एड्रेस है, इंस्टाग्राम पर एड्रेस है, फेसबुक पर है कि नहीं, तो हम पता नहीं कहाँ रहते हम एक वर्चुअल वर्ल्ड में भी रहते हैं, वी लिव इन ए वर्चुअल वर्ल्ड, इतना एड्रेस है। और किसको इम्प्रेस करते हैं, दुनिया को इम्प्रेस करते हैं, अपना वे नेबर को नहीं, नेबर यहाँ पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे मैं क्या, 70% ऑफ द पॉपुलेशन इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट। जो इंटरनेट को का इन्वेंशन किया था उसको पता नहीं था कि एक दिन ऐसा हो जाएगा कि अभी अपना पूरा दुनिया, द होल वर्ल्ड इज लाइक ए विलेज, एक गांव। कैसे पहले एक गांव था मॉरिशस में, एक गांव का निवासी, उसको उनको सब पता है कि कौन कौन रहता है गांव में, क्या नाम है उसका, क्या करता है। अभी लगभग ऐसा हो गया है, वी आर कनेक्टेड टू द वर्ल्ड, लेकिन अंत में अपना जीवन बेहतर हो रहा है उससे?
1: नहीं।
0: कितना बेहतर हो रहा है, अपना परिवार का जीवन बेहतर हो रहा है?
1: बहुत से क्वेश्चन मार्क्स होता है, बहुत से क्वेश्चन आता है, हम सवाल होता है कि क्या कैसे हम लोग जी रहे हैं।
0: हाँ।
1: शायद सब भी जितने लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन लोगों के भी ये सोच रहे हैं कि कैसे हम लोग जी रहे हैं।
0: हाँ। लेकिन एक चीज मैं ऑब्जर्व करता हूँ, अभी जब गाड़ी चलाते हैं तो कितने लोग सेलफोन यूज करते हैं। अभी देखो पीछे से टकराव कितना हुआ है, पीछे से गाड़ी का पीछे से टकराव, इससे इट्स वेरी कॉमन। ओके, क्योंकि वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। अभी जब लाइट रेड होता है तो ठीक है, हमको ठहरना चाहिए, तो वो मैसेज भी डाक रहा है, वो पीछे वाला वो फोन बजाते हैं, तो दिस इज वेरी बैड।
1: मतलब जितना कुछ होता है हम लोग ही जिम्मेदार हैं।
0: देखो जान है तो जहान है, एक बहुत पुराना कहावत है, हमें थोड़ा सा अच्छा से सोचना चाहिए कि हम क्या करें। अगर एक इमरजेंसी फ़ोन चलाया आप गाड़ी में, अगर आप गाड़ी में हैं, ड्राइव कर रहे हैं, तो रुको, उसको रुको, प्रॉपर सिग्नल, प्रॉपर साइन दे दो कि देखो हम जाओ, मुझे एक इमरजेंसी है। आप अपना ये जो हज़ार लैंप लगा सकते हैं, लेकिन कहीं भी नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि दूसरों को वो उनका ये जो रिस्क हो वो बढ़ जाता है। लेकिन इसके बारे में हम बात करेंगे, क्या क्या इफेक्ट है ये डिजिटल रेवोल्यूशन इन दिस पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड, क्या इफेक्ट है परिवार पर, बच्चे पर, काम पर, रिलेशनशिप पर, डिवोर्स पर, सब कुछ पर। बहुत अभी बुज़ुर्ग लोग कम यूज़ करते हैं सेलफोन, लेकिन उनका उतना जिम्मेदारी नहीं होता है, दे आर रिलेटिवली फ्री, और वो जो करते आ रहे हैं छोटा से उनका जो हॉबी वो करेंगे, क्योंकि उनको इसमें सुकून नहीं मिला है, नहीं मिलता है, जो अपने जो खुशी खुशी कुछ करते हैं गार्डनिंग उसमें मिलता है। लेकिन बच्चों को छोटा ही से सोशलाइज हो जाता है ना सेलफोन। कोई कोई बच्चे हैं जो जिसको हम जेंजी बोलते हैं, जेंजी जो अभी बिटवीन 2013, वो सोचते हैं कि हमेशा सेलफोन था, हमेशा इंटरनेट था, हमेशा वीडियो
1: जनरेशन होता है ना।
0: हाँ, वो उनको पेशेंस नहीं है बिल्कुल, वो पकड़ते रहे थे, तो कैसा उनमें ह्यूमन वैल्यूज कैसे आएगा, नहीं आएगा, बहुत डिफिकल्ट है। तो वो उसको रिवर्स गियर में लाने का बहुत समय लगेगा, हो सकता है, लेकिन कैसे बोले, वो रिवर्स गियर आ रहा है यूरोप से, न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्योंकि बच्चों पर बहुत बहुत असर हो रहा है। ये

0: बहुत से प्रॉब्लम है, साइबर बुलिंग एक्सेट्रा, लेकिन प्राइवेसी है डे टू डे लाइफ में, वो कनेक्शन है, लेकिन इंटरनेट पर यस कनेक्शन, कितना लाइक्स है जैसे आपने बोला, वो पिक्चर लगाए का फेसबुक, मैं यहाँ हूँ, मैं क्या जरूर रही है इसकी, इज इट नेसेसरी?
1: तो सब सोचने वाली बात है, इस चर्चा से यही सीख मिली है कि सोचने वाली बात है, और हम
0: सोचते हैं कि दिस इज गोइंग टू ब्रिंग अस आवर हैप्पीनेस, दैट इज नॉट इन हैप्पीनेस, दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। मैं नहीं कह रहा हूँ कि, मुझे याद है जब दो एक रेडियो प्रोग्राम पर हम ये सेल फोन पर बात कर रहे, तब 4G 5G सब कुछ नहीं था, इंटरनेट था लेकिन उतना इफेक्ट नहीं था, उतना कनेक्टिविटी नहीं था। तो एक महाशय ने फ़ोन किया तो बोला, क्या आप इतना वो डायबोलाइज कर रहे हो जबरी से सेलफोन का, उसमें बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी का समय दूसरा है, उसमें बहुत से अच्छे कुछ है। देखिए ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लेकिन वो तो आर्टिफिशियल है, नेचुरल इंटेलिजेंस नहीं है, उसमें वैल्यूज नहीं है।
1: अच्छा,
0: वो झूठ बोलता है कभी।
1: अच्छा, अंत में हमारे श्रोता और दर्शक को आप क्या क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना
0: मैं
1: चाहेंगे?
0: संदेश दे रहा हूँ कि वी आर लिविंग इन ए डिजिटल एज,
1: ओके, तो है,
0: उसमें बहुत फायदा है लेकिन नुकसान भी हो रहा है, और अगर हम उसका नुकसान से बचना चाहते हैं तो वी हैव टू टर्न टू द ओरिजिनल फैमिली वैल्यूज, ओरिजिनल ह्यूमन वैल्यूज। तो ये कंबाइन करेंगे डिजिटल रेवोल्यूशन का बेनिफिट्स और अपना ट्रेडिशनल ह्यूमन वैल्यूज, ह्यूमन रिलेशनशिप्स, ट्रेडिशनल फैमिली लाइफ, तो अपना जीवन बहुत बेहतर हो जाएगा। आप कितने भी 5G 10G भी यूज़ करते हैं, लेकिन आपको एंकर्ड होना चाहिए अपना जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या आप चाहते हैं, कैसे बच्चा चाहते हैं, कैसे परिवार चाहते हैं, कैसा रिलेशनशिप चाहते हैं, कैसे अपना जीवन अच्छा से ले जाना चाहते हैं, कैसे दूसरों का जीवन उसमें रिस्क नहीं लाना चाहते हैं, टू एंडेंजर द लाइफ ऑफ अदर्स, कैसे बच्चे को वो उनका जीवन डिस्ट्रॉय नहीं होगा सेलफोन से। तो यही मेरा संदेश है।
1: हाँ, तो पोस्ट मॉडर्निज्म इस पर बहुत बहुत वास्त है, विशाल विषय है, तो उस पर बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि आज जैसे सब लोग जानते हैं डिजिटलाइजेशन मीडिया के जो दौर है, इसी में हम अपने परिवार अपना सारा कुछ इस पर बढ़ते जा रही है, फिर भी देखते हैं कि कुछ मतलब परिवार में खतरा कुछ हो रहा है, लेकिन क्या सही क्या गलत, ये जैसे श्री हेमंत राम गोविंद जी ने बताया, ये सब हम लोगों पर निर्भर है। तो याद रखिए, समाज को समझना असल में अपने आप को समझने की एक कोशिश भी है। तो आज के हमारे वैसे अतिथि श्री हेमंत राम गोविंद जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे इस मतलब इतनी इंसाइटफुल बातचीत के लिए, और हमारे साथ कादेर उरुसा और हमारे जो प्रोड्यूसर है जिनेश, उन लोग को धन्यवाद देते हैं, और जितने लोगों ने हमारा साथ दिया उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, नमस्कार, नमस्कार और आदाब।

0: श्री सुंदर संक्षिप्त समाचार आपसे करुणा जी नमस्कार।
1: नमस्कार नीलमणि, सभी को नमस्कार। मंगलवार 1 सितंबर से मेट्रो एक्सप्रेस लाइन 2 पर एक नई सीधी कनेक्टिविटी शुरू होगी जो क्योपिप को रेजवी से जोड़ेगी। इस तरह रोजहिल सेंट्रल पर ट्रेन बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बदलाव खासकर क्योपिप से रेजवी मोका जाने वाले छात्रों और कामकाजी लोगों के लिए बहुत सुविधाजनक होगा, समय भी बचेगा। मामी हवातुमांग की जमानत पर रिहाई की मांग को लेकर सुनवाई आज गुरुवार को बेल एंड रिमांड कोर्ट में जारी रखी जा रही है। 10 महीनों से सलाखों के पीछे स्थित इस मलागासी कारोबारी पर काला धन शोधन यानी कि मनी लॉन्डरिंग का आरोप है और FCC ने उनकी रिहाई पर आपत्ति जताई है। उत्तरी नेपाल में आई भयावह बाढ़ से तबाही मच गई है। 160 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। करीब 750 लोग लापता बताए जाते हैं जिनमें पर्यटक भी शामिल हैं। पहाड़ी गांवों में कीचड़ वाला तेज पानी का सैलाब आया और रास्ते में जो भी आया उसे बहा ले गया। बाढ़ ने कई मकानों को अपनी चपेट में ले लिए और नेपाल तिब्बत सीमा वाला क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। अधिकारियों के अनुसार लापता पर्यटकों में भारत के 100 से अधिक लोग हैं, अमेरिका के 54, ऑस्ट्रेलिया के 34, ब्रिटेन के 33 और नेपाल के 100 से अधिक लोग शामिल हैं। ये इलाका तीर्थयात्रियों और ट्रैकिंग करने वाले पर्यटकों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं। नेपाली पुलिस के अनुसार मृतकों की संख्या बढ़कर 162 हो गई है। पुलिस ने बताया कि इनमें से 64 लोगों के शव चितवन जिले के निचले इलाकों में मिले, जबकि 26 अन्य शव नवलपरासी ईस्ट में बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार अभी भी सैकड़ों लोग लापता हैं जिनमें 28 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। गौरतलब है कि चितवन जो जंगल सफारी के लिए प्रसिद्ध एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, उनके ये नगर पालिकाओं में से एक है जहां बाढ़ का पानी

0: बढ़ने के कारण हाई अलर्ट जारी किया गया है। और नेपाल में आई विनाशकारी फ्लैश फ्लड के बाद भारत ने राहत और बचाव अभियान में मदद के लिए बुधवार को 10 टन मानवीय सहायता एवं आपदा राहत सामग्री भेजी। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से फोन पर बात की और नेपाल में बाढ़ के कारण हुई जानमाल की हानि पर संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस कठिन समय में भारत के लोग नेपाल में अपने भाई बहनों के साथ एकजुटता से खड़े हैं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए, कुछ ही समय बाद शोक समाचार। कालीमाई गली नुवेल फ्रांस में 55 साल के 55-year-old श्री गणानंद सिंह उचित, जो स्वदेश से जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सुपहर 3 बजे इनके मकान कालीमाई गली नुवेल फ्रांस से उठाकर दाह संस्कार के लिए मागजानी की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। और पदार्थ लेन लाकावेन बाकुआ में 90 साल की 90-year-old श्री देहूती पदारथ, श्रीमती देहूती पदारथ जो बामा से जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 12 बजे इनके मकान पदारथ लेन लाकावेन बाकुआ से उठाकर दाह संस्कार के लिए सुल्फेगिनों की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट नून। शोकग्रस्त इन परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.
2: एट 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस।

0: भक्तिमय कार्यक्रम भक्ति धारा रेडियो मॉरिशस पर।
1: चलिए श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये रेडियो मॉरिशस है। 10:05 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में। कार्यक्रम है भक्ति धारा। इस समय से लेकर दिन के 11 बजे तक हम आपका साथ देने वाले हैं। आज के इस कार्यक्रम के अंतर्गत ज्ञान चक्र ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे श्रावण मास के शुभ अवसर पर। साथ ही साथ आपके श्रावण मास और रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम आप सुन पाएंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। कहते हैं ना, भक्ति मन को बदलती है, सोच को सकारात्मक बनाती है और जीवन में आशा का दीप भी जलाती है। तो चलिए इसी शुभ विचार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे।

0: चलिए श्रोताओं, भक्ति धारा 10:10 हुए हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। ज्ञान चक्र, ये कार्यक्रम आप श्रावण मास के शुभ अवसर पर सुन पाएंगे।
1: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।

नमस्कार। श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से इस ज्ञान चक्र कार्यक्रम में आचार्य सुरेश सुपाल मिश्र का अभिवादन। शिव और सती। शिव सम को रघुपति व्रत भारी, बिनु अधा तेजी सती असिनारी। श्री रामचरितमानस की इस चौपाई में ग्रंथकार श्री गोस्वामी जी ने महर्षि यज्ञवल्क्य के प्रवचन के द्वारा भगवान शिव और माता सती देवी की

0: असीम महिमा बड़े ही सुंदर ढंग से प्रतिपादित की है। प्रथम चरण में शिव सम को और द्वितीय चरण में सती असी नारी पद के द्वारा दाम्पत्य की महिमा की गंभीरता पराकाष्ठ को पहुंचा दी गई है। भगवान शिव के लिए रघुपति व्रतधारी विशेषण ही उनके व्रत की महंता का प्रकट कर रहा है, क्योंकि संसार में सब धर्मों का सार, सब तत्वों का निचोड़ भागवत प्रेम ही निश्चय किया गया है। भगवान परब्रह्म में दृढ़ निष्ठा का हो जाना ही परम वशिष्ठ धर्म है, और भगवान शिव ने तो अपने अनुभव से इसी को सार समझकर जगत की निसार निश्चित कर लिया है। जैसे उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सतहरि भजनु जगत सब सपना। इस प्रेम प्रभाव की महिमा से सती ऐसी नारी में भी उनकी आसक्ति न थी। जिस समय त्रेता युग में कुंभध्वज ऋषि के आश्रम में वह सती के साथ कैलाश को लौट रहे थे, उस समय दंडकारण्य में सीता हरण के कारण पति विनियोग में दुखित मानव लीला करते हुए रघुदास जी का उन्हें दर्शन हुआ, और उन्होंने जय सचिदानंद जग पावन और सचिदानंद परधामा कहकर उनको प्रणाम किया। इस पर सती को यह संदेह उत्पन्न हुआ कि नृपसुत को सचिदानंद परधामा कहकर सर्वज्ञ शिव को क्यों प्रणाम किया। भगवान शिव ने सती को भागवंत अवतार का बात कहने पर अनेक प्रकार से समझाई, परंतु उन्हें बोध नहीं हुआ। लगान उतर उपदेशो जगतपि कहे सहा पार बहु, बोले विसही महेशो हरिमाया बलु जानकी। शिव जी ने अपने हृदय में ध्यान धरकर देखा कि इसमें हरि माया की प्रेरणा हो रही है, क्योंकि जब मोरे हूँ कहाँ न संशय जाही, तब प्रभु की जो इच्छा है उसमें सती को प्रतीत कर देना हमारा ही धर्म है। इसीलिए उन्होंने कहा, जो तुम्हारे मन अति संदेह हूँ तो किन जाए परिछा ले हूँ, तब लीन बैठे आहूं बट छाई, तब लगी तुम्हें ऐसी मोह पाई। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुखवा भवेत्। ओम शांति शांति इति शुभम।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम।

0: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।
1: यम ब्रह्मा वरुरेन्द्र रुद्रमरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः संगपदक्रमो उपनिषदैः।

नमः। ओम नमः शिवाय। आदरणीय श्रोतागण, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। श्री सनातन धार्मीय ब्राह्मण महासभा की ओर से मैं आचार्य गोविंदत शर्मा जोखन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम एक बहुत ही पवित्र और प्रेरणादायक विषय पर बात करेंगे।

इन्हीं पवित्र महीनों में से एक है श्रावण मास। जब वर्षा होती है, धरती हरी भरी हो जाती है, पेड़ पौधे खिल उठते हैं, नदियां भर जाती है और चारों ओर नया जीवन दिखाई देता है, उसी तरह श्रावण मास हमें भी अपने मन और जीवन को नया बनाने की प्रेरणा देता है। परिवार में प्रेम बढ़ाने और भगवान की ओर निकट आने का अवसर है। As we begin this sacred journey, let us open our hearts with faith, hope and devotion. प्रिय श्रोताओं, हम सभी ने समुद्र मंथन की कथा सुनी है। अब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले भयंकर विष निकला। उस विष से पूरी सृष्टि संकट में पड़ गई। तब भगवान शिव ने वह विष अपने कंठ में धारण किया और सबकी रक्षा की। तभी से वे नीलकंठ कहलाए। यह कथा हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। हमारे जीवन में भी क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, तनाव और कटु वचन जैसे अनेक विष आते हैं। यदि हम इन्हें दूसरों पर नहीं फैलाएं और धैर्य, प्रेम तथा समझदारी से उनका सामना करें, तभी हम भगवान शिव के बताए मार्ग पर चल रहे होते हैं। रिमेंबर, स्टे काल्म, स्टे पॉजिटिव एंड कीप फेथ इन गॉड। अब आइए इसे ज्योतिष की दृष्टि से भी समझते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रह केवल आकाश में चमकने वाले पिंड नहीं है, वे हमारे जीवन की अलग अलग शक्तियों का प्रतीक है। सबसे पहले बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा हमारे मन का प्रतीक है। यदि मन शांत है तो कठिन परिस्थितियों में भी हम सही निर्णय ले सकते हैं। भगवान शिव अपने मस्तक पर चंद्रमा धारण करते हैं। इसका संदेश है कि हमें अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। इसी कारण श्रावण मास सोमवार का विशेष महत्व बताया गया है। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य हमें ऊर्जा, आत्मविश्वास और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। लेकिन भगवान शिव हमें यह भी सिखाते हैं कि बड़ा बनने के साथ साथ विनम्र बने रहना भी आवश्यक है। इसीलिए जीवन में सफलता मिले तो कभी घमंड नहीं करना चाहिए। ट्रू ग्रेटनेस कम्स विद ह्यूमिलिटी। अब बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति ज्ञान, अच्छे संस्कार और सही मार्ग दिखाने वाले गुरु का प्रतीक है। इसी कारण श्रावण मास हमें कथा सुनना, धर्म ग्रंथ पढ़ना, जप करना, दान देना और अच्छे लोगों की संगति करना बहुत शुभ माना गया है। जब ज्ञान और भक्ति साथ चलते हैं तब जीवन सही दिशा में आगे बढ़ता है। प्रिय श्रोताओं, अक्सर लोग पूछते हैं क्या केवल पूजा करने से भाग्य बदल जाता है? उत्तर है, केवल पूजा से नहीं। पूजा हमारे मन को बदलती है। जब मन बदलता है तो सोच बदलती है। सोच बदलती है तो हमारे काम बदलते हैं। और जब हमारे कर्म अच्छे होते हैं तो जीवन भी धीरे धीरे बदलने लगता है। यही वैदिक ज्योतिष का संदेश है। योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय योर एक्शंस, नॉट बाय योर फियर्स। श्रावण मास में उपवास रखने का परंपरा भी बहुत महत्वपूर्ण है। बरसात के मौसम में हल्का और सात्विक भोजन शरीर के लिए अच्छा माना गया है। उपवास का अर्थ केवल भूखा रहना नहीं है,
उपवास का अर्थ है कुछ समय भगवान के अधिक

निकट रहना, मन को शांत करना और अपनी बुरी आदतों पर नियंत्रण रखना। प्रिय श्रोताओं, यदि आप पूरे श्रावण मास में बड़े बड़े अनुष्ठान नहीं कर सकते तो केवल 5 छोटे काम भी आपके जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन ला सकते हैं। प्रतिदिन भगवान शिव का स्मरण करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें, अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करें, किसी ज़रूरतमंद की सहायता करें और एक पेड़ लगाकर या प्रकृति की रक्षा करके भगवान शिव की सच्ची पूजा करें। याद रखिए, भगवान शिव केवल मंदिर में ही नहीं बल्कि पूरी प्रकृति में बसते हैं। नेचर इज गॉड्स ग्रेटेस्ट टेम्पल प्रोटेक्टेड विद लव। आज मैं युवाओं से भी कुछ कहना चाहूँगा। आज जीवन बहुत तेज हो गया है, पढ़ाई, नौकरी और प्रतियोगिता के कारण तनाव भी बढ़ गया है। ऐसे समय में रोज कुछ निकट अपने लिए निकालिए, मोबाइल से थोड़ा दूर रहिए, अपने परिवार के साथ समय बिताइए, माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए। यही सच्ची खुशी का रास्ता है। मेंटल पीस इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ। प्रिय श्रोताओं, ज्योतिष हमें डराना नहीं सिखाता, ज्योतिष हमें सही रास्ता दिखाता है। ग्रह हमारे जीवन का संकेत देते हैं, लेकिन हमारा भविष्य हमारे कर्म बनाते हैं। इसीलिए अच्छे विचार, अच्छी वाणी और अच्छे कर्म अपनाइए। यही श्रावण मास का सबसे बड़ा संदेश है। लेट्स मेक दिस श्रावण ए जर्नी फ्रॉम स्ट्रेस टू पीस, फ्रॉम ईगो टू डिवोशन। अंत में आइए भगवान शिव से प्रार्थना करें। ओ

0: अमृतात्। हे भोलेनाथ, हम सबको स्वस्थ जीवन दें, हमारे मन में शांति दें, हमारे परिवार में प्रेम बनाए रखें, हमारे समाज में भाईचारा बनाए, हमारे राष्ट्र में शांति, समृद्धि और नैतिकता का प्रकाश फैलाए। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मे लॉर्ड शिवा ब्लेस यू ऑल विद पीस, गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस। मैं आचार्य गोविंद शर्मा जोखन, श्री सनातन धार्मिक ब्राह्मण महासभा की ओर से आप सभी को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम।
2: चलिए श्रोताओं, 10:26 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में। इस समय से लेकर दिन के 11 बजे तक चंद भक्ति गीत आपकी सेवा में।

0: भक्तिमय कार्यक्रम भक्ति धारा रेडियो मॉरिशस पर।
1: चलिए श्रोताओं, श्रावण मास का पावन महीना है और ऐसे में हम शिव की महिमा का गुणगान करते हैं। तो चलिए प्यारा सा गीत जो है, भक्ति गान जो है, आप सुन सकेंगे फिल्म बनारस से।

चलिए श्रोताओ, भक्तिधारा कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। बहुत ही प्यारा सा भक्ति गाना भी आपने सुना। जी हाँ, शिवमय वातावरण है और ऐसे में हम चारों तरफ भगवान शिव की महिमा का गुणगान हम कर रहे हैं, तो उनकी सेवा में जो है बहुत ही प्यारा सा भक्ति गाना सभी सुनने वालों के नाम। और कहते हैं ना, महादेव हमें सिखाते हैं कि समय चाहे जैसा भी हो, धैर्य हमें रखना है, सत्य के मार्ग पर चलना है और विश्वास जो है हमें बनाए रखना है। तो चलिए ओम नमः शिवाय का मंत्र जो है हम बहुत ही श्रद्धापूर्वक मन को भीतर की शांति से जोड़ देते हैं। तो अगला भक्तिगान जो है आप ज़रूर पसंद करने वाले हैं।

श्रोताओं कहते हैं जहाँ शिव का नाम होता है वहाँ मन को शांति और जीवन को नई शक्ति प्राप्त होती है। तो महादेव पर विश्वास रखिए, हर कठिन राह में कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलता है। चलिए, गुरुवार का दिन है आज, और आज का दिन जो है हम माँ भगवान विष्णु को पूजते हैं, साथ में माँ लक्ष्मी को भी हम पूजते हैं। तो चलिए, बहुत ही प्यारा सा भक्तिगान जो है आपके नाम हम कर रहे हैं, और स्टूडियो की घड़ी में 10:45 हो चुके हैं, और ये कार्यक्रम जो है दिन के 11 बजे तक चलने वाला है।

चलिए श्रोताओं, 10:55 हुए हैं स्टूडियो की घड़ी में। आइए सेंट्रल एक्सेस बोर्ड की तरफ से ये विज्ञप्ति सुनिए। बनान और क्लूनी के रहने वाले निवासियों को, जिनमें है ओब्लू ओब्लू पुल्ट्री से डब्ल्यू आर ओब्लू टोस्टे, एम टी एस बनान से डब्ल्यू आर पंपिंग क्लूनी, डोमेन लाग्राव हाइड्रोपोनिक बीमानिक और रॉयल क्लूनी के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि शुक्रवार 28 अगस्त 2026 को सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल एक्सेस बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई सामान्य पर लाई जाएगी। तो श्रोताओं, अभी आप सेंट्रल एक्सेस बोर्ड की तरफ से एक विज्ञप्ति सुन रहे थे, ये रेडियो मॉरिशस है। आइए भक्ति धारा कार्यक्रम का समापन जो है हम कार्तिक के साथ करेंगे। आप लोगों का साथ बहुत धन्यवाद। एक और मुलाकात तक आप हमें आज्ञा दीजिए। 11 बजने वाले हैं और आप समाचार सुनेंगे। समाचारों के बाद उर्दू कार्यक्रम सायदा के साथ। तो आप सभी को हम कहेंगे शुभ दिन।

0: चिर सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। एक बार फिर आपसे करुणा जी नमस्कार।
1: नमस्कार नीलमणि, सभी को नमस्कार। ऋतु विज्ञान केंद्र के अनुसार ठंडी हवा की लहर और उसके बाद एक जोरदार एंटी साइक्लोन दक्षिण पश्चिम दिशा से मस्करिंस टापुओं की ओर बढ़ रहा है। इसका स्थानीय मौसम पर प्रभाव शुक्रवार 28 अगस्त से पड़ना शुरू होगा। शुक्रवार को ठंडी हवा से जुड़े बादलों के कारण मौसम बरसाती होने की संभावना है। इसके बाद एंटी साइक्लोन के प्रभाव से तेज हवाएं और ठंडा मौसम रहेगा। खुले और अधिक प्रभावित क्षेत्रों में हवा के झोंके लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती हैं। दिन में तापमान में सामान्य की तुलना में लगभग 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। इसके अलावा मस्करिंस द्वीपों से बहुत दूर दक्षिण पश्चिम में उत्पन्न हुई ऊंची ऊर्जा वाली समुद्री लहरें धीरे धीरे क्षेत्र की ओर बढ़ रही हैं। ये लहरें शुक्रवार सुबह से बहुत उग्र समुद्री स्थिति पैदा करेंगी और ऊंची समुद्री लहरें रहेंगी। इन लहरों के कारण विशेषकर ज्वार के समय समुद्री पानी का उफान बढ़ सकता है। इससे पश्चिमी और दक्षिणी तट के लिए निचले इलाकों में समुद्री जल भरने का खतरा हो सकता है। ऐसे में लोगों से सावधान रहने की मांग की जाती है। प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिए सरकार फॉरेस्ट एंड रिजर्व्स बिल लाने की तैयारी में है। देश में अब केवल 2% मूल वन बचे हैं। प्रस्तावित कानून के तहत जंगलों, नदियों और पहाड़ी क्षेत्रों समेत रिजर्व की सुरक्षा मजबूत की जाएगी। साथ ही कृषि वनीकरण को बढ़ावा देने और वनों से बायोमास का अधिक प्रभावी व टिकाऊ उपयोग करने पर जोर दिया जाएगा। मामी हवातुमांग की जमानत पर रिहाई की मांग को लेकर आज सुनवाई बेल एंड रिमांड कोर्ट में जारी है। 10 महीनों से सलाखों के पीछे स्थित इस मलागासी कारोबारी पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। विदेश में नेपाल में आई भयावह बाढ़ के बाद तबाही मच गई। वहां के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी के अनुसार बाढ़ प्रभावित इलाकों से अब तक 165 शव बरामद किए गए हैं। पहचान की प्रक्रिया अभी भी जारी है। एजेंसी के अनुसार पर्यटकों समेत 800 से ज़्यादा लोग लापता हैं, जिनकी खोज की जा रही है। लापता बताए गए लोगों में कम से कम 133 भारतीय नागरिक शामिल हैं। इनमें से कई लोग कैलाश पर्वत की यात्रा कर रहे

0: थे। ये हिमालय में नेपाल और तिब्बत की सीमा के पास स्थित हैं। पहाड़ी गांवों में कीचड़ वाला तेज पानी का सैलाब आया और रास्ते में जो भी आया उसे बहा ले गया। बाढ़ ने कई मकानों को अपनी चपेट में ले लिया और नेपाल तिब्बत सीमा वाला क्षेत्र सबसे प्रभावित रहा है। कई पर्यटकों में अमेरिका के 54, ऑस्ट्रेलिया के 34, ब्रिटेन के 33 और नेपाल के 100 से अधिक लोग लापता हैं। ये इलाका तीर्थयात्रियों और ट्रैकिंग करने वाले पर्यटकों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय बाद शोक समाचार। कालीमाई गली नुवेल फ्रांस में 55 साल के 55 ईयर ओल्ड श्री गणानंद सिंह उचित जो स्वदेश से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सुपहर 3 बजे इनके मकान कालीमाई रोड नुवेल फ्रांस से उठाकर दाह संस्कार के लिए मारिजानी की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रमिशन टुडे एट 3 PM। काली रोड फोजुसाक में 50 साल की 50 ईयर ओल्ड श्रीमती सुमेदा शिवराक पैदाइश नाम जवाहिर जो कविता से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी जो है कल दिन के 10 बजे इनके पति विनोद शिवराक के मकान काली रोड फोजुसाक से उठाकर दाह संस्कार के लिए थ्रियोले की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रमिशन टुमोरो 10 AM। शोकग्रस्त इन परिवारों के प्रति हमारी दिली हमदर्दी है।
1: 819 किलोहर्ट्ज ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: शम्मे फरोजा।

आऊज़ु बिल्लाही मिन शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान और बड़ा रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। लिखते लिखते कलम ही थक गया, मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ों का जवाब नहीं। एक तेरा नाम वसीला है मेरा, रंजोगम में भी इसी नाम से राहत होगी। मौज़े सामीन, उम्मीद है आप फ़ज़ल खुदा खैर आफियत से होंगे। इस वक्त आप समात फरमा रहे हैं हमारी उर्दू नशरियात शम फरोज़ा रेडियो मॉरिशस के ज़रिए सैयदा सुबाई के साथ। आज की इस उर्दू मजलिस में आप समात फरमाएंगे तिलावत कुरान पाक, हम्द, नातो सलाम और आपके पैगामात। ताखीर न करते हुए आइए आगाज़ करते हैं सिलसिलेवार तिलावत से। जी हाँ, आज आप समात फरमाएंगे सूरह अल अनआम का दूसरा हिस्सा बमय उर्दू तर्जुमा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।

हाँ, ये जो कुछ पहले छुपाया करते थे आज इन पर जाहिर हो गया है, और अगर ये दुनिया में लौटाए भी जाएं तो जिन कामों से इनको मना किया गया था वही फिर करने लगे। कुछ शक नहीं कि ये झूठे हैं और कहते हैं कि हमारी जो दुनिया की जिंदगी है बस यही जिंदगी है और हम मरने के बाद फिर जिंदा नहीं किए जाएंगे। और काश तुम इनको उस वक्त देखो जब ये अपने परवरदिगार के सामने खड़े किए जाएंगे, वो फरमाएगा क्या ये दोबारा जिंदा होना बरहक नहीं, तो कहेंगे क्यों नहीं, हमारे परवरदिगार की कसम बिल्कुल बरहक है। अल्लाह फरमाएगा अब कुफ्र के बदले जो दुनिया में करते थे अजाब के मजे चखो।

जिन लोगों ने अल्लाह के रूबरू हाजिर होने को झूठ समझा वो घाटे में आ गए, यहां तक कि जब उन पर कयामत नागहां आ मौजूद होगी तो बोल उठेंगे कि हाय उस कोताही पर अफसोस है जो हमने कयामत के बारे में की। और वो अपने अमाल के बोझ अपनी पीठों पर उठाए हुए होंगे, देखो जो बोझ ये उठा रहे हैं बहुत बुरा है। और दुनिया की जिंदगी तो एक खेल और मशगला है, और बहुत अच्छा घर तो आखिरत का घर है, यानी उनके लिए जो अल्लाह से डरते हैं। क्या तुम समझते नहीं।

हमको मालूम है ऐ नबी कि इन काफिरों की बातें तुम्हें रंज पहुंचाती हैं, मगर ये तुम्हारी तकजीब नहीं करते बल्कि जालिम अल्लाह की आयतों से इनकार करते हैं। और तुमसे पहले भी पैगंबर झुटलाए जाते रहे तो वो तकजीब और ईजा पर सब्र करते रहे, यहां तक कि उनके पास हमारी मदद पहुंचती रही, और अल्लाह की बातों को कोई भी बदलने वाला नहीं। और तुमको पैगंबरों के अहवाल की खबरें पहुंच चुकी हैं तो तुम भी सब्र से काम लो। और अगर इनकी रूगर्दानी तुम पर शाक गुजरती है तो अगर ताकत हो तो जमीन में कोई सुरंग ढूंढ निकालो या आसमान में सीढ़ी तलाश कर लो, फिर इनके पास कोई मौजजा लाओ, और अगर अल्लाह चाहता तो सबको हिदायत पर जमा कर देता, बस तुम हरगिज नादानों में ना होना। बात यह है कि हक को कबूल वही करते हैं जो सुनते भी हैं, और मुर्दों को तो अल्लाह कयामत ही को उठाएगा, फिर उसी की तरफ लौट कर जाएंगे।

कहो काफिरो भला देखो तो अगर तुम पर अल्लाह का अजाब आ जाए या कयामत आ मौजूद हो तो क्या तुम ऐसी हालत में अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारोगे? अगर सच्चे हो तो बताओ। नहीं बल्कि मुसीबत के वक्त तुम उसी को पुकारते हो तो जिस दुख के लिए उसे पुकारते हो वो अगर चाहता है तो उसको दूर कर देता है और जिनको तुम शरीक बनाते हो उस वक्त उन्हें भूल जाते हो।

और हमने तुमसे पहले बहुत सी उम्मतों की तरफ पैगंबर भेजे, फिर उनकी नाफरमानियों के सबब हम उन्हें सख्ती और तकलीफों में पकड़ते रहे ताकि आजिजी करें। तो जब उन पर हमारा अजाब आता रहा वो क्यों नहीं आजिजी करते रहे, मगर उनके तो दिल ही सख्त हो गए थे और जो काम वो करते थे शैतान उनको उनकी नजरों में आरास्ता कर दिखाता था।

फिर जब उन्होंने उस नसीहत को जो उनको की गई थी फरामोश कर दिया तो हमने उन पर हर चीज के दरवाजे खोल दिए, यहां तक कि जब उन चीजों से जो उनको दी गई थी खूब खुश हो गए तो हमने उनको नागहां पकड़ लिया और वो उस वक्त मायूस होकर रह गए।

0: गरज जालिम लोगों की जड़ काट दी गई और सब तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए है।
1: قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ

और हम जो पैगंबरों को भेजते रहे हैं तो खुशखबरी सुनाने और डराने को, फिर जो शख्स ईमान लाए और नेकुकार हो जाए तो ऐसे लोगों को न कुछ खौफ होगा और न वो गमगीन होंगे। और जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया उनकी नाफरमानियों के सबब उन्हें अजाब पहुंचेगा।

कह दो कि मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह ताला के खजाने हैं, और न ये कि मैं गैब जानता हूं, और न तुमसे ये कहता हूं कि मैं फरिश्ता हूं। मैं तो सिर्फ उस हुक्म पर चलता हूं जो मुझे अल्लाह की तरफ से आता है। कह दो कि भला अंधा और आंख वाला बराबर होते हैं, तो फिर तुम गौर क्यों नहीं करते।

और जो लोग खौफ रखते हैं कि अपने परवरदिगार के रूबरू हाजिर किए जाएंगे और जानते हैं कि उसके सिवा न तो उनका कोई दोस्त होगा और न सिफारिश करने वाला, उनको इस कुरान के जरिए से नसीहत करो ताकि परहेजगार बनें।

0: और जो लोग सुबह शाम अपने परवरदिगार से दुआ करती हैं और उसकी तवज्जो के तालिब हैं, उनको अपने पास से मत निकालो। उनके हिसाब आमाल की जवाबदेही तुम पर कुछ नहीं और तुम्हारे हिसाब की जवाबदेही उन पर कुछ नहीं। बस ऐसा ना करना, अगर उनको निकालोगे तो जालिमों में हो जाओगे। और इसी तरह हमने बाज लोगों की बाज से आजमाइश की है कि जो दौलतमंद हैं वो गरीबों की निस्बत कहते हैं, क्या यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ने हम में से फजल किया है? क्या अल्लाह शुक्र करने वालों से वाकिफ नहीं?
1: सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अभी आप समाअत फरमा रहे थे सूरह अल अनाम की खूबसूरत तिलावत। कुरान पाक की तिलावत सिर्फ़ हमारे कानों को सुकून नहीं देती बल्कि हमारे दिलों को अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे करती है। सूरह अल अनाम में हमें अल्लाह ताला की

वहदानियत, कुदरत और अज़मत की याद आती है और ये सबक देती है कि हमारा भरोसा, हमारी उम्मीद और हमारी इबादत सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए होनी चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाज़ा है, ज़िंदगी, सेहत, रिस्क, ख़ानदान और सबसे बढ़कर ईमान की नेमत। हमें चाहिए कि हम अपने रब की नेमतों को पहचानें, उसका शुक्र अदा करें और अपनी ज़िंदगी को उसके अहकामात के मुताबिक गुजारने की कोशिश करें।

तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगार आलम के लिए जिसने हमें पैदा फरमाया, हमें अशरफुल मखलूक़ात का अशरफ अता किया, अक्ल व शऊर से नवाज़ा और अपने महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। वो रब कितना मेहरबान है जो हमारी खामोश दुआओं को भी सुनता है, हमारे दिलों के हाल से वाकिफ़ है, हमारी ख़ताओं के बावजूद हमें अपनी नेमतों से महरूम नहीं करता और हर सुबह हमें ज़िंदगी का एक नया मौका अता फरमाता है। ऐ पाक परवरदिगार, तेरी नेमतों का शुक्र करना हमारे बस में नहीं है। तूने हमें आँखें दी कि तेरी कुदरत के नज़ारे देखें, ज़ुबान दी कि तेरा ज़िक्र करें, दिल दिया कि तेरी मोहब्बत महसूस करें और कुरान पाक अता फरमाया ताकि हम ज़िंदगी का सीधा रास्ता पहचान सकें। मौज़े सामेईन, इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में 11:31 होने को हैं, जो रात का दिन है, अगस्त की 27 तारीख है और माह नूर माह रबीउल अव्वल की आज 14 तारीख है। आप अपने पैगामात हमें इस नंबर पर भेज सकते हैं, 5251-7005। जी हाँ, 5251-7005 के ज़रिए आप अपने पैगामात हमें भेज सकते हैं।

मौजे सामीन, 11 बजकर 38 मिनट हो चुके हैं। आइए समाप्त फरमाइए चंद ऐलान। 29 अगस्त, जी हाँ 29 अगस्त, सुबह 10 बजे शाने रसूल मस्जिद लागी लॉज पोर्ट लुइस में आलिमा सैयदा उनाजा फ़ातिमा की सरपरस्ती में मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहतमाम किया जा रहा है। तमाम ख़वातीन को शिरकत की दावत है। और सनीचर 29 अगस्त दिन के 1:30 बजे यानी बाद नमाज़े ज़ुहर बैतुन्नूर मल्टी सोशल कॉम्प्लेक्स सिटी मार्शल पोर्ट लुइस में आलिमा शमीमा सुब्राची की सरपरस्ती में ईद मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का

इनेकाद किया जा रहा है। तमाम खवातीन को शिरकत की दावत है। इसके अलावा जुम्मा 28 अगस्त सुबह 10 बजे जामिया अयूबिया रिजविया पोर्ट लुइस निकोले रोड में, जी हाँ, महफिल ईद मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया जा रहा है। शैला आपा की सरपरस्ती में लंगर भी तकसीम किया जाएगा। इसके अलावा एक और ऐलान समाअत फरमाइए, जी हाँ, शनिचर 29 अगस्त मुस्लिम लेडीज़ काउंसिल की जानिब से इस्लामिक कल्चरल सेंटर लापे स्ट्रीट पोर्ट लुइस में दिन के 1:15 बजे यानी बाद नमाज ज़ोहर ईद मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया जा रहा है। तमाम ख़वातीन को शिरकत की दावत है। इसके अलावा इतवार 30 अगस्त सुबह के 9:30 बजे दारुल उलूम लेन शुमैगनिया में जामिया हनफिया एसोसिएशन की जानिब से मौलाना हारून असैन की सरपरस्ती में ईद मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया जा रहा है।

0: जी हाँ मौज़ सामईन, मौत हमारे दरवाज़े पे खड़ी है और हम हैं कि गफलत में भूले बैठे हैं। हम दुनिया की फ़िक्रों में इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि ये भूल जाते हैं कि एक दिन सब कुछ यहीं रह जाएगा। ये माल, ये घर, ये ख्वाहिशात, मसरूफियात, कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा। साथ जाएंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे आमाल। ना जाने ज़िंदगी की कौन सी सुबह हमारी आखिरी सुबह हो, कौन सी शाम हमारी आखिरी शाम, और कौन सी नमाज हमारी आखिरी नमाज। इसीलिए किसी से माफ़ी मांगनी है तो आज मांगिए, किसी को माफ़ करना है तो आज करिए, अपने रब के सामने झुकना है तो आज झुकिए। हम दूसरों के जनाजों में शरीक होते हैं, कब्रों पर मिट्टी डालते हैं और वापस अपनी ज़िंदगी में यूं मसरूफ़ हो जाते हैं जैसे हमारी बारी कभी नहीं आएगी। मौत ज़िंदगी का इख्तिताम नहीं बल्कि आखिरत के सफ़र का आगाज़ है। अल्लाह हमें गफलत की ज़िंदगी से बचा, हमारे दिलों को अपनी याद से ज़िंदा फरमा, हमें सोच सच्ची तौबा की तौफीक दे, और जब हमारा आखिरी वक्त आए तो हमारी ज़ुबान पर कलमाए तैयबा और हमारे दिल में तेरा ईमान हो।
1: दोस्तों, ये कलाम मैं अपनी वालदा की नज़र कर रहा हूँ।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: मौजिला गुजरात नो रंग रंगारंग एमबीसी रेडियो पर गुजराती गीतों नो प्रोग्राम रंगारंग रंगारंग।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: आपकी पसंद। गुरुवार 27 अगस्त रेडियो मॉरिशस पर आप सभी सुनने वालों का स्वागत हम करते हैं सुमिता की ओर से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। आप सबका पसंदीदा प्रोग्राम आपकी पसंद लेकर हम आ गए हैं आपका साथ देने के लिए। कैसे हैं आप सभी, ठीक है? तो चलिए अभी से लेकर शाम के 6 बजे तक हम आपके साथ साथ रहेंगे। आपकी पसंद ये जो प्रोग्राम है फरमाइशी गीतों का प्रोग्राम है 4028085 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं या तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं 5251700005 पर। आपके मैसेजेस तो ऐसे ही काफ़ी समय से मिल ही रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर फरमाइशी गीतों का ये जो सिलसिला है इसे शुरू करते हैं इस खूबसूरत गाने के साथ। और यहाँ पर आपका प्यार भरा साथ हमें मिलता रहे 4 बजे तक आपकी पसंद इस प्रोग्राम में। फिर 4 से 5 बजे के बीच आप सुन पाएंगे भक्ति सागर इस कार्यक्रम को और 5 से 6 के बीच आप सुन पाएंगे सदाबहार गीतों के प्रोग्राम को। तो चलिए किशोरदा की आवाज़ में इस खूबसूरत गाने के साथ आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं।

चाहे फासले कितने भी बढ़ जाएं, भाई बहन के दिलों की दूरी कभी नहीं बढ़ती। रक्षाबंधन का ये पवित्र त्योहार आपके रिश्ते में और प्यार, सम्मान और खुशियाँ लाए। MBC रेडियो की ओर से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन।

0: इन कोलैबोरेशन विद जेठा तुलसीदास। दो घंटों का सुरीला सफर पुएर्टो पिमो के लेडी सुशील राम गुलाम रिक्रिएशनल सेंटर में, जहां तेरासिन सीनियर सिटीजन एसोसिएशन के साथ इस म्यूजिकल सफर को मजेदार और यादगार बनाएंगे ऑन दिस फ्राइडे 28 अगस्त दिन के 12 बजे से लेकर 2 बजे तक लाइव ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन। साथ ही टिकटॉक पर भी फॉलो कर पाएंगे। सो भूलिएगा मत इस शुक्रवार 28 अगस्त को फ्रॉम नून टू 2 PM पुएर्टो पिमो के लेडी सुशील राम गुलाम रिक्रिएशनल सेंटर में सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ इन कोलैबोरेशन विद जेठा तुलसीदास। जेठा तुलसीदास।
1: महफिल ऐ शमा फिरती हो कहां।
2: आपकी पसंद चले पसंदीदा गीतों का यह प्रोग्राम है, और जितने भी सुनने वाले आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं, आप सभी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं MBC रेडियो की पूरी टीम की ओर से। और चलिए, यहाँ पर राफिक दौलत जी आज अपना बर्थडे मना रहे हैं। राफिक जी, आपको जन्मदिन की हार्दिक बधाई आपकी बेगम नूरजहाँ की ओर से, आपकी वाइफ नूरजहाँ की ओर से, साथ में सभी दौलत परिवारों की ओर से। राफिक जी, आपको हैप्पी बर्थडे। और यहाँ पर अगला जो जन्मदिन की जो रिक्वेस्ट है वो आई है वाकवा से, उषा जी की ओर से। वो अपने बेटे निशाल को जन्मदिन की हार्दिक बधाइयाँ दे रही हैं। ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद निशाल, आपके नाम आपके मामा उषा की ओर से, सभी शिवधारी परिवार की ओर से, सभी नागावा परिवार की ओर से। यहाँ पर जो है निशाल, आपको जन्मदिन की बधाइयाँ। और जितने भी सुनने वाले या आपके परिवार के सदस्य आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं, रेडियो मॉरिशस की पूरी टीम की ओर से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। जन्मदिन का ये मौका बहुत ही खास होता है। ये जो जन्मदिन है आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लाए, आप सभी दुखों सभी परेशानियों से दूर रहे, हमेशा स्वस्थ रहे, जीवन में तरक्की करे, प्रगति करे। इन्हीं कामनाओं के साथ ये खूबसूरत सा गीत उन सभी के नाम जो सेलिब्रेट कर रहे हैं आज अपना बर्थडे।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: तो श्रोताओ, इसी के साथ हम बढ़ने वाले हैं 3 बजे के समाचार की ओर, और समाचारों के उस पार आपकी पसंदीदा प्रोग्राम जारी रहेगा। आप हमारा साथ यूं ही देते रहे रेडियो मॉरिशस पर।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घड़ी मिला लीजिए, सपेर के 3 बज रहे हैं, समय हुआ है समाचार का।
2: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है आस्था, आपको नमस्कार।
3: नमस्कार, 3 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब तक 165 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 826 लोग अब भी लापता हैं। पड़ोसी तिब्बत को मिलाकर करीब 1500 लोगों की तलाश जारी है। अधिकारियों के अनुसार हिमालय में ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटने के बाद बर्फ, चट्टान और कीचड़ का भारी मलबा नदी में जा गिरा, इससे

0: पानी का बहाव कुछ समय के लिए रुक गया। मेट्रो एक्सप्रेस के यात्रियों के लिए 1 सितंबर से क्यूपिप और गेजवी के बीच सफर आसान होने जा रहा है। लाइन ट्यूब पर नई सीधी सेवा शुरू की जाएगी, यानी यात्रियों को रोज हिल सेंट्रल में मेट्रो बदलने की जरूरत नहीं होगी। ये सेवा रास्ते की सभी स्टेशनों पर रुकेगी। यात्रियों की संख्या बढ़ने पर इस सीधी सेवा को आगे भी जारी रखने का विचार किया जा रहा है। पॉपुलर म्यूजिक का नया बाजार अब लोगों के लिए खुल गया है। करीब 138 मिलियन रुपए की लागत से बने इस बाजार में 400 से अधिक दुकानें हैं, जिनमें अधिकतर कृषि उत्पादों के लिए हैं। लेकिन कपड़े बेचने वाले दुकानदार फिलहाल पहली मंजिल पर जाने को तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए वहां लिफ्ट होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अब इन दुकानदारों के लिए दूसरी जगह देने पर विचार कर रही है। सरकारी कर्मचारियों की ट्रेनिंग को अब और उपयोगी बनाने की तैयारी। कर्मचारियों को केवल भागीदारी का प्रमाण पत्र ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त योग्यता हासिल करने का भी अवसर मिलेगा। मानव संसाधन, प्रशासन, वित्त और सरकारी खरीद जैसे सेक्टरों में सर्टिफिकेट से लेकर डिप्लोमा के उच्च स्तर की क्वालिफिकेशन तक ट्रेनिंग दी जा सकेगी। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। मिडल रोड प्लंदी पपाई में 73 साल के 73 के श्री रामेश सानुत की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल सुबह के 10 बजे उन्हीं के मकान प्लंदी पपाई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पीएफओ प्लंदी पपाई की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 10 AM। गांधी रोड एन एस फ्लोरों में 53 साल के 53 के विजय बाबू राम बंधु की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें मंगोल के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी कल सपहर के 3 बजे उनकी पत्नी मिसिज मालिनी बंधु के मकान गांधी रोड एनएस फ्लोरों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बूशों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 3 PM। शोक में डूबे इन दोनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस।
2: 3:03 हो रहे हैं। समाचारों के बाद आप सभी का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं रेडियो मॉरिशस पर। आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से एक विज्ञप्ति सुन लीजिए। मौसल मौसें तौंद्रे यहाँ पर रहने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाता है। यहाँ पर खासकर इन गलियों में और इलाकों में रहने वाले ग्राहक हैमलेट, DAV कॉलेज, लोलो हाइपर मार्केट, यहाँ पर और आसपास रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है कि यहाँ पर शनिवार 29 अगस्त को सुबह के 8:30 बजे से दोपहर के 3 बजे के बीच यहाँ पर ज़रूरी मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और कार्य संपन्न होते ही बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई फिर से शुरू कर दी जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। ये थी एक विज्ञप्ति CEB की ओर से।
3: सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, एन एवरग्रीन आफ्टरनून। सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, इन कोलैबोरेशन विद जेठा तुलसीदास। 2 घंटों का सुरीला सफर पुएर्टो पिमो के लेडी सुशील राम गुलाम रिक्रिएशनल सेंटर में, जहां 83 सीनियर सिटीजन एसोसिएशन के साथ इस म्यूजिकल सफर को मजेदार और यादगार बनाएंगे। ऑन दिस फ्राइडे 28 अगस्त दिन के 12 बजे से लेकर 2 बजे तक लाइव ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन, साथ ही टिकटॉक पर भी फॉलो कर पाएंगे। सो भूलिएगा मत, इस शुक्रवार 28 अगस्त को फ्रॉम नून टू 2 PM पुएर्टो पिमो के लेडी सुशील राम गुलाम रिक्रिएशनल सेंटर में सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, इन कोलैबोरेशन विद जेठा तुलसीदास।
4: महफिल शमा फिरती हो कहां।
1: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस।
2: आपकी पसंद चलिए आपके पसंद इस प्रोग्राम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हम करते हैं। सुमिता की ओर से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। और यहाँ पर आपकी पसंद ये जो प्रोग्राम है इसमें आप साथ दे रहे हैं। इस समय ज्योति, इस समय हमारे साथ जो है विद्या जी, हमारे साथ यूनियन पार्क से जुड़ी हुई है। वो दिन याद करो फिल्म का ये जो तराना है इसकी इन्होंने मांग की है, खासकर अपने सभी बहनों के लिए। सती है, सुरेखा है, बबीता है, सुनीता है, खासकर यही गाना चाची कुमारी के नाम। और विद्या जी ये गाना खासकर आपके लिए भी और रफ़ी साहब के सभी फैंस के नाम।

0: की पसंद।
1: चलिए, आपकी पसंद यह प्रोग्राम है और भाई बहन का पवित्र बंधन जो होता है, रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं यहाँ पर हमारे श्रोताओं की ओर से आ रही हैं। इस पर्व की तैयारियों में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, तो चलिए इस पर्व के चलते यहाँ पर ढेर सारी फरमाइशें भी आ रही हैं। अनीता जी जो है मौदालबे से साथ दे रही हैं, कह रही अगला गाना हो जाए करुणा अमृता और उनके सभी भाइयों के लिए, और ये गाना जो है इनकी ओर से जाता है सभी भाई बहनों के नाम जो इस पर्व को मनाने वाले हैं। रानी तुलसी मौदालबे से साथ जुड़ी हुई है, अपने भाई निर्मल, बिमल,

शुद्ध सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दे रही हैं और साथ ही कवि और युवराज तुलसी को भी उनके सभी बहनों की ओर से, फिर साथ में छोटी चिविष्का है, फिर रिताशा है जो अपने भाइयों को, साथ भाई पृथ्वी को जो है रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दे रही हैं। हाँ, संजीत के नाम रक्षाबंधन की शुभकामनाएं आ रही हैं। बहनों की ओर से इंदिरा है, शारदा है, नीला है, प्रदीपा है, शोभा है, गीता गजाधर है, सभी को इस पावन पर्व की शुभकामनाएं यहाँ पर आपकी ओर से भी विश्वानी जी। और चलिए यहाँ पर कुछ और मैसेजेस यहाँ पर हम जोड़ते हैं, यहाँ पर अगले तराने की ओर हम बढ़ेंगे। और ये जो अगला तराना है यहाँ पर जाता है विद्या जी आपके लिए भी जो इस समय हमें सुन रही है, और यहाँ पर आप सभी जो है हमारे प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये खूबसूरत सा तराना चल पड़ा

0: आपकी पसंद।
1: चलिए, हर एक बंधन अपने आप में खूबसूरत होता है, हर एक रिश्ता अपने आप में खूबसूरत होता है, और हर रिश्ते में जहाँ विश्वास होता है, जहाँ प्यार होता है, जहाँ अपनापन होता है, ऐसे ही रिश्ते जो है बहुत दूर तक जाते हैं। तो रिश्तों में सच्चाई होना बहुत ज़रूरी होता है, रिश्तों में विश्वास होना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए, अभी के लिए प्रोग्राम को आगे ले जाते हैं। इस समय हमारे साथ बड़े ही प्यार से जो है माधुरी जी जुड़ी हुई है और कह रही है कि हम और परी भी आपके साथ साथ हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्यार भरे साथ के लिए, और ऐसे ही आपका साथ हमें मिलता रहे। और यहाँ पर ज्योति जी यूनियन पार्क से हमारा साथ दे रही है। गाना जाता है यहाँ पर प्रीति के नाम, मयूर के नाम, आदर्श के लिए वेदना है, विमला है, विवेक है, अविष्टा, सभी बड़े प्यार से सुन रहे हैं। तो चलिए, हो जाए विश्वात्मा फिल्म का ये

0: की पसंद।
1: चलिए विश्वात्मा फिल्म के इस गाने को पसंद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत से लोगों का ये जो गाना है काफ़ी पसंदीदा है। तो ऐसे में चलिए अब बारी है इस अगले तराने की। अगला तराना जो है राजा फिल्म का ये गीत होगा, उदित नारायण, अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ों में। और इस खूबसूरत गाने की फरमाइश आई है त्रियोले से सभी बंधु परिवार की ओर से, जो इस समय हमारा साथ दे रहे हैं। और यहाँ पर जो है बड़े ही प्यार से हमारे सुनने वाले हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं और एक के बाद एक खूबसूरत गानों की कर रहे हैं। इसी बीच सुदेवी जी वाकवा से साथ दे रही है, कह रही है एंजॉयिंग योर प्रोग्राम, थैंक यू सो मच सुदेवी जी, धन्यवाद। त्रियोली की दीदी लालिता के नाम अगला गाना सभी कुशल फैमिलीज के लिए। दीदी सुनीता, शोभा, देवीना, मालिंगा से है कृषय, कृषिका, लक्षिका, साथ में है प्रणीता, हमारे सभी भाइयों के लिए भी, चलिए आपके सभी भाइयों के नाम भी, और सभी राम रतन परिवार, सभी कुवारू परिवार, सभी हृदय परिवारों के नाम ये तराना चल पड़ा।

0: आपकी पसंद।
1: चलिए, आपकी पसंद ये जो प्रोग्राम है, यहाँ पर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पसंदीदा गीतों का ये जो प्रोग्राम है इसे हम आगे ले जाते हैं। और यहाँ पर अगला जो तराना है, यहाँ पर रक्षाबंधन के पावन पर्व की तैयारियाँ कर रहे हैं हमारे सभी श्रोता और कह रहे हैं कि रक्षाबंधन की शुभकामनाएं सभी को, खासकर भाई सुभाष, सचिन और राज को। दो भाई आपके यूके में हैं और साथ में यहाँ पर अजय है, यीशु है, कजिन्स है, ईश्वर, जगदार और यहाँ पर मनोज जी भी हमारा साथ दे रहे हैं। तो चलिए, जितने भी लोग प्यार से जुड़े हुए हैं, आप सभी के प्यार भरे साथ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर ये जो खूबसूरत सा तराना है, आप सभी के नाम हम करते हैं और यहाँ पर आपके इन सभी मैसेजेस के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया जो हमें यहाँ पर मिल रहे हैं।

चाहे फासले कितने भी बढ़ जाए, भाई बहन के दिलों की दूरी कभी नहीं बढ़ती। रक्षाबंधन का ये पवित्र त्योहार आपके रिश्ते में और प्यार, सम्मान और खुशियाँ लाए। MBC रेडियो की ओर से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन।

0: सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, एन एवरग्रीन आफ्टरनून. सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, इन कोलैबोरेशन विद जेठा तुलसीदास. दो घंटों का सुरीला सफर पुएर्टो पिमो के लेडी सुशील राम गुलाम रिक्रिएशनल सेंटर में, जहां तेरासिन सीनियर सिटीजन एसोसिएशन के साथ इस म्यूजिकल सफर को मजेदार और यादगार बनाएंगे. ऑन दिस फ्राइडे 28 अगस्त दिन के 12 बजे से लेकर 2 बजे तक लाइव ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन. साथ ही टिकटॉक पर भी फॉलो कर पाएंगे. सो भूलिएगा मत, इस शुक्रवार 28 अगस्त को फ्रॉम नून टू 2 PM पुएर्टो पिमो के लेडी सुशील राम गुलाम रिक्रिएशनल सेंटर में सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, इन कोलैबोरेशन विद जेठा तुलसीदास.
1: महफिल ऐ शमा फिरती हो कहां.
2: पसंद और चले यहाँ पर पसंदीदा गीतों का प्रोग्राम जारी है. आपकी पसंद इस प्रोग्राम में आप हमारा साथ दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. और यहाँ पर अगले तराने की ओर हम बढ़ते हैं. और अगला जो तराना है यहाँ पर, इसकी रिक्वेस्ट जो है आशा जानू जी की ओर से आई है.

और आशा जानू जी की ओर से सिंदूर फिल्म का ये जो तराना है इसकी रिक्वेस्ट इन्होंने की है, और ये गाना जाता है इनकी ओर से इनके मामा कुमारी के लिए, साथ में नेफ्यूज है शुभम, ऋषभ दीदी है, आरती, जीजू है, राज, सभी जानू परिवार जो इस समय साथ दे रहे हैं, और साथ ही यही तराना इनकी ओर से चित्रा जी के नाम, भाई विजय के नाम, और इनके सहेलियों के लिए नंदिनी है, जेनीता है, जो बड़े ही प्यार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं।

0: की पसंद।
1: और चलिए आपके फ़ोन कॉल्स, आपके मैसेजेस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर माहेन जी इस समय हमारा साथ दे रहे हैं, और आपको भी प्रणाम माहेन जी। और अगला गाना आपने कहा कि हो जाए सभी के लिए, इतना प्यार करेगा कौन, माँ करती है जितना, ये गाना आपने मांगा है यहाँ पर आपकी दीदी मान के लिए, सभी संगीत प्रेमियों के लिए और हमारी पूरी टीम के लिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो गीत है उन सभी के नाम भी जो इस गीत को पसंद करते हैं यहाँ पर। और चलिए यहाँ पर ये खूबसूरत सा तराना चल पड़ा आप सभी के लिए।

यकीनन हमारे माता पिता जो है हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, और माता पिता के प्रति हमारे मन में प्रेम और सम्मान जो है कभी कम नहीं होना चाहिए। और चलिए अभी के लिए इस समय बड़े ही प्यार से हमारे साथ जो है जुड़ी हुई है रेशमा जी, और अगला गाना जाता है पति विमल के लिए, बच्चे है परवसी, साथ में है कृष्णी, भाई है श्रवण, साथ में है स्वाविन, और ये सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दे रही है। एक्वायर से हमारे साथ जुड़ी हुई है, यहाँ पर कुतेज से प्रेमिला बोईजू हमारा साथ दे रही है, कहती है अगला गाना हो जाए उनके भाइयों के लिए, देविन है राजेन है, और देविन और राजेन जी अगला गाना आपके नाम, आपके सभी बहनों की ओर से, खासकर प्रेमिला की ओर से। साथ में है दान्यू, बेबी, जया, अनुराधा, तारा, उमा, आप सभी की ओर से, और यहाँ पर रत्नावती जी भी अपने भाई राज और विष्णु को रक्षाबंधन इस पावन पर्व पर याद कर रही है और उनको ढेर सारी शुभकामनाएं दे रही हैं। गाना जाएगा सभी गुरु वादु परिवार के नाम जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और चलिए यहाँ पर आप सबका प्यार भरा साथ हमें मिला इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर मानिता जी हमारा साथ दे रही है, प्रणाम मानिता जी आपको, आशा करते हैं, चलिए आपका मैसेज हमें मिला, हम बिल्कुल ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप भी ठीक हैं, गानों को पसंद कर रही है, प्रोग्राम को पसंद कर रही है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गाना जाएगा आपके भाई सत्यम के लिए, और साथ ही सभी बहनों की तरफ से, आरती है, सचिता है, बबीता है, रेखा है, सभी सेंट जूलिया विलाज से हमारा साथ दे रहे हैं। और चलिए यहाँ पर आप लोगों के प्यार भरे मैसेजेस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर यस, पूनम बाल गोविंद जी की ओर से ये पहला मैसेज था जो हमने पढ़ा हस्बैंड विमल के लिए। कभी कभार ऐसा होता है कि आप लोग मैसेज लिख देते हैं लेकिन मैसेज में अपना नाम नहीं लिखते, तो हमें पता ही नहीं चलता कि मैसेज किसने भेजा है। तो चलिए पूनम जी बहुत बहुत धन्यवाद, अगला गाना आपके नाम और पूरे परिवार के नाम हम करते हैं, और इसी सुंदर गीत के साथ आज का जो आपकी पसंद प्रोग्राम है समाप्त होने को चला, और 4 बजे जो है आप सुन पाएंगे भक्ति सागर इस कार्यक्रम को, तो हमारा साथ आप यूं ही देते रहे रेडियो मॉरिशस पर।

0: सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, एन एवरग्रीन आफ्टरनून. सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, इन कोलैबोरेशन विद जेठा तुलसीदास. दो घंटों का सुरीला सफर पुएर्टो पिमो के लेडी सुशील राम गुलाम रिक्रिएशनल सेंटर में, जहां तेरासिन सीनियर सिटीजन एसोसिएशन के साथ इस म्यूजिकल सफर को मजेदार और यादगार बनाएंगे. ऑन दिस फ्राइडे 28 अगस्त दिन के 12 बजे से लेकर 2 बजे तक लाइव ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन. साथ ही टिकटॉक पर भी फॉलो कर पाएंगे. सो भूलिएगा मत, इस शुक्रवार 28 अगस्त को फ्रॉम नून टू 2 PM पुएर्टो पिमो के लेडी सुशील राम गुलाम रिक्रिएशनल सेंटर में सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, इन कोलैबोरेशन विद जेठा तुलसीदास.
1: महफिल शमा फिरती हो कहां.
2: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस. रेडियो मॉरिशस
3: भक्ति सागर.
4: गुरुवार 27 अगस्त, घड़ी मिला लीजिए सुबह के 4.

बज रहे हैं रेडियो मॉरिशस पर। आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आपकी सेवा में यहाँ पर हम एक बार फिर जुड़ चुके हैं आपके साथ और अभी से लेकर शाम के 5 बजे तक भक्ति सागर इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे। तो आपका साथ हमें मिल रहा है भक्ति सागर इस कार्यक्रम के अंतर्गत, इसके लिए बहुत बहुत आभार। श्रोताओं, कहते हैं भक्ति अपने आप में एक ऐसी शक्ति होती है जो जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, और ईश्वर के प्रति ये जो भक्ति होती है ना, जीवन में कैसे भी परिस्थितियाँ क्यों ना आ जाए, इसका सामना करने के लिए हमारी सहायता करती हैं। तो चलिए, ईश्वर जो है अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते हैं, उनका हाथ अपने भक्तों के सर पर सदा रहता है और वे अपने भक्तों का मार्गदर्शन सदैव करते हैं। तो चलिए, ईश्वर पर इसी विश्वास को हम बनाए रखते हैं। और आपको बता दें, इसी कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ क्षणों में आप सुन पाएंगे कार्यक्रम पीयूष धारा भी डॉक्टर शांति महावीर जी से। अभी के लिए भगवान गणेश का ध्यान करते हैं और उनके नाम से कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं।

जी हाँ, सभी चिंताएं दूर हो जाती है, सभी दुविधाएं दूर हो जाती है, जीवन सरल और सुगम हो जाता है जब हम ईश्वर की शरण में जाते हैं। बस विश्वास होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि जब भी कोई भी व्यक्ति सच्चाई के मार्ग पर चलने का प्रयास करता है तो अवश्य कठिनाइयाँ बहुत आती हैं, रुकावटें बहुत आती हैं, लेकिन जब इन कठिनाइयों को, इन रुकावटों को पार करके अंततः जब हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं तब मानो सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो ईश्वर के दिखाए हुए मार्ग पर चलना थोड़ा कठिन तो है, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं। बस विश्वास रखें और सब कुछ जो है जीवन में संभव हो ही जाता है।

0: भगवान साई की कृपा आप सब पर सदा रहे, ऐसी कामना हम करते हैं। और भक्ति सागर इस कार्यक्रम में आपका साथ हमें मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत आभार श्रोताओं। और अभी के लिए समय हुआ है
1: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस,
0: यहाँ रेडियो मॉरिशस पर अभी के लिए समय हुआ है कार्यक्रम पीयूष धारा का, जिसे हम सुनेंगे डॉक्टर शांति महावीर जी की प्रस्तुति में। तो आइए उनको सुनते हैं। धारा डॉक्टर शांति महावीर की प्रस्तुति में सुनिए भक्ति एवं आध्यात्मिकता पर आधारित कार्यक्रम पीयूष धारा।
2: प्रिय श्रोता भाई बहनों, पीयूष धारा कार्यक्रम में मैं आप सभी का सादर अभिवादन और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण महाकाव्य की अनुपम कथा को आगे बढ़ाने से पहले आइए हम एक गीत सुनते हैं।

श्रोताओं, महाराज जनक अपनी कर्मणा क्षत्राणी बेटी सीता के लिए पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष श्री राम को वर रूप में चुनते हैं। जनक राजाओं द्वारा पूजित श्रेष्ठ धनुष को उठाकर उस पर डोरी चढ़ाने का साहस केवल श्री राम ही कर पाते हैं। ऐसा करके वे राजा जनक की वीर्य शुल्क प्रतिज्ञा को पूर्ण कर देते हैं। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र से अनुमति पाकर राजा जनक अपने मंत्रियों द्वारा अयोध्या नरेश महाराज दशरथ को विवाह प्रस्ताव से संबंधित संदेश और निमंत्रण भिजवाते हैं।

मार्गे ते अयोध्यां प्राविशं पुरीं, यानी कि मिथिला के महान राजा जनक की आज्ञा पाकर उनके मंत्री दूत बनकर उत्तम और तीव्रगामी रथों पर सवार होकर अयोध्या के लिए निकल पड़ते हैं। उन्हें अयोध्या पहुंचने में 3 दिन और 3 रातें लगती हैं। अयोध्या के राजभवन के मुख्य द्वार तक पहुंचकर जनक जी के दूत द्वारपाल से अपने आने का प्रयोजन बताते हैं। श्रोताओं, राजा जनक का संदेश सुनाने के लिए जब वे दूत महाराज दशरथ के समक्ष उपस्थित होते हैं, तब उन्हें एक अपार आनंद की अनुभूति होती है। वृद्ध महाराज दशरथ उस समय उन्हें साक्षात देवता समान प्रतीत होते हैं। उनका दर्शन मात्र करके वे धन्य हो जाते हैं। उस विराट देव के आगे पूर्ण रूप से निर्भय होकर जनक जी के दूत हाथ जोड़कर बड़े ही मधुर स्वर में कहते हैं कि हे अयोध्या नरेश, आपके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। हमारे महाराज जनक जी ने आपका, आपकी प्रजा का, आपके गुरुजनों और कर्मचारियों का कुशल मंगल पूछा है। महर्षि विश्वामित्र से आज्ञा पाकर उन्होंने हमारे हाथों आपके लिए संदेश भिजवाया है। हे महाराज, आप भी इस बात से परिचित हैं कि विदेहराज जनक ने वीर्य शुल्क प्रतिज्ञा की थी। उनकी बड़ी पुत्री सीता पराक्रमी, वीर और कन्याओं में श्रेष्ठ हैं। वे पराक्रम दिखाकर ब्याही जाने वाली वीर्य शुल्का हैं। उसी सीता को आपके ज्येष्ठ पुत्र श्री राम ने अपना पराक्रम दिखाकर जीत लिया है। जनक महाराज का सौभाग्य ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के कारण जागा है। विश्वामित्र जी ही श्री राम और लक्ष्मण को लेकर उनके यहाँ महायज्ञ में मिथिला आए हैं। उनके कहने पर ही राजा जनक ने श्री राम को वह दिव्य धनुष दिखाया और उनसे धनुष पर डोरी चढ़ाने का निवेदन किया। श्रेष्ठ धनुष पर डोरी चढ़ाने के बाद जैसे ही श्री राम ने डोरी खींची, धनुष टूटकर 2 टुकड़े हो गया। इस प्रकार श्री राम ने विदेहराज मिथिला के महाराज जनक जी की वीर्य शुल्क प्रतिज्ञा पूरी कर दी। अब सीता के पिता होने के नाते उन्होंने हमें श्री राम के साथ सीता का विवाह प्रस्ताव लेकर आपके सामने उपस्थित होने के लिए भेजा है। हे राजन, बड़ी ही विनम्रता के साथ जनक जी ने आपको आदरपूर्वक मिथिला पधारने का निमंत्रण भेजा है। उनकी इच्छा है कि आप अपने उपाध्यायों, पुरोहितों, मंत्रियों और परिवार के साथ श्री राम और सीता को आशीष देने के लिए शीघ्र ही मिथिला पधारें। श्रोताओं, कथाकार महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि राजा जनक के स्नेह से भरपूर संदेश सुनकर महाराज दशरथ अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं और जनक जी के प्रस्ताव के विषय में वे अपने गुरुओं, मंत्रियों, उपाध्यायों और ऋषि मुनियों से विचार विमर्श करने बैठ जाते हैं। श्रोताओं, महाराज दशरथ के मंत्रिमंडल में अनेक उपाध्याय, आचार्य, ऋषि मुनि और पुरोहित सलाहकार रूप में उपस्थित रहते थे। महाराज दशरथ के लिए इन महात्माओं के परामर्श अमूल्य थे। इन्हीं महानुभावों के परामर्शों के कारण अयोध्या की प्रजा सुखी थी। मंत्रिमंडल में उपाध्यायों, ऋषियों
और पुरोहितों की

कि क्या भूमिका होती होगी श्रोताओं। आइए जानते हैं कि उपाध्याय, ऋषि और पुरोहित किसे कहते हैं और इनके कौन से लक्षण होते हैं। मनुजी महाराज मनुस्मृति में लिखते हैं कि एकदेशम तु वेदस्य वेदांगान्यपि वा पुनः यो अध्यापयति वृत्त्यर्थ मुपाध्यायः स उच्यते। नीति शास्त्री कहते हैं कि जो वेद के किसी एक अंग में दक्षता प्राप्त करके उसे पढ़ाता है या जो शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद और ज्योतिष विद्याओं को पढ़ाता है वह उपाध्याय कहलाता है। अर्थात वेद या वेदांगों के किसी भाग या अंश में विशेष ज्ञान प्राप्त करने वाले को उपाध्याय कहते हैं। विशेष ज्ञान रखने वाले इन उपाध्यायों के परामर्श राष्ट्र के हित के लिए अत्यावश्यक होते हैं। इसीलिए उपाध्यायों को महाराज दशरथ अपने मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण स्थान देते थे। श्रोताओं, दशरथ जी के परामर्श दाताओं में ऋषि मुनि भी थे। ऋषि का अर्थ है प्रकाश, जो ज्ञान विज्ञान के प्रकाश में सदैव स्नान करता है, दूरदर्शी होता है, वह ऋषि कहलाता है। घटित होने वाली दुर्घटनाओं से ऋषि राजा को सचेत करता है, इसीलिए वह राजा द्वारा पूज्य होता है। श्रोताओं, पुरोहित भी मंत्रिमंडल की शोभा होते हैं, क्योंकि पुरोहित राजा और प्रजा के घर परिवार में धार्मिक अनुष्ठान और पांच महायज्ञ करवाते हैं। समय समय पर देश में बृहद यज्ञों का आयोजन भी पुरोहित ही करते हैं। राज्य में धार्मिक गतिविधियों की देखरेख पूर्ण रूप से पुरोहित किया करते हैं। ये धर्म के रक्षक और पालक होते हैं। राजा अगर अपनी प्रजा के सुख की कामना करता है तो उसे धर्म की रक्षा अवश्य करनी पड़ती है। पुरोहितगण परामर्शदाता बनकर धर्म की रक्षा के मार्ग सुझाते हैं। इसीलिए महाराज दशरथ के मंत्रिमंडल में जब राज कर्मों की कुशलता को लेकर मंत्रणाएं होती थीं, तब उस मंडल में उपाध्याय, पुरोहित और ऋषि परामर्श देने के लिए उपस्थित रहते थे और महाराज दशरथ अपने पुरोहितों, उपाध्यायों, मंत्रियों से विचार विनिमय किए बिना कोई निर्णय नहीं लेते थे। कथा को आगे बढ़ाते हुए वाल्मीकि मुनि लिखते हैं कि यदि वो रोचते व्रतम जनकस्य महात्मनः पौरीं गच्छामहे शीघ्रं मा भूत कालस्य पर्ययः। महाकवि कहते हैं कि अपने मंत्रियों और परामर्शदाताओं से विचार विमर्श करने के बाद महाराज दशरथ उनसे कहते हैं कि हे महात्माओ, अगर आप सभी को राजा जनक का प्रस्ताव और निमंत्रण स्वीकार है तो हमें जल्दी ही मिथिलापुरी पहुंचने के लिए तैयारी आरंभ कर देनी चाहिए। श्रोता भाई बहनों, अयोध्या और मिथिला की सभ्यता अद्वितीय थी। वहां के राजा कुशल शासक तो थे ही, साथ ही उच्च कोटि के धार्मिक पुरुष भी थे। उनके मंत्री शास्त्रों के परम ज्ञाता, शूरवीर, कुलीन, सुपरीक्षित और उत्तम धार्मिक पुरुष थे। इसीलिए अयोध्या और मिथिला की प्रजा सुखी थी। धर्म को हर हाल में ऊंचा रखना पड़ता है श्रोताओं, क्योंकि केवल धर्म ही व्यक्ति, समाज और राष्ट्र को सुरक्षित रखने में सक्षम होता है। रामायण की कथा को
हम अगले कार्यक्रम में

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पीयूष धारा डॉक्टर शांति महावीर जी की प्रस्तुति में। इस कार्यक्रम के लिए उनको हम धन्यवाद देते हैं। और कहते हैं ना श्रोताओं, जीवन में हर एक व्यक्ति का अपना अपना कर्तव्य होता है और अपने कर्तव्य का पालन करना हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी भी होती है। जो भी अपने कर्तव्य का पालन करता है और उसके अनुरूप अपने जीवन को आगे ले जाता है, वो व्यक्ति जीवन में कभी जो है दुख से घिरा नहीं रहता है, कभी परेशानियां उसे छू नहीं पाती हैं और वो सदैव अपने जीवन को एक खुशहाल और शांति से व्यतीत करता है। और जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं और सदैव जो है औरों को अपनी बातों के लिए दोष देते रहते हैं, ऐसे व्यक्ति जीवन में कभी प्रगति नहीं कर पाते हैं। कभी कभार हम अपनी ही समस्याओं को नहीं समझ पाते हैं और उसका दोष औरों को देते हैं। यदि एक जिम्मेदारी हमने उठाई है तो उस जिम्मेदारी को पूरा करना, जिम्मेदारी का पालन करते हुए जीवन में सबको सुखी रखना, क्योंकि हम परिवार में रहते हैं, परिवार में हर एक सदस्य के प्रति हमारी एक जिम्मेदारी होती है, हमारा एक कर्तव्य होता है, उन सब का पालन अवश्य हमें करते रहना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो चलिए अभी के लिए हम भी आगे बढ़ते हैं, इस श्री विष्णु जी को याद करते हैं इस अगले भक्ति गीत द्वारा।

श्रोताओ, कहते हैं जीवन में जो भी कुछ होता है ना, उससे हमें बहुत कुछ सीखने का अवसर मिलता है, बहुत कुछ जानने का अवसर मिलता है। क्योंकि कहते हैं जीवन में कुछ भी बिना कारण नहीं होता है। जीवन में बहुत सारी घटनाएं पहले से निर्धारित होती हैं और बहुत सारी घटनाएं हमारे कर्मों पर आधारित होती हैं। और ये तो सदा ही कहा जाता है कि अच्छे कर्मों का फल सदा अच्छा होता है, और यदि किसी कारणवश किसी बुरे कर्म में अगर हम पड़ जाते हैं तो उस बुराई का परिणाम भी कहीं ना कहीं हमें ही भुगतना पड़ता है। कर्मों के इस फल से कोई बच नहीं सकता है, तो इसलिए कर्मों को ध्यान में रखते हुए हर एक कार्य को करना चाहिए। अपने किसी कर्म से किसी को ठेस ना पहुँचे, किसी का कोई नुकसान ना हो, किसी की कोई हानि ना हो, या किसी को कोई हम दुख न दे रहे हो, इस बात का सदा ध्यान रखना चाहिए। और चलिए अभी के लिए एक और सुंदर प्रस्तुति की ओर हम बढ़ते हैं। भक्ति सागर इस कार्यक्रम में आप हमारा साथ दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार श्रोताओं। और यहाँ पर भक्ति सागर ये जो कार्यक्रम है, आपको बता दें, चलता है हर गुरुवार को सपेर के 4 से 5 बजे के बीच रेडियो मॉरिशस पर, और इसमें आप सभी बड़े प्रेम से हमारा साथ देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।

तो श्रोताओं, इसी सुंदर माँ संतोषी की आरती के साथ भक्ति सागर यह कार्यक्रम अपने समापन की ओर बढ़ रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपने हमारा साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। 5 बजे से शुरुआत होगी सदाबहार गीतों की, तो आप हमारा साथ यूं ही देते रहिए। रेडियो मॉरिशस पर धन्यवाद।

चाहे फासले कितने भी बढ़ जाएं, भाई बहन के दिलों की दूरी कभी नहीं बढ़ती। रक्षाबंधन का ये पवित्र त्योहार आपके रिश्ते में और प्यार, सम्मान और खुशियाँ लाए। MBC रेडियो की ओर से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन।

सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, एन एवरग्रीन आफ्टरनून सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, इन कोलैबोरेशन विद जेठा तुलसीदास। दो घंटों का सुरीला सफर पुएर्टो पिमो के लेडी सुशील राम गुलाम रिक्रिएशनल सेंटर में, जहां तेरासिन सीनियर सिटीजन एसोसिएशन के साथ इस म्यूजिकल सफर को मजेदार और यादगार बनाएंगे। ऑन दिस फ्राइडे 28 अगस्त दिन के 12 बजे से लेकर 2 बजे तक लाइव ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन, साथ ही टिकटॉक पर भी फॉलो कर पाएंगे। सो भूलिएगा।

0: दिन के 12 बजे से लेकर 2 बजे तक लाइव लाइव ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन, साथ ही टिकटॉक पर भी फॉलो कर पाएंगे। सो भूलिएगा मत, इस शुक्रवार 28 अगस्त को फ्रॉम नून टू 2 PM पुएर्टो पिमो के लेडी सुशील राम गुलाम रिक्रिएशनल सेंटर में सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ इन कोलैबोरेशन विद जेठा तुलसीदास। जेठा तुलसीदास
1: महफिल ऐ शमा फिरती हो कहां।
2: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
0: सदाबहार की रेडियो मॉरिशस पर।

0: सदाबहार की रेडियो मॉरिशस पर।
1: गुरुवार 27 अगस्त, घड़ी मिला लीजिए, शाम के 5 बज चुके हैं और यहाँ से शुरुआत होती है सदाबहार गीत के प्रोग्राम की। तो चलिए, आप सबका एक बार फिर से दिल से स्वागत हम करते हैं। मैं हूँ सुमी और शाम के 6 बजे तक यहाँ पर जो है हम आपके साथ साथ रहेंगे, सदाबहार गीतों को आपके लिए चलाएंगे और साथ में यहाँ पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इस प्रोग्राम में हमारा साथ दे सकते हैं। और शाम का वक्त है, उम्मीद करते हैं ये समय बहुत अच्छे से बीत रहा होगा रेडियो मॉरिशस के साथ। और चलिए, यहाँ पर सदाबहार गीतों की बात करें तो ये गाने ऐसे हैं जो हमारे दिलों में बसे हैं, गाने ऐसे हैं जिनसे न जाने कितनी यादें जुड़ी हुई है। और इन्हीं गानों से जो है कभी कभार ज़िंदगी में हम देखते हैं कि कहाँ पर हम थे ज़िंदगी के सफ़र में, कहाँ पर पहुँचे हैं और कहाँ तक हमें जाना है ना। क्योंकि गानों की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो हर एक गाने के साथ कोई ना कोई याद ज़रूर छुपी होती है, कोई ना कोई बात ज़रूर छुपी हुई होती है। तो चलिए, बातें अभी कम करेंगे और खूबसूरत गानों का ये जो सफ़र है इसकी बस शुरुआत होने ही वाली है यहाँ पर रेडियो मॉरिशस पर। तो चलिए, ये जो खूबसूरत तराना है, आप सभी के नाम हम करते हैं, शागिर्द फिल्म से लिया गया ये गीत रफ़ी साहब और साथियों की आवाज़ों में।

झाला झाला लिबास क्यों, रेशम पहनो कपास क्यों, फन ये जादूगरी का है, अरमा तुमको परी का है, तो उसकी

नजर कहीं कहिए हाथों में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल मुद्दत से दिल उदास है तेरे होंठों की प्यास है ऐ दिल भर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब गा।

नहीं आया मौसम बहार का, रख ले दिल बेकरार का मेरे हाथों तुम तुम में हाथ डाल। ऐ गुल चेहरा परी जमाल, मुद्दत से दिल उदास दादा दास है, तेरे होठों की प्यास है। ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा।

0: सदाबहार गीत रेडियो मॉरिशस पर।
1: चलिए यहाँ पर सदाबहार गीत में अगला गीत बिल्कुल चल पड़ा है और ये जो गाना है इसे हमने लिया है आपके दीवाने इस फिल्म से। हम तो आपके दीवाने हैं, बेशक इन गानों के दीवान के कुछ और ही है। ये जो गाना है इसे आप सुनेंगे किशोरदा अमित कुमार और साथियों की आवाज़ों में।

0: सदाबहार गीत रेडियो मॉरिशस पर।
1: चलिए, सदाबहार गीतों का ये प्रोग्राम है और ऐसे में अगला गाना साजन फिल्म से लिया गया है, पुरानी फिल्म साजन। जी हाँ, पुरानी फिल्म साजन। और ये जो फिल्म है 60s के सालों में रिलीज़ हुई थी और इस फिल्म का ये जो तराना है, इस फिल्म का टाइटल ट्रैक लता जी की आवाज़ में, साजन साजन पुकारू गलियों में।

0: सदाबहार गीत रेडियो मॉरिशस पर।
1: एक था गुल और एक थी बुलबुल, जब जब फूल खिले फिल्म का ये तराना अभी आप सुन रहे थे रफ़ी साहब और नंदा की आवाज़ों में। ये फिल्म अपने आप में बड़ी ही कमाल की फिल्म है। फिल्म में शशि कपूर नज़र आए थे, साथ में थी नंदा। और चलिए गानों का ये जो कारवा है, जो सिलसिला है, इसे आगे ले जाते हैं। शाम का वक्त है, बहुत सारे हमारे जो सुनने वाले हैं इस समय किचन में काम करते करते हमारा साथ देते हैं, शाम के खाने की तैयारियों में लगे हुए हैं, तो बस जहाँ कहीं से भी साथ दे रहे हैं। यहाँ पर खूबसूरत गानों का ये जो सिलसिला है यहाँ पर जारी है आप सभी के लिए। और चलिए अगले तराने की ओर बढ़ते हैं, जिसे हमने लिया है फिल्म सच्चाई से, जिसे आप सुनेंगे आशा जी और रफ़ी साहब की आवाज़ों में।
0: सदाबहार की रेडियो मॉरिशस पर।

0: अमोरे मियो दोवे साय तू। ए, क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।

0: सदाबहार गीत रेडियो मॉरिशस पर।
1: जी हाँ, दो लफ्जों की है दिल की कहानी, द ग्रेट गैम्बलर फिल्म से लिया गया ये खूबसूरत सा तराना। और चलिए, इन सभी गानों को आप एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे हमारे जो सुनने वाले हैं उन्होंने जो है हमारा रेडियो का एनिवर्सरी जो हमने मनाया था, जिसमें हमारे सभी आर्जेस ने परफॉर्म किया था और MBC के चैनल 3 पर वो प्रोग्राम जो है मंगलवार को चलाया गया था, तो बहुत सारे लोगों ने उस प्रोग्राम को देखा और बहुत पसंद किया उस प्रोग्राम को, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, यहाँ पर शोभा जी जो है वाकवा से साथ दे रही है और उन्हें प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा और RM2 और RM3 को वो एनिवर्सरी की शुभकामनाएं दे रही है। और गाना जाता है उनकी ओर से उनकी बेटियों के नाम, अनुषा है, श्रवीना है, शोभा है, साथ में यहाँ पर शायद सभी पूरन परिवार के नाम। यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने के लिए। और नमस्ते सुमित जी, बेसन के लड्डू बना रहे हैं और गाने सुन रहे हैं, अरे वाह लक्ष्मी जी चलिए आपके बेसन के लड्डू में जो स्वाद है वो बढ़ जाए, ऐसी कामना हम करते हैं। और चलिए, आप भी मुस्कुराते रहिए और हमारा साथ यूँ ही देते रहिए। सो ये है सदाबहार गीतों का प्रोग्राम और अगला जो तराना है वो है यशुदास जी की आवाज़ में आप सभी के लिए, जो इस समय बड़े ही प्यार से हमारा साथ दे रहे हैं।

0: सदाबहार की रेडियो मॉरिशस पर।
1: चलिए सदाबहार गीतों में हसीन और खूबसूरती की बात करें तो आज के गाने बड़े हसीन थे, गाने बड़े खूबसूरत थे। इन गानों को सुनते सुनते गुनगुनाते गुनगुनाते कब हम लगभग आज के आखिरी गाने की ओर बढ़ने को चले पता ही नहीं चला, है ना। कहते हैं ना, संगीत अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जो हमारा साथ ऐसे देती है कि कभी कभार हमें एहसास ही नहीं होता है कि हम किसी कठिन समय से गुजर रहे हैं या कोई दुख की ऐसी घड़ी आ गई है। संगीत को जो व्यक्ति अपना साथी बना लेता है, जो अपना हमसफ़र बना लेता है, उसके ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ फिर अच्छा संगीत ही होता है। क्योंकि आजकल लोग अपने आप में इतने बिजी हो गए हैं कि एक दूसरे को समय नहीं दे पाते हैं। वहीं पर लोग म्यूज़िक से जुड़ जाते हैं, गानों से जुड़ जाते हैं, और अभी के लिए आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस एवरग्रीन गानों के प्रोग्राम में, सदाबहार गीतों के प्रोग्राम में। इसके लिए थैंक यू वेरी वेरी मच। और चलिए इस आखिरी गाने के साथ हम भी आपसे विदा लेंगे, जल्द हमारी आपकी मुलाकात फिर होगी। ऐसे ही रेडियो मॉरिशस पर साथ देते रहिएगा सिलसिला फिल्म के इस खूबसूरत गाने के साथ। हम तो चले मिलने आएंगे कल दोपहर को।

0: आपसे आपकी पसंद इस प्रोग्राम में। तो आज के लिए बस इतना ही, 6 बजे आप सुन पाएंगे पूरा समाचार MBC रेडियो पर। तो अगली मुलाकात तक के लिए नमस्कार आप सभी को, शुभ संध्या हमारी ओर से, और रेडियो मॉरिशस पर ऐसे ही जुड़े रहिएगा, साथ देते रहिएगा।
1: सदाबहार की रेडियो मॉरिशस पर।

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: समाचारों में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। नमस्कार। जनवरी 2027 से लागू होने वाली स्टेट एज पेंशन की रकम अब लोग एसएपी एस्टीमेट के जरिए जान सकेंगे। पेंशन सुधार के तहत आगे योगदान पर आधारित पेंशन और भुगतान की व्यवस्था भी लाई जाएगी। कल से रविवार तक देश में ठंड बढ़ेगी, तापमान करीब 4 डिग्री सेल्सियस गिरेगा और तेज हवा, बारिश तथा ऊंची समुद्री लहरों का असर रहेगा। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से फ्रांस के राजदूत ने आज पोर्टलुई में रस्मी मुलाकात की। दोनों देशों के संबंधों और आपसी सहयोग पर चर्चा की गई। नेपाल में भीषण बाढ़ से अब तक 200 से अधिक लोगों की मौत, 826 लोग अभी लापता और बड़े पैमाने पर तलाश अभियान जारी है। नमस्कार। जनवरी 2027 से लागू होने वाली स्टेट एज पेंशन के तहत लोगों को कितनी पेंशन मिलेगी, अब वे इसका अनुमान खुद लगा सकेंगे। इसके लिए आज एसईपी एस्टीमेट सुविधा आधिकारिक रूप से शुरू की गई है। इसे स्मार्टफोन या सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके आधिकारिक प्रस्तुति आज दोपहर बाद पोर्टली के ट्रेजरी बिल्डिंग में की गई। पेंशन सुधार के तहत आगे दो और बदलाव लाए जाएंगे। सामाजिक सुरक्षा

0: रक्षा समाज सुरक्षा मंत्री अशोक सुभो के अनुसार इनमें योगदान पर आधिकारिक पेंशन और रकम का भुगतान शामिल है। इन दोनों व्यवस्थाओं पर विशेषज्ञों की एक समिति काम कर रही है और इसके बारे में आने वाले दिनों में अधिक जानकारियां भी दी जाएंगी। बात करते हैं मौसम के बारे में। हम आपको बता रहे थे अभी सुर्खियों में कि कल से रविवार तक देश में ठंड बढ़ती वाली है और तापमान में करीब 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है। एक शक्तिशाली तूफान एंटीसाइक्लोन के असर से तेज हवा चलेगी और बारिश भी होगी। दक्षिण पश्चिम के समुद्री इलाकों में 4 से 6 मीटर तक ऊंची लहरें उठ सकती हैं। लोगों को समुद्र में नहीं जाने और समुद्र तटों से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। रिपोर्ट सुनिए।
1: एलिनो तजन ऑसिलेशन और इंडियन ओशन डायपोल, इन वैज्ञानिक शब्दों के पीछे दो बड़ी प्राकृतिक घटनाएं हैं जो दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में समुद्र के तापमान, बारिश और मौसम की स्थिति को प्रभावित करती हैं। इन घटनाओं, इनके आपसी संबंध और खासकर मॉरिशस पर इनके संभावित प्रभावों को बेहतर ढंग से समझने के लिए वैज्ञानिक संस्थाओं के प्रतिनिधि और संबंधित क्षेत्र के लोग ब्राजील स्थित इंस्टीट्यूट फ्रांसे डे मॉरिस में एकत्र हुए। मॉरिशस ओशियनोग्राफी इंस्टीट्यूट के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर मनवेंद्र सिंह कहते हैं,
2: एल नीनो इज फॉर्मिंग इन पैसिफिक, दिस इज फॉर श्योर।
1: प्रशांत महासागर में एल नीनो विकसित हो रहा है, लेकिन इंडियन ओशन डायपोल की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। ये एक सकारात्मक चरण में विकसित हो रहा है, जिससे ये संकेत मिलता है कि हमारे इलाके में समुद्र का तापमान ज्यादा रहेगा।
2: टुगेदर नाउ बट वी हैव टू स्टिल वेट फॉर द कंफर्मेशन फॉर आईओडी टू बी पॉजिटिव और नॉट।
1: मॉरिशस जैसे देश के लिए ये मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जलवायु और समुद्र में होने वाले बदलावों का असर समुद्री संसाधनों, मछली पकड़ने और तटीय इलाकों पर पड़ सकता है। जूनियर मंत्री फवगिस दाविद कहते हैं,
3: ce séminaire vient nous alerter sur le fait qu'un changement de température à la surface de l'océan Pacifique,
1: ये सेमिनार हमें सचेत कर रहा है कि पैसिफिक महासागर में तापमान में बदलाव हिंद महासागर में चूना मछलियों के प्रवासन में बदलाव ला रहा है। ये एक आर्थिक और सामाजिक संकट है, जिसका असर सीधा खाद्य सुरक्षा, मछली मार और चूना उद्योग पर पड़ेगा।
3: La pêcherie et l'industrie de la transformation du thon à Maurice.
1: और ये बदलाव सिर्फ वैज्ञानिक मॉडलों और पूर्वानुमानों तक सीमित नहीं है। समुद्र पर सीधे निर्भर रहने वाले लोगों के लिए समुद्री परिस्थितियों में बदलाव उनके रोजमर्रा के जीवन में साफ तौर पर दिखाई देता है। मच्छरों के संगठन के सदस्य साकेल फुकिया कहते हैं, पानी ज्यादा गर्म हो गया है और मछलियों की संख्या और उनकी किस्म में भी बदलाव आया है। पहले लगून के अंदर ही कई तरह की मछलियाँ मिलती थी, अब ये कठिन हो गया है। इस अनिश्चितता के बीच तैयारी पर जोर दिया जा रहा है। मॉरिशस एक टापू देश होने की स्थिति को हल्के में नहीं ले सकता। मॉरिशस के लिए उद्देश्य अप्रत्याशित घटनाओं की भविष्यवाणी करना नहीं है, बल्कि परिस्थितियों में बदलाव आने पर पहले से तैयारी करने, उसके अनुसार खुद को ढालने और सही समय पर कदम उठाने की क्षमता को मजबूत करना है।
0: मॉरिशस में हजारों किलोमीटर दूर पैसिफिक ओशन में हो रहे बदलाव का असर आने वाले समय में हमारे इलाके पर भी पड़ सकता है। ये रिपोर्ट इसी पर आधारित थी। विवरण गीता सुरान का रहा। एल नीनो ये मौसमी घटना है जो मॉरिशस के मौसम और समुद्री स्थिति को प्रभावित कर सकती है, इसलिए इन्हें बेहतर ढंग से समझने और इनके संभावित असर के लिए पहले से तैयार रहने के उद्देश्य से आज ब्राजील में एक विशेष बैठक आयोजित की गई थी। कुछ देर पहले हम आपको बता रहे थे कि जनवरी 2027 से लागू होने वाली स्टेट एज पेंशन के तहत लोगों को कितनी पेंशन मिलने वाली है वे इसका अनुमान खुद लगा सकेंगे। इसके लिए आज SAP एस्टिमेट सुविधा आधिकारिक रूप से शुरू की गई। सुनिए।
1: SAP एस्टिमेट्स आप लोगों को बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है कि स्टेट एज पेंशन कैसे काम करती है। इसका मुख्य उद्देश्य ये अनुमान लगाने में मदद करना है कि पेंशन की उम्र पहुंचने पर किसी व्यक्ति को कितनी पेंशन मिलेगी। हालांकि रिटायरमेंट की उम्र 65 साल है, लेकिन कोई व्यक्ति 60 साल की उम्र में भी अपनी पेंशन लेना शुरू कर सकता है। समाज सुरक्षा मंत्री अशोक सुभो कहते हैं,

0: choisir si j'ai envie pour gagner une pension à l'âge de 60 ans. Je suis capable de choisir dit 60 ans, 61, l'application vous explique ça.
1: Nous prenons l'exemple d'un Jimoun qui naît en juin 1967. Ça veut dire qu'il peut gagner 60 ans en juin 2027. So, month of birth. Et que vous trouvez qu'il y a l'option entre choisir de 60 ans à 70 ans. Et l'application a déjà fini calcul qui l'âge à Jimouna est éligible pour ce full SAP, c'est-à-dire sa pension qui a 15 555 roupies au dia. C'est 62 ans. Disons que sa personne-là, il décide pour atteindre ce full eligibility pour prendre sa pension. Et là, automatiquement, l'application peut dire à la personne quelle est l'estimation de ce SAP à l'âge de 62 ans quand il prend lit en 2029.
2: ये तकनीकी ऐप आईसीटी मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय और समाज सुरक्षा मंत्रालय के सहयोग से विकसित किया है। ये ऐप लोगों के लिए इंटरैक्टिव बनाया गया है। आईसीटी मंत्री अविनाश रामतोहल कहते हैं,
0: Je suis capable accéder à ce site-là ou ça appela à travers mon passe ou même si je peine mon passe, je suis capable accéder comment je peux télécharger sa application là depuis store qui je servi. Je suis capable immédiatement gagner information parce que
2: सरकार की घोषणा के अनुसार स्टेट एज पेंशन की राशि में हर साल जीवन यापन की लागत के हिसाब से बदलाव किया जाएगा। जूनियर मंत्री कुगन पागापेन बताते हैं,
1: première fois dans la loi, le gouvernement il prend l'engagement qui chaque année pour une augmentation dans ou pension universelle. Ça veut dire que pension qui ben grand immune gagné n'est plus pour un homme politique.
0: Nous peut espérer et nous peut faire tout pour que dans le mois octobre nous réussissons à ouvrir l'application et nous commençons le process ben paiement qui bizarre avant 2027 pour que l'air là nous qu'à faire paiement en 2027.
2: जैसा कि सरकार ने घोषणा की है, स्टेट एज पेंशन जनवरी 2027 से बेसिक रिटायरमेंट पेंशन की जगह लेगी। ये आप स्मार्टफोन पर या समाज सुरक्षा मंत्रालय की वेबसाइट के जरिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए एक जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा।
3: प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम से आज फ्रांस के राजदूत फ्रेडेरिक बोंटन ने रस्मी मुलाकात की। ये मुलाकात पोर्टली स्थित ट्रेजरी बिल्डिंग में हुई। इस दौरान मॉरिशस और फ्रांस के बीच संबंधों और आपसी सहयोग से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई। सुनिए।
4: Après trois très belles années passées à Maurice, où j'ai eu le privilège et le très grand plaisir d'être ambassadeur de la République française ici, et à la veille de mon départ, je quitte l'île samedi, dans deux jours, je souhaitais passer, remercier le Premier ministre pour la confiance dont il m'a honoré et lui dire tout le plaisir que j'avais eu à travailler ici.
5: Qu'est-ce que vous retenez de ce passage à Maurice ?
4: Il y a eu de très beaux moments. Naturellement, la visite du président de la République, première visite depuis plus de 30 ans. Et puis, tout récemment, nous venons d'achever le déménagement de notre ambassade, qui est maintenant située à Telfair, dans ses nouveaux locaux. Ce sont là deux dates, deux événements qui marquent dans la vie d'un ambassadeur.
5: Finalement, vous quittez le pays avec une relation franco-mauricienne très réchauffée.
4: Elle ne saurait être meilleure.
3: सतर हाजी अब्दुल्ला के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का अस्थायी आरोप आज पोटली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हटा दिया गया। अदालत के अनुसार उनकी गिरफ्तारी को सही ठहराने के लिए पर्याप्त आधार नहीं था। हालांकि अदालत ने मामले की जांच जारी रखने की भी बात कही है। एमोशस के पूर्व प्रशासक सतर हाजी अब्दुल्ला को FCC की जाँच के तहत गिरफ्तार किया गया था। मामला एमोशस के करीब 3.6 मिलियन रुपये के एक संदिग्ध समझौते से जुड़ा हुआ है। और अब ये खबर जो काफ़ी चर्चा में है, प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर निशान मोहिपत को एक महिला पुलिसकर्मी के साथ यौन व्यवहार के मामले में 6 महीने की जेल की सज़ा सुनाई गई है। उनका नाम 2024 में मैजिस्ट्रेट वर्षा बीफन दुर्गा की मौत के मामले से भी जुड़ा हुआ था। डॉक्टर निशान मोहिपत इस फैसले के खिलाफ अपील करने वाले हैं। सुनिए।
6: 29 अप्रैल 2022 में ये घटना घटी थी। तब 29 वर्षीय एक महिला पुलिसकर्मी एक निजी क्लिनिक में गई हुई थी। डॉक्टर निशान

0: मोहिब्बत कॉस्मेटिक सर्जरी करने वाले थे। इसके बाद इस महिला ने डॉक्टर पर यह आरोप लगाया कि डॉक्टर ने उसकी छाती को छुआ और कई बार चूमने की कोशिश की उसकी मर्जी के बिना। डॉक्टर मोहिब्बत ने अपने आप को निर्दोष बताया। फिर भी अपने फैसले में मजिस्ट्रेट ने इन घटनाओं के बाद व्हाट्सएप में हुए संपर्कों को ध्यान में रखा और साथ में पीड़ित महिला की बातें भी सुनी। डॉक्टर निशान मोहिब्बत ने अपील दायर करने का अपना इरादा जाहिर किया। डॉक्टर मोहिब्बत का नाम मजिस्ट्रेट वर्षा बिफन दुर्गा की मौत के साथ भी जुड़ा हुआ है। इस महिला ने 2024 में 19 जुलाई को डॉक्टर की ओर से रिपोसक्शन करवाया था। इसके चार दिन बाद वो चल बसी। ऑटोप्सी से पता चला कि इंटेस्टाइन आंत के परफोरेशन से लगातार सेप्टिसेमिया के कारण उसकी मृत्यु हुई। डॉक्टर मोहिब्बत को 2025 के फरवरी महीने में मेडिकल प्रैक्टिस से सस्पेंड कर दिया गया था। इसके बाद डॉक्टर मोहिब्बत को मेडिकल डिसिप्लिनरी ट्राइब्यूनल के सामने पेश किया गया था। 2026 के अप्रैल महीने में मेडिकल काउंसिल ने इस बात की पुष्टि की कि इस सर्जरी के सिलसिले में उसे क्रॉस मेडिकल नेग्लिजेंस के लिए दोषी पाया गया, लेकिन बाद में 13 महीने के बाद इस सस्पेंशन को उठा लिया गया। मेडिकल काउंसिल ने तब एक गंभीर दोष सीवियर रेप्रिमांड लगाया था। मेडिकल काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष तथा स्वास्थ्य सेवाओं के कार्यवाहक निदेशक डॉक्टर रिसोल ने कहा, उस वक्त मेडिकल काउंसिल का चेयरमैन पद संभाल रहे थे। मामला पेश किया गया था, एक शिकायत मिलने पर जांच की जाती है। जांच के बाद ये पाया गया कि डॉक्टर से किसी तरह की गलती हुई है। मेडिकल काउंसिल की तरफ से कदम उठाए जाते हैं। ये कदम किसी अवधि तक के लिए हैं। जब अवधि ढल जाती है तब वो फिर से रजिस्ट्रेशन के लिए अर्जी भेज सकता है। इसके बाद मेडिकल काउंसिल की ओर से फिर से जांच की जाती है और ऐसा किया गया भी, फिर ये निष्कर्ष निकाला गया। दूसरी तरफ डॉक्टर निशान मोहिब्बत के संबंध में अन्य दो शिकायतें भी दर्ज की गई है। 2015 में एक महिला मरीज ने उस पर दुर्व्यवहार करने के आरोप लगाए थे। डॉक्टर ने अपने आप को बेकसूर बताया था। 2023 में एक अन्य महिला मरीज ने एक लिपोसक्शन के बाद हुई परेशानियों का खंडन किया था और मेडिकल काउंसिल को इस बारे में बताया था। इन दोनों मामलों में शिकायतें दर्ज की गई या फिर आरोप लगाए गए और सजा निर्धारित नहीं किए गए। डॉक्टर रिसोल ने आगे बताया, अगर जांच से पता चला कि डॉक्टर के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है तो ठोस कदम नहीं उठाए जा सकते हैं। ऐसी भी स्थितियां हैं जब डॉक्टर जो कर रहा है वो लोगों के सामने उजागर हो गया हो, तब पब्लिक इंटरेस्ट जनहित के लिए मेडिकल काउंसिल की तरफ से डॉक्टर को सस्पेंड किया जा सकता है या वर्जित किया जा सकता है। अब से दुर्व्यवहार के लिए दोषी पाए जाने के 6 महीने की कैद की हालिया सजा के बाद मेडिकल काउंसिल को डॉक्टर निशान मोहिब्बत के पेशेवर भविष्य के संबंध में एक नया फैसला लेना होगा।
1: और अब अर्थनीति से जुड़ी ये खबर। अफ्रीकी विकास बैंक ने मॉरिशस से टिकाऊ और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक वित्तीय संसाधन जुटाने का आह्वान किया है। अपनी कंट्री फोकस रिपोर्ट 2026 में अफ्रीकी विकास बैंक ने 2027 में मॉरिशस की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 3.8% रहने का पूर्वानुमान जताया है।
2: अफ्रीकी विकास बैंक के अनुसार 2026 में मॉरिशस की अर्थव्यवस्था में 3% की वृद्धि होने का अनुमान है। इसके बाद 2027 में अर्थव्यवस्था के 3.8% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। वित्तीय सेवाएं, व्यापार और पर्यटन आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे। अफ्रीकी विकास बैंक के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी डॉ. विनय अंचरास इन अनुमानों को लेकर कुछ आशावादी हैं। वे कहते हैं, हमारे देश को ज्यादा आय जुटाना चाहिए, टैक्स में सुधार, सरकार और प्राइवेट सेक्टर के बीच बेहतर साझेदारी के जरिए। अगर ऐसा हुआ तो कम अवधि में वृद्धि बढ़ेगी। अफ्रीकी विकास बैंक अगले साल 3.8% का अनुमान लगा रहा है। IMF के अनुमान से ये ज्यादा है। महंगाई को लेकर अफ्रीकी विकास बैंक ने 2026 में महंगाई बढ़कर 5.7% होने का अनुमान लगाया है। इसका एक कारण मध्य पूर्व में जारी संघर्ष का असर भी है। इसके बाद 2027 में महंगाई घटकर 3.9% रहने का अनुमान है। हालांकि रिपोर्ट में कई संरचनात्मक चुनौतियों का भी उल्लेख किया गया है। इनमें श्रम बाजार में मौजूद असमानताएं और जरूरत के अनुसार कौशल की कमी, बढ़ती बुजुर्ग आबादी और सरकारी कर्ज का ऊंचा

0: स्तर शामिल हैं। इससे सरकार के पास नीतिगत कदम उठाने की गुंजाइश सीमित होती है। पानी और ऊर्जा की आपूर्ति के साथ साथ बंदरगाह से जुड़ी परिवहन व्यवस्था में भी बुनियादी ढांचों की कमी बताई गई है। ICT एक ऐसा क्षेत्र है जहां सुधार की जरूरत है। मॉरिशस में आर्थिक बदलाव को तेज करने के लिए अफ्रीकी विकास बैंक ने सामूहिक प्रयास करने की मांग की है। अफ्रीकी विकास बैंक के कंट्री मैनेजर मुनो मुपोतोला कहती हैं, ठोस प्रगति के लिए मॉरिशस को पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के साथ सहयोग जारी रखना पड़ेगा। साथ में विकास के साझेदारों, यूनिवर्सिटी के क्षेत्र, सिविल सोसाइटी और वित्तीय संस्थाओं के साथ विचारों को साकार करना चाहिए। इससे मॉरिशस आर्थिक बदलाव और होड़ को मजबूत करने में सफल रहेगा। बैंक ने वित्तीय व्यवस्था को बेहतर तरीके से जोड़ने, अनौपचारिक क्षेत्र को औपचारिक बनाने और सरकारी निजी भागीदारी को बढ़ावा देने की भी सिफारिश की है। इसका उद्देश्य मॉरिशस की प्रतिस्पर्धा क्षमता को मजबूत करना है ताकि देश उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था बनने के अपने लक्ष्य को हासिल कर सके।
1: नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक 350 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। पड़ोसी तिब्बत को मिलाकर करीब 1,500 लोगों की तलाश जारी है। अधिकारियों के अनुसार हिमालय में ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटने के बाद बर्फ, चट्टान और कीचड़ का भी भारी मलबा नदी में जा गिरा। सुनिए,
0: नेपाल और तिब्बत की सीमा को हिला देने वाली इस प्राकृतिक आपदा के अगले दिन भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। राहत और बचाव दल मुश्किल हालात में अपनी तलाश जारी रखे हुए हैं। टिमोर, ढुंचे और मैलुंग इलाकों में करीब 4,000 सैनिक तैनात किए गए हैं ताकि घायलों को सुरक्षित निकाला जा सके और संभावित रूप से जीवित बचे लोगों की तलाश की जा सके। भारत ने पहले ही आपातकालीन सामान लेकर 2 कार्गो विमान भेजे हैं। इनमें टेंट, दवाइयां और राहत बचाव के उपकरण शामिल हैं। भारतीय प्रधानमंत्री ने शोक संदेश जारी करते हुए इस संकट की घड़ी में नेपाल के साथ भारत की एकजुटता दोहराई है। भारतीय अधिकारियों ने आपदा से निपटने की अपनी तैयारी भी बढ़ा दी है ताकि स्थिति और बिगड़ने पर तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। वहीं चीनी अधिकारियों ने अपने क्षेत्र में 558 लोगों के लापता होने की जानकारी दी है। चीन भी पीड़ितों की मदद के लिए राहत कार्यों में जुटा हुआ है। ये जलप्रलय एक बड़े भूस्खलन के कारण हुआ जिसे ग्लेशियर के तेजी से पिघलने से जोड़ा जा रहा है। घनी आबादी वाले इस इलाके में भारी तबाही हुई है, खासकर कई दूर दराज के गाँवों में। वैज्ञानिकों ने आगे और भूस्खलन या जमीन धंसने के खतरे की चेतावनी दी है। खासकर एक अस्थिर जलाशय के कारण खतरा बना हुआ है जो स्थिति बिगड़ने पर बड़ी मात्रा में पानी छोड़ सकता है। ये त्रासदी एक बार फिर याद दिलाती है कि जलवायु परिवर्तन किस तरह पहाड़ी इलाकों की कमजोरियों को और बढ़ा रहा है जहां बर्फ तेजी से पिघल रही है।
1: और अब चलिए जानते हैं कि मौसम का हाल कैसा रहेगा। मॉरिशस, रोड्रिग्स और अगालिगा सैंपोंडों के लिए ऊंची लहरों की चेतावनी जारी की गई है, जो ये चेतावनी कल सुबह के 4 बजे से लागू होगी। और समुद्र में तेज लहरों की चेतावनी भी जारी की गई है। दक्षिण पश्चिम में एक जोरदार एंटीसाइक्लोन पाया जा रहा है जिसकी वजह से हमारे इलाके पर ठंडी हवाओं का असर रहेगा। आज रात को और कल सुबह के दौरान देश भर में मौसम अच्छा रहेगा और दिन के दौरान पश्चिम, दक्षिण और सेंट्रल प्लाटो पर रहकर तेज बरसात हो सकती है। तापमान 6 डिग्री तक गिर सकता है। ऊंचे इलाकों पर न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम 18 से 20 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम शाही इलाकों पर 18 से 21, अधिकतम 22 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी जिसके झोंके 45 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। लोगों से सावधानी बरतने की मांग की जाती है, खासकर सड़कों पर और समुद्र में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। और ये अतिरिक्त जानकारी आपको बता दें कि कल 28 अगस्त को सुबह के 5:22 से 11:04 पर आंशिक चंद्र ग्रहण लगेगा। सूर्यास्त 6 बजे, सूर्योदय 6:22 पर।

0: रहे शिव, उनको धन्यवाद देती हैं। अब बढ़ती हैं शोक समाचारों की ओर।
1: NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.

महमूद निज़ाम मंगर इंतकाल कर गए हैं। उनका जनाजा आज रात्रि के 7 बजे उनकी बीवी रोजिदा मंगर के मकान फिनिक्स से निकाल कर दफनाने के लिए फिनिक्स का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुनाइट एट 7 PM। रूट कास्टेल कॉन्फुक्रोमे 71 साल की 71 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती कृष्णावती बुधू पैदाइश नाम दुखी, लोग उन्हें बसंती के नाम से अधिक जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल दिन के सवा बारह बजे उन्हीं के मकान कॉन्फुक्रो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए अलीब्रियों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 12:15 PM। पीटों पे लावाल सेंट क्वामे 63 साल की 63 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सरिता ब्यादर सिंह की मृत्यु हो गई हैं। पैदाइश नाम असागौ, लोग उन्हें सुनीता के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी कल दिन के 12 बजे उनकी बेटी विशानी ब्यादर सिंह के मकान सेंट क्वा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही ब्रूले वाले देवघर की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट नून। अवेन्यू ड्रेपर बेलगोज में 67 साल के 67 ईयर्स ओल्ड की देवदत्त सिंह बिहारी की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें मामू के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी कल सुबह के 10 बजे उनकी पत्नी सुनीता बिहारी के मकान बेलगोज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोदेगौद की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। गांधी रोड अर्नेस्ट फ्लोरोमी 53 साल के 53 ईयर्स ओल्ड के विजय बाबूराम बंधु की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें मंगोल के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी कल सपहर 3 बजे उनकी पत्नी मालिनी बंधु के मकान गांधी रोड अर्नेस्ट फ्लोरो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 3 PM। मिडिल रोड प्लेंडी पापामी 73 साल के 73 ईयर्स ओल्ड के रामेश सनत की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल दिन के 10 बजे उन्हीं के मकान प्लेंडी पापाई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पीएफओ प्लेंडी पापाई की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। काली रोड फोंजी साक में 50 साल की 50 ईयर्स ओल्ड की सुमेदा शिवरोहक की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम जवाहिर, लोग उन्हें कविता के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी कल दिन के 10 बजे उनके पति विनोद सिहोरक के मकान से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्रियोली की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।

0: MBC Radio 24 hours a day. सेबी अपने ग्राहकों को सूचित करता है कि मरम्मत कार्यों की वजह से इन इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। शनिवार 29 अगस्त को सुबह 8:30 बजे से लेकर दिन के 3 बजे तक मौसलमों सैतंद्रे और आसपास के इलाकों में हामलेट डीएवी कॉलेज और लोलो हाइपर मार्केट में भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और रविवार 30 अगस्त को दिन के 11 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक पायुत और आसपास के इलाकों में पायुत मुटुलेन बटुलेन अनुपलेन और आसपास के इलाकों में भी जैसे कि सैयद हुसैन लेन में भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर बिना सूचना दिए ही बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी और सेबी अपने ग्राहकों से क्षमा चाहते हैं और अपना इंतजाम कर लेने की मांग करते हैं। शुक्रिया।
1: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
0: श्रावण मास के संदर्भ में मॉरिशस आर्य

0: रविवेद प्रचारिणी सभा के तत्वावधान में टोमासा आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा टोमासा रोड खेफकेया में शाम 6 बजे शुक्रवार 28 अगस्त को यज और प्रवचन का आयोजन कर रहा है। प्रवचन आचार्य मोहन आर्य श्रुत बंधु द्वारा किया जाएगा।
1: This is Radio Mauritius.
2: 819 kilohertz, ये है रेडियो मॉरिशस।

听众朋友，今天的音乐节目就到这里，现在跟您告别，下次节目再会。

चाहे फासले कितने भी बढ़ जाएं, भाई बहन के दिलों की दूरी कभी नहीं बढ़ती। रक्षाबंधन का ये पवित्र त्योहार आपके रिश्ते में और प्यार, सम्मान और खुशियाँ लाए। MBC रेडियो की ओर से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन।

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमबीसी रेडियो।
1: बजली प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर।

श्री गणेशाय नमः, सादर प्रणाम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं हूँ देवीना और आप सुन रहे हैं MBC रेडियो मॉरिशस पर श्रद्धा भक्ति तथा आत्मिक शांति से भरपूर कार्यक्रम भजे प्रभु का नाम। ईश्वर की कृपा से आपका यह गुरुवार सुख शांति उत्तम स्वास्थ्य तथा सकारात्मक ऊर्जा से भरा होगा। आइए कुछ पल के लिए संसार से दूर होकर प्रभु के चरणों में मन को अर्पित करते हैं। जब मन में भक्ति का दीप जलता है ना, तब जीवन का हर अंधकार दूर होने लगता है। चलिए पहले भजन की ओर।

श्रोताओं, जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आते हैं, है ना? कभी सफलता, कभी परीक्षा, परंतु जो व्यक्ति हर परिस्थिति में प्रभु का स्मरण करता हो, उसके भीतर धैर्य तथा साहस बना रहता है। कहा भी गया है, मन मंदिर में दीप जलाओ, हर पल प्रभु का नाम सुनाओ, दुख की रात स्वयं ढल जाएगी, भक्ति की किरण जब मुस्कुराएगी।

आप सुन पा रहे हैं रेडियो मॉरिशस पर भजते प्रभु का नाम कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत करते हैं। श्रोताओं, राह कठिन हो, मंजिल दूर हो, फिर भी हिम्मत मत हारना। जिसके सिर पर प्रभु का हाथ हो, उसे जीवन में कभी न हारना। हर सुबह प्रभु का नाम लिया करो, हर शाम उनका धन्यवाद किया करो। जीवन बहुत सुंदर लगने लगेगी। केवल विश्वास का दीप जलाया करो।

श्रोताओं, भक्ति केवल आरती का नाम नहीं है, भजन तक सीमित नहीं रहती। माता पिता का सम्मान करना भी भक्ति है, किसी की मदद करना भी भक्ति है, मीठा बोलना भक्ति है, प्रकृति की रक्षा करना भी ईश्वर की सेवा है। जब हमारा हर कर्म प्रेम तथा निस्वार्थ भाव से होता है, तभी जीवन में सच्ची भक्ति की शक्ति प्रकट होती है।

प्रिय श्रोताओं, आज के भजते प्रभु का नाम कार्यक्रम में इतना ही। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे आपके जीवन में सुख शांति प्रेम स्वास्थ्य तथा समृद्धि का प्रकाश बनाए रखे। आपका हर दिन मंगलमय हो तथा हर कदम पर प्रभु का आशीर्वाद आपके साथ रहे। अंत में यही कहेंगे, हे प्रभु, हमें ऐसा मन दीजिए जो विनम्र हो, ऐसी वाणी दीजिए जो मधुर हो, ऐसे कर्म दीजिए जो सबके लिए कल्याणकारी हो, तथा ऐसी भक्ति दीजिए जो जीवन भर आपका साथ निभाए। आपसे लेते हैं अनुमति, आपकी रात्रि मंगलमय हो। ओम श्री हरि, सादर प्रणाम।

मोहतरम सामीन, अल्लाह ताला का नाम लेकर खाना। हज़रत उमर बिन अबी सलमा रज़ी अल्लाह ताला रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बच्चे, अल्लाह का नाम लो, अपने दाएं हाथ से खाओ और अपने सामने से खाओ। इस हदीस में खाने के तीन अहम आदाब बयान किए गए हैं। खाना शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह कहना, दाएं हाथ से खाना और अपने सामने से खाना। ये आदाब इंसान में नज़्म ज़ब्त और दूसरों के एहतराम का जज्बा पैदा करते हैं। खाने से पहले अल्लाह ताला का नाम लेना इस बात का इजहार है कि ये नियमत अल्लाह ताला की अता है।

हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी खाने में ऐब नहीं निकाला। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई खाना पसंद होता तो तनावल फरमाते, और अगर पसंद न होता तो उसे छोड़ देते। यह हदीस खाने की नियमत का एहतराम सिखाती है। हमें खाने को बुरा भला नहीं कहना चाहिए और न ही पकाने वाले की दिल आज़ारी करनी चाहिए। अगर कोई खाना पसंद न हो तो खामोशी से छोड़ देना बेहतर है। खाने में नुक्स निकालना नाशुक्री और नाशाइस्तगी का सबब बन सकता है। सामीन कराम, महफिल शब प्रोग्राम अपने अख्तिताम को पहुँच रहा है। आइए प्रोग्राम के आखिर में रसूल अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सलाम का नजाना पेश करते हैं। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात फिर होगी। फ़िलहाल हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

चाहे फासले कितने भी बढ़ जाएं, भाई बहन के दिलों की दूरी कभी नहीं बढ़ती। रक्षाबंधन का ये पवित्र त्योहार आपके रिश्ते में और प्यार, सम्मान और खुशियाँ लाए। MBC रेडियो की ओर से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो। मनोरंजन रेडियो
3: kind of music all day.

0: भोजपुरी के धमाल, भोजपुरी तड़का, आज की रात किरण संगे।
1: आज के रात एगो बहुत ही खास रात्रि बा। आज 27 अगस्त बिफे के रात्रि है और ई बखत 9:02 होल बा। आप ई प्रोग्राम सुनत हवा हमेशा के तरह रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर। और आज के दिन खास ई वजह से बा कि राखी के जन धूम बा वो एक सप्ताह से ही मचल बा और आज से ही राखी मनाए के शुरू हो गल बा। क्षमा करिए, ई देश में आज से ही राखी मनावे के शुरू हो गल बा और औपचारिक तौर पर तक काल मनावब जा, लेकिन ये खूबसूरत समा आप सब कोई के बहुत बहुत एकर मंगल कामना प्रकट करत है जा। आप सब कोई के ई बहुत आपके जीवन में खुशी लाए। ई जोन पहला गीत है बिस्वानी दीपा के आवाज़ में, भाई बहन पर आप सब कोई के नाम।

0: चाहे फासले कितने भी बढ़ जाएं, भाई बहन के दिलों की दूरी कभी नहीं बढ़ती। रक्षाबंधन का ये पवित्र त्योहार आपके रिश्ते में और प्यार, सम्मान और खुशियाँ लाए। MBC रेडियो की ओर से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन।
1: मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना।
2: भैया लावे तीन गो सारी तीनों जोली बा। और ऐसा ऐसा गीत के आजकल मौसम चला था जहाँ पर भाई बहन खातिर तोहफा आनी, साड़ी आनी, और बहन भी भाई खातिर लड्डू आनी और अनेकों उपहार आनी। आज और कल जितना कोई भी ई पर्व के रंग में रंगल हवा जा, जितना कोई भी भाई बहन के होते हुए भी कोनो ना कोनो कारण से नहीं सकत हवा जा रक्षाबंधन मनावे, या फिर जैसे हमने के संस्कृति में बा परिवार में कोई मृत्यु हो जाए तो नहीं सक रक्षाबंधन मनावे। ढेर कोई ऐसा स्थिति से गुजरत हवन जा। और अभी हमने के फ़ोन पर बतियालन सुनीता जी भी बोलत हवन कि उनकर परिवार में तीन बरिस से मृत्यु होता और नहीं सकत हवन रक्षाबंधन मनावे। सब लड़का लोग तरस गल हवन सा राखी बंधाई खातिर। तो ऐसा ही एगो पर्व है कि वो चाहे बांधे होला रही चाहे बंधवाई होला रही, सबके मन में एगो बहुत उत्सुकता रहेला, एगो खुशी रहेला, एगो लोग के दिल में एगो कसक रहेला कि ई बंधा लेब तो जान में जान आवेला। तो ऐसा में आप सब कोई के बहुत बहुत शुभकामना, आप सब कोई के जीवन में सुख शांति खुशी बनल रही।

चाहे फासले कितने भी बढ़ जाए, भाई बहन के दिलों की दूरी कभी नहीं बढ़ती। रक्षाबंधन का ये पवित्र त्योहार आपके रिश्ते में और प्यार, सम्मान और खुशियाँ लाए। MBC रेडियो की ओर से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो। मनोरंजन रेडियो
3: Your kind of music, all day, all night.

आज जैसे सब कोई जाना था वजह श्रावणी मास के पूर्णा होती है और शिव के महिमा के आज विशेष गुणगान करल जाता तो ई मौका पर ई गीत चलल लीलू माथुर के आवाज़ में शिव के महिमा। अगला जो गीत चली सुनीता ननकू के आवाज़ में धरिला चरनिया तोहार। ई गीत के फरमाइश करत हवन शीला अपन पति सुरेन अपन सब लड़का बेटा बेटी दामाद सब कोई के नाम खास तौर पर सोनम और यौवन के नाम जे लोग अभी उनकर संगे हवन जा।

धरिला चरनिया त्योहार हे जगदम्बे भवानी ये गीत खास तौर पर शांता सुकारी जी से जम्मिल फॉरसाइड से अपन नाम करावत हवन। शांता सुकारी जी रोज हमने के सुनेलन और आज खास तौर पर काल जो रक्षाबंधन आप परिवार के साथ मनावे होला हवा, शांता जी आप उस सब कोई के नाम करत हवा।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो। मनोरंजन रेडियो
3: Your kind of music all day on

चाहे फासले कितने भी बढ़ जाएं, भाई बहन के दिलों की दूरी कभी नहीं बढ़ती। रक्षा बंधन का ये पवित्र त्योहार आपके रिश्ते में और प्यार, सम्मान और खुशियाँ लाए। MBC रेडियो की ओर से आप सभी को रक्षा बंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षा बंधन।

संस्कृति हमारी है सबसे पुरानी। ई गीत के फरमाइश कर ले हवन फोंजुसाक से उमा जी, और उमा जी ई गीत अभिदानंद बिजन के आवाज़ में सुने चाहत हवन और नाम करत हवन अपन मुनि दीदी और देवी के नाम। और जितना कोई भी अपन संस्कृति के बहुत पूरा रूप से जियेला आप सब कोई के नाम ई गीत। और उमा जी बोलत हवन के आज संस्कृत दिवस है, तो संस्कृत दिवस के संदर्भ में आप ई गीत सुने चाहत हवा।

नदी किनारे सोनार पुलिया बतावेला पूर्णिमा फोकिरा के आवाज में ये गीत सुनने चाहत हवन वाशेरी से कल्याणी जी। और ये गीत कल्याणी जी खास तौर पर नाम करत हवन गीता राधा किशन के नाम और फूलों के नाम अंजू और अमृता के नाम।

रात के 9:40 होल बा और हमनी के साथ रहे होला बा अभी से 11 बजे तक। हर रात 2 घंटा के ये प्रोग्राम आपके पसंद पर तैयार होवेला, आपके पसंद पर चलेला। और आज भी यही हुआ था। अगला जन गीत चली हाय सुमिरन कर ले मेरे मना, बीती जाला उमर हरी नाम बिना। ये गीत सुने चाहत हवन कथोबोन से प्रेमिला जी, और प्रेमिला जी ये गीत अपन पूरा परिवार के नाम करत हवन। जितना कोई भी अभी रक्षाबंधन मनावत हवा जा, जितना कोई भी व्रत के पालन करत हवा जा, पूरा महीना श्रावण मास के व्रत चलल और आज पूर्णमासी है। पूर्णिमा के जितना कोई व्रत धारण करत हवा जा, रक्षाबंधन के जितना कोई व्रत धारण कर ले हवा जा, आप सब कोई के नाम ये गीत करत हवन प्रेमिला जी। और जितना कोई ये बखत काम करत हवा जा, और जितना कोई ये बखत तैयारी में लगल हवा जा लड्डू और मिठाई के, आप सब कोई ये गीत के आनंद भी उठावा।

संतोष महादेव की आवाज में इगीत भजिर के घमा उगेला। इगीत शांति जी तेयागूज से अपन पूरा परिवार के नाम करत हवन, खास तौर पर अपन भाई के नाम बलराम जे पॉम्पलेमुस के पुलिस स्टेशन में पुलिस के काम करत हवन, और उनकर भगीना ओम अपन दागोचिया के जे हवन, और दागोचिया के उनकर पूरा मराठी परिवार के नाम।

चाहे फासले कितने भी बढ़ जाएं, भाई बहन के दिलों की दूरी कभी नहीं बढ़ती। रक्षाबंधन का ये पवित्र त्योहार आपके रिश्ते में और प्यार, सम्मान और खुशियाँ लाए। MBC रेडियो की ओर से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन।

चाहे फासले कितने भी बढ़ जाए, भाई बहन के दिलों की दूरी कभी नहीं बढ़ती। रक्षाबंधन का ये पवित्र त्योहार आपके रिश्ते में और प्यार, सम्मान और खुशियाँ लाए। MBC रेडियो की ओर से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन।

रात के 10 बजे था और एक घंटा के हमी के सफ़र बाकी बा एक घंटा बीत गया देखते देखते और भोजपुरी तड़का जहाँ पर आप सब कोई के फरमाइश पर ये प्लेलिस्ट फिर से बने रहा। ये गीत जो अगला चले होला बा मच्छी मरवा जय हरलाल के आवाज़ में सुने चाहत हवन भाई अब्बू। भाई अब्बू जे अक्सर ई गीत के मांग करेलन और हमेशा की तरह आप ई गीत अबू अयाज अफेज सयार जहीरा रईस काला चोटी आपी और उनकर बीवी के नाम करत हवा। तो चला मच्छी मरवा एक साथ सुनी जा।

रात के 10:08 होल बा और आप लोग के फोन कॉल्स, आप लोग के फरमाइश, आप लोग के मैसेज आईते बा आई ले जाता, ये खातिर बहुत बहुत शुक्रिया। अगला जन गीत चली रक्षाबंधन के संदर्भ में, ललिता गजाधर के आवाज़ में ये गीत सुने चाह था वन दादी पर भावती, और ये गीत आप ख़ास तौर पर आत्माराम भैया के नाम करत हवा जे बेलिया रहेलन, और आप बोलत हवा कि आपके तबीयत उतना ठीक नहीं बा, यही कारण है कि आप नहीं सकत हवा आत्माराम भैया के घरे जाए, लेकिन आपके जितना प्यार जितना शुभकामना बा रेडियो के जरिए आप उन घर तक पहुँचावत हवा। उधर वाशिष्ठी के कल्याणी जी अपन चार गो भाई के नाम अगला गीत करत हवन रक्षाबंधन के ही संदर्भ में, और ई बखत जितना भाई बहन लोग हमने के सुनत हवा जा, आप सब कोई के बहुत बहुत शुभकामना। आप सब कोई के भाई बहन के जो रिश्ता बा वो चाहे सगा रही चाहे खून के रिश्ता नहीं भी रही, जोन अपनापन है जोन संबंध आपसी संबंध जुड़ जाला ओकर खातिर कोनो खून के रिश्ता के ज़रूरत नहीं है। अभी देखा हमनी के और आपके ही संबंध कहाँ कोई के भेंट मुलाकात होल बा कबो।

लेकिन जोन प्रेम आप लोग बरसावे ला जा, जोन अपनापन आप लोग दिखावे ला जा, जोन आशीर्वाद आप लोग घर में सा देवे ला जा, ओकर कोनो मोल नहीं बा। तो ऐसने ही जितना भी भाई बहन के खून के रिश्ता नहीं बा, लेकिन वो लोग एक दूसरे के इतना ही चाहेलन जा, इतना ही आदर भाव बा आप लोग के मन में एक दूसरे के प्रति। तो आप सब कोई के नाम रक्षाबंधन के गीत ललिता गजाधर के आवाज़ में।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो। मनोरंजन रेडियो
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your 109 station.
0: Bhojpuri Tadka, Kiran Sanghi.

चाहे फासले कितने भी बढ़ जाएं, भाई बहन के दिलों की दूरी कभी नहीं बढ़ती। रक्षाबंधन का ये पवित्र त्योहार आपके रिश्ते में और प्यार, सम्मान और खुशियाँ लाए। MBC रेडियो की ओर से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो। मनोरंजन रेडियो
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your 190 station.
0: Bhojpuri Tadka, Kiran Sanghi.

धना जी ना उजी के आवाज में धुआं उड़े ले चलल जाला, सिटी बजे ले चलल जाला, जवानी के रेल, ये गीत खास तौर पर बुआ शेरी से धनी जी के नाम।

मिलाओ किरण संगे। जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।

अगला जन गीत अभी चला था गीता गजाधर की आवाज़ में माँ बाप के मोल। ई गीत के मांग आलबा फ्लिक ऑन फ्लैक से अनिता जी के ओर से। अनिता जी ई गीत अपन पूरा परिवार अपन सब दोस्त के नाम करत हवन और रेजो मनोरंजन और रेजो मॉरिशस के पूरा टीम के नाम करत हवन। और हमेशा की तरह ई गीत आपके मनपसंद है। आप ई गीत हमेशा अपन गीत की फरमाइश करेला मैसेज के माध्यम से व्हाट्सएप के माध्यम से। और चला आपके ई मनपसंद गीत सुनी जा। प्रोग्राम के अभी चले में और आधा घंटा बा, हमनी के साथ रही और आधा घंटा तक। और फिर एकर बाद यही प्रोग्राम में हमनी के मुलाकात फिर से हुई आवत बिफे के और नहीं तो काल फजर के तब भेंटा भी करब सा हमारी धरोहर में। तो फिलहाल ये जो आधा घंटा बचल बा अपन मनपसंद गीत सुनते रहा।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो।
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your 109 station.
0: Bhojpuri Tadka, Kiran Sanghi.

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो।
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your 109 station.
0: Bhojpuri Tadka, Kiran Sanghi. Zindagi ke anmol lamhe, Radio Mauritius ke saath.

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: A very good evening to all of you. नमस्कार और गिनिशा का प्रणाम स्वीकार कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, हम आ गए हैं फिर से एक बार आप लोगों का साथ देने के लिए इन योर सुनहरे पल। जी हाँ दोस्तों, आज फिर लेकर आई है वो नगमे जो सिर्फ कानों को नहीं दिल को भी सुकून देते हैं। तो चलिए मिलकर गुजारते हैं उन हसीन यादों के सफ़र से। जी हाँ दोस्तों, अगला नगमा खासकर आपके नाम।

हर पुराना गीत अपने साथ एक कहानी लेकर आता है दोस्तों। शायद आपकी पहली मोहब्बत बचपन की यादें या किसी अपने की मुस्कुराहट के साथ, इसी एहसास के साथ शुरू करते हैं सुनहरे पल। हाँ जी, सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर, जहाँ पे गिने चुने नगमे हम लेकर आते हैं खासकर आप लोगों के लिए, और उम्मीद करते हैं कि हर एक गाना आपके दिल को छू जाए।

सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।

तो चलिए जी, हो सकता है कि फिलहाल आप घर पे आराम फरमा रहे हो, या हो सकता है कि आज थोड़ा सा ओवरटाइम किया है ऑफिस में और फिलहाल के लिए घर के लिए निकल चुके हो। तो चलिए मज़ा ले लीजिए इन खूबसूरत पुराने गीतों का। इस खूबसूरत सफ़र में बस आप हमारा साथ देते रहे। पुराने बॉलीवुड के वो एवरग्रीन गाने जो आज भी दिलों पर राज करते हैं, सिर्फ आपके लिए ऑन रेडियो मॉरिशस।

जिंदगी की भाग दौड़ में कुछ पल सिर्फ अपने लिए निकाल लेना चाहिए और सुनिए वो गीत जो वक्त के साथ और भी खूबसूरत हो जाते हैं। बिल्कुल सुनहरे पल में लेकर आते हैं ऐसे कुछ प्यारे प्यारे गाने जो सीधे आपकी यादों को छू जाते हैं। तो यादों को ताज़ा करने के लिए बस तैयार हो जाइए मेरी जान, अगला गाना आपके

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: म्यूजिक की असली खूबसूरती तब महसूस होती है जब एक पुराना गीत अचानक दिल को छू जाए। आज का हर नगमा आपको जिंदगी के किसी ना किसी खूबसूरत मोड़ पर जरूर ले जाएगा। ये है सुनहरे पल, सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर।
2: तुम तो दिल के तार छेड़ कर हो गए बेखबर, चांद के तले जलेंगे हम

म्यूजिक कभी बुरा नहीं होता है, अच्छे गीत हमेशा जवान ही रहते हैं और इसी खूबसूरत एहसास के साथ इस शो को हम आगे बढ़ाएंगे। वैसे ये जो सुनहरे पल हम लेकर आते हैं, यादगार बना देते हैं पुराने गीतों के साथ, आइए इन नगमों के साथ दिल को सुकून देते हैं। और अगला नगमा आप बस सुन लीजिए, आपके लिए ही है।

तो चलिए जी, पुराने ये गानों का सिलसिला शुरू हुआ था और अभी धीरे धीरे खत्म होने को है। और फिलहाल के लिए इट्स टाइम फॉर गिनिशा टू से गुड बाय टू यू। आप हमें प्यार से इजाजत दीजिए ताकि फिर आ सके आपका साथ निभाने के लिए इस एक घंटे के सफर में। आपका सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस पर रात के 11 बजे से लेकर 12 बजे तक। हमें इजाजत दीजिए, शुभ रात्रि, शब्बा कहर।

पे हल्की हंसी है, आखिर तुम्हारे अंदाज में क्या बात है जो छुपी है।

0: Radio Mauritius.
1: रेडियो मॉरिशस
2: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके
0: सुनिंग ऑरम फ्री रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस
3: एनबीसी रेडियो हर पल आपके साथ।
2: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग
0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस
0: रेडियो मॉरिशस
4: इज रेडियो मॉरिशस।
5: निहाओ अस्सलामुअलैकुम
1: किम चू मॉरिशस।
6: नमस्कार
7: श्रोतरंदरिकी हृदयपूर्वक नमस्कारम
8: उंगल अनेवरुक्कुम वणक्कम।
9: रेडियो मॉरिशस पर दिल से स्वागत है आप सभी का।
3: एनबीसी रेडियो हर पल आपके साथ।
4: माय दिस इज रेडियो मॉरिशस।
5: निहाओ अस्सलामुअलैकुम
1: किम चू मॉरिशस।
6: नमस्कार
7: श्रोतरंदरिकी हृदयपूर्वक नमस्कारम
8: उंगल अनेवरुक्कुम वणक्कम।
9: रेडियो मॉरिशस पर दिल से स्वागत है आप सभी का।
2: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग
0: यू लिसनिंग ऑरम फ्री रेडियो।

आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमबीसी रेडियो।